मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 की वैशाख मास की 18वीं तिथि तदनुसार 8 मई 2026। इस समय प्रातः के 5:56 और 50 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वी 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर इस समय प्रातः के 6 बजने को हैं। अब कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों के हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की खाद्य सुरक्षा लगातार बढ़ रही है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि कम आवक के बावजूद इस साल गेहूं की खरीद पिछले साल से बेहतर है। मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण उन खबरों के जवाब में दिया है जिनमें दावा किया गया था कि मंडियों में गेहूं की अधिकता जैसी स्थिति है। मंत्रालय ने कहा कि पंजाब में अब तक लगभग 122 लाख मीट्रिक टन गेहूं मंडियों में आया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए आवश्यक अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। उधर तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलक वेत्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। इस बीच केरल में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत

0: रिपोर्ट पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जल डमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने पर बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में ही संपन्न होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य इस मैराथन में भाग ले सकेंगे। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला शाम 7:30 बजे कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, भक्ति में ही शक्ति है। प्रभु को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

शिव भवानी हो जगकन्याणी, असुर विनाशिनी नव दुर्गे जय हो। शुभ शैलपुत्री जय अम्बे गौरी, जय जगजननी माँ जय हो।

जिनके मस्तक मोर मुकुट हैं शोभे, होंठों पे बांसुरी प्यारी, उंगली पर गोवर्धन पर्वत और सबके दिल में गिरधारी।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। स्वर थे हेमंती शुक्ला, चंद्रो आत्मा, लता मंगेशकर और साथियों की। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। कार्यक्रम चिंतन के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार।
1: हमारी राष्ट्रीय एकता के मार्ग में जातीय व्यवस्था सबसे बड़ी बाधा, जिसकी जड़ें हमारे जीवन में इतनी पहुंच गई हैं कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात भी वे अपनी जगह पर अटल तथा अडिग मालूम होती हैं। हमारा संविधान इन्हें कभी भी मान्यता प्रदान करे अथवा नहीं, वह भी इन परंपराओं को बदलने में असमर्थ मालूम होता है। यह देश के सामाजिक जीवन में हजारों वर्ष से छाई हुई है। इस जटिल समस्या का समाधान नितांत आवश्यक है। संसार में कभी भी दो सभ्यताएं आपस में टकराई नहीं, सभ्यताएं टकराया भी नहीं करती। संसार में मानव हजारों कर दिए जाएं तो वहशियानापन ही पाया जाएगा। आज जिन्हें हम सभ्य कहते हैं, उनकी सभ्यता की तह में अनगिनत असभ्य अवसर पाते ही सर उठा लेती हैं। चाहिए ये कि असभ्यता छोड़ दी जाए और नवीन प्रगतिशील सभ्यता के निर्माण में हम जुट जाएं, जिससे राष्ट्र का भारत के निर्माण में प्राचीन काल के प्रकाश के वर्तमान की अहम समस्याओं से जूझकर उनके समाधान में भरपूर योगदान प्रदान करें। विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के आवश्यक रंग रूप को जैसा का तैसा रखते हुए उन्हें एक नया रंग रूप प्रदान करें, जो एक सुदृढ़ और सबल राष्ट्र के निर्माण के लिए नितांत आवश्यक है। देश में आपसी घृणा की आग भड़क रही है। ऐसी सूरत में चमन के निर्माण का कार्य पागलपन दिखता है। यह आग मानवता और भलमन साहत की स्वर्णिम कोमल भूमि को झुलसा दे रही है। इसमें भला भोले भले सुंदर फूल कैसे खिल पाएंगे? हम पशु वृत्ति से नैतिक मानववादी व्यवहार कैसे अपना सकेंगे कि दुनिया में इंसानियत का कैसे फल फूल सकेगा? जीवन की सर्वोत्तम सुख ये है कि मानव की सेवा कर उसके हृदय में ये दृढ़ विश्वास हो कि वो कोई घटिया काम नहीं कर रहा है। सर्वोत्तम जीवन इसी को कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज के लोगों के साथ सहानुभूति और विभिन्न समुदायों के बीच सद्भाव हो। बुद्धिमान लोग वे हैं जो

0: अपनी भावुकता पर पूर्ण नियंत्रण रखने में समर्थ हों, जिनमें अपने विरोध का ठंडे दिल से उचित जवाब दे सकने की क्षमता हो। चरित्र निर्माण का कार्य वास्तव में एक महान संघर्ष है। ये वीरों का विशेष गुण है, उनका नैतिक साहस है। जिसे चरित्र निर्माण करना है, उसे इस गुण को अपनाना होगा। आपका चरित्र और निस्वार्थ सेवा आवश्यक है। ऐसी शिक्षा की जरूरत है जिससे सर्वांगीण विकास संभव हो तथा आत्मविश्वास की जड़ें मजबूत हों। बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय मनोवैज्ञानिक व कम खर्चीली शिक्षा योजना है। ये कला केंद्रित है, ग्राम व नगर की आवश्यकताओं को पूरा करती है, चारित्रिक और आर्थिक उपलब्धियों से परिपूर्ण है। बच्चे क्रिया द्वारा सीखने में रुचि रखते हैं, वे हाथों के द्वारा सोचते और क्रिया करते हैं, इसलिए ये शिक्षा कला केंद्रित है। स्वस्थ, सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए इस शिक्षा का विशेष महत्व है।
1: कार्यक्रम चिंतन के तहत अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर जाकिर हुसैन के विचार। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 के किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कान। कार्यक्रम खेती की बातें में 6:45 पर सुनी जा सकेगी सस्ती और टिकाऊ खेती के विषय में डॉक्टर ओपी राजपूत से कृपाशंकर की बातचीत।

प्रातः 7:10 पर स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता मानसिक बेचैनी के विषय में जानकारी देंगे। श्रोताओं 9:25 पर गांधी चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा राम नाम के संबंध में गांधी जी के विचार। मधुरिमा सक्सेना के कई लोकगीत हम आपको सुनवाएंगे लोक संगीत के कार्यक्रम में प्रातः 9:45 पर।

11 बजे आज के कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत हम बात करेंगे फिल्म अभिनेता बलराज साहनी के बारे में और सुनवाएंगे उनकी ही फिल्मों के कुछ गीत। समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत में 11:30 पर फिल्मी गीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे यातायात नियमों के पालन से जीवन रक्षा और एक और विषय पर चर्चा होगी, विषय होगा संघर्ष और आपात स्थिति में मानवीय

12 बजे सुनी का प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी। दिन में 1:15 पर कार्यक्रम खैर संसार में सुनिए का डॉक्टर आराधना भास्कर से काव्य पाठ। इसी कार्यक्रम में फिल्मी गीतों के साथ चर्चा का विषय होगा रेड क्रॉस के 7 सिद्धांत।

तलत अजीज की गायक हस्ते हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत के कार्यक्रम में 1:45 पर। दिन में 3 बजे उर्दू कार्यक्रम अंजुमन के तहत समाप्त फरमाइएगा तनवीर मुस्तफ़ा का मकाला हकीम मोमिन खान मोमिन की शायरी। कलाम शायर के तहत अपना कलाम पेश करेंगे मोहम्मद तारिक, साथ ही सुनिएगा सादिया राशिद का अफसाना जिंदगी के बदलते रंग।

बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे इकोलॉजिकल हेरिटेज कंजर्वेशन के विषय में इरम खान से कनिका सिंह की बातचीत। इस कार्यक्रम के अन्य आकर्षण होंगे फिल्म संगीत, चर्चा का विषय होगा रेड क्रॉस की भूमिका। नई पहल के तहत हम जानकारी देंगे विश्व सूत्र पहल के विषय में। 6 बजे क्रमेलो कार्यक्रम में सुनी जा सकेगी भूसे की पौष्टिकता बढ़ाने के उपाय के विषय में डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह की वार्ता। इसी कार्यक्रम में लोकगीतों के साथ चर्चा के विषय होंगे जल है तो कल है और विश्व रेड क्रॉस दिवस। साथ ही बताया जाएगा मंडी भाव और मौसम की जानकारी। शाम 6:30 पर मस्तूर मंडल कार्यक्रम में आप सुनेंगे यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा के विषय में विनोद कुमार अग्रवाल की वार्ता। फिल्मी गीतों के साथ हम चर्चा करेंगे रेड क्रॉस दिवस के विषय में। 7:10 पर विविधा कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी से काव्य पाठ। और आती 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे रमेश तागड़े का राग विहाग में वायलिन वादन। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीरामचरित मानस गान।

हमारे सांध्यकालीन सभा में फिल्मी प्रश्नों पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या प्रस्तुत किया जाएगा शाम 5:10 पर। हमारे युवा साथियों के कार्यक्रम युवाणी में शाम 5

भारतीय भक्ति साहित्य में जहां एक ओर ब्रह्म के निर्गुण और सगुण स्वरूपों की व्याख्या मिलती है, वहां दूसरी ओर प्रभु के नाम की महिमा तथा यशोगान भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तुलसीदास ने प्रभु के नाम को उनके निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों से अधिक महिमामय तथा बड़ा बताया है। जो लोग सभी कामनाओं को त्याग कर श्री राम का नाम भजते हैं, उनका मन भक्ति रूपी सरोवर में मछली की भांति होता है, जिसे जल से अलग करने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। निर्गुण तथा सगुण ब्रह्म का ज्ञान अग्नि के समान होता है। निर्गुण काठ में निहित अग्नि जो दिखती नहीं, सगुण उस अग्नि के समान है जिसे प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, किंतु तत्वतः दोनों एक ही हैं। दोनों का ज्ञान प्राप्त करना समान रूप से कठिन होता है। प्रभु का नाम ऐसा सहारा है जिससे दोनों सरल और सुगम हो जाते हैं।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान गाय कलाकार थे रविन्द्र साठी। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, कार्यक्रम खेती की बातें में आइए आपको सुनवाते हैं सस्ती और टिकाऊ खेती के विषय में डॉक्टर ओपी राजपूत से कृपा शंकर की बातचीत।
1: नमस्कार।
2: नमस्कार जी कृपा शंकर जी।
1: डॉक्टर साहब, सस्ती और टिकाऊ खेती का क्या मतलब है?
2: हाँ कृपा शंकर जी, जो सस्ती और टिकाऊ खेती की बात आ रही है आजकल, उसका अर्थ यह है कि हम जो बढ़ती हुई हमारी जो आवश्यकताएं हैं आज, उसकी आपूर्ति कैसे करें और जो भी संसाधन हमारे खेती में उपलब्ध हैं उनका समुचित उपयोग करें और ऐसा समुचित करें कि उत्पादन भी बढ़ता जाए और हमारी जो इनका ह्रास भी ना हो, नुकसान भी ना हो, तो इसी को हम कहेंगे टिकाऊ खेती जो है।
1: टिकाऊ खेती के लिए डॉक्टर साहब किसान भाइयों को प्राकृतिक संसाधनों से और जूझना पड़ रहा है।
2: हाँ बहुत बढ़िया। हमारे जो प्राकृतिक संसाधनों में जैसे पानी है जो मुख्य रूप से है, सिंचाई जल का हमको समुचित उपयोग करना होगा और दिनों दिन ये जो हमारी जो वर्षा देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष कम होती चली जा रही है और भूमि का जो जल स्तर है नीचे घटता चला जा रहा है, इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारा जो भी उपलब्ध पानी है हम उसको फसलों की क्रांतिक अवस्थाओं के अनुसार दें।
1: डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती के लिए हमें पर्यावरण की विशेष आवश्यकता है।
2: हाँ बहुत बढ़िया, आपने ये प्रश्न पूछा है कृपा शंकर जी। जहाँ पर्यावरण सुधारने की बात आ रही है, हमने अब तक जो है पहली जो हरित क्रांति हमको मिली 1968 से लगा करके 85 तक, उसमें हमने अधिक से अधिक उर्वरकों का, अधिक से अधिक रसायनों का प्रयोग किया,

0: में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो रही है। अधिक खरीद, अच्छी फसल और किसानों की पर्याप्त सहायता से खाद्य सुरक्षा, किसानों का हित तथा सुरक्षित भविष्य के लिए देश की प्रतिबद्धता मजबूत हो रही है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। इसमें 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि ये साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में वाणिज्य विभाग और उद्योग तथा आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि बैठक में निर्यात और निवेश बढ़ाने, नए निर्यातकों के लिए अवसर तैयार करने और वैश्विक बाजारों में नई संभावनाएं तलाशने पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। इस बीच गृहमंत्री अमित शाह आज कोलकाता जाएंगे। वे नवनिर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसके बाद पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। समारोह की तैयारियों के लिए गुवाहाटी में एक उच्चस्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वित्री कड़गम पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 118 विधायकों की आवश्यकता है। विधानसभा चुनाव में अभिनेता विजय की टीवीके पार्टी ने 108 सीटें जीती हैं। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल अबुधाबी में भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच हुई त्रिपक्षीय बैठक में भाग लिया। बैठक में संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री रीम अल हाशमी और फ्रांस के विदेश कार्य महासचिव मार्टिन ब्रायंस शामिल हुए। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तीनों देशों ने स्पष्ट समय सीमा में भागीदारी मजबूत करने की कार्य योजना पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लैम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। दो अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया है। लगभग 3.5 किलोमीटर की यह दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न होगी। आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Abhishek Mukhopadhyay. Union Home Minister Amit Shah will arrive in Kolkata today. He is scheduled to attend a meeting with the newly elected BJP MLAs, during which the party's legislative leader will be selected. The new Chief Minister of the State and the Council of Ministers will be sworn in tomorrow on the birth anniversary of Kobi Guru Rabindranath Tagore.

0: मीडियम वेव 196.91 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं मानसिक बेचैनी के विषय में डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की वार्ता।
1: आज के इस युग में मानसिक बेचैनी यानी एंजाइटी उसी प्रकार जीवन का अभिन्न अंग हो गए हैं जैसे भोजन करना और सोना। यह एक आम मानवीय भावना है, किंतु बहुत अधिक व्यग्र होना आपके लिए हानिकारक हो सकता है। इससे आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है और आपको कुछ शारीरिक विकार भी हो सकते हैं। आमतौर पर मानसिक बेचैनी को तनावजन्य भय के रूप में जाना जाता है। मानसिक व्यग्रता की स्थिति में रहते हुए रोगी छोटी सी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर देखता है, जैसे मानसिक रूप से अति व्यग्र व्यक्ति के परिवार में किसी को जुकाम हो जाता है तो वह उसे निमोनिया की शुरुआत समझ बैठता है। यदि उसके अपने सीने में दर्द होता है तो वह उसे दिल का दौरा समझ बैठता है। कोई निर्दोष व्यक्ति टिप्पणी भी करता है तो उसमें भी अपना अपमान नजर आता है। कोई उसकी सहायता के लिए उपयोगी सुझाव देता है तो उसे उसमें अपने मामले में दखल अंदाजी नजर आती है। अत्यधिक या लगातार मानसिक बेचैनी आमतौर पर यह संकेत देता है कि इसके शिकार व्यक्ति के जीवन में सब कुछ ठीक नहीं है। लंबे समय से चली आ रही मानसिक व्यग्रता का मूल कारण अक्सर बचपन में छिपा होता है। जिन बच्चों का लालन पालन अनिश्चितता, चिंता और मानसिक व्यग्रता के वातावरण में हुआ होता है, वे बड़े होकर चिंतित रहने वाले, असुरक्षित और बेचैन स्वभाव वाले हो जाते हैं। दूसरी ओर मानवीय व्यक्तित्व को जो नुकसान उचित ध्यान न देने और असुरक्षा के कारण होता है, वैसा ही नुकसान बहुत अधिक ध्यान देने और बहुत अधिक सुरक्षा प्रदान करने से भी हो सकता है। जीवन की आवश्यकताओं के अधिक होने या बढ़ जाने से व्यवसाय संबंधी असफलता, दाम्पत्य वातावरण, महिलाओं में रजोनिवृत्ति काल में हार्मोनों का असंतुलन, वृद्धावस्था में अकेलापन, मादक पदार्थों के सेवन आदि से भी मानसिक व्यग्रता यानी बेचैनी पैदा हो जाती है। मानसिक बेचैनी के रहते मन ही मन में डर बैठता जाता है और मानसिक तनाव बढ़ता जाता है। दिल की धड़कन बढ़ जाती है, सामान्य से अधिक पसीना आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस जल्दी जल्दी और जोर जोर से चलने लगती है, सिर चकराने लगता है, घुटने में कमजोरी आ जाती है, शुरू शुरू में भूख घटने लगती है, वजन गिरने लगता है और आराम से नींद नहीं आती, मन सशंकित और तनावग्रस्त रहता है, मांसपेशियों में अकड़न जकड़न हो सकती है, जी मिचलाना, उल्टी होना और दस्त लगना जैसे लक्षण भी पैदा हो सकते हैं। सीने में दर्द, अस्थमा, सेक्स संबंधी गड़बड़ियां आदि भी हो सकती हैं। मानसिक बेचैनी या व्यग्रता से आप स्वयं ही निपट सकते हैं। इसके लिए आपको अपने जीवन की जरूरतों और अपेक्षाओं में सुधार करना चाहिए। परिस्थितियों देखकर रोने की बजाय उन पर हंसना चाहिए।

0: अपनी भावनाओं और एहसासों का इजहार कर देना चाहिए, जिससे आप मानसिक बेचैनी और व्यग्रता से सहज ही छुटकारा पा सकेंगे।
1: स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में अभी आपने सुनी मानसिक बेचैनी के विषय में डॉक्टर अनंत प्रकाश गुप्ता की वार्ता। आपकी सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं और अब लीजिए सुनिए संवेद स्वर में ये देश गान।

अभी आप सुन रहे थे संवेश्वर में देश गान, मीडियम वेव 196.1 किलोमीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, हमारा अगला प्रसारण बस कुछ ही क्षणों में।

0: प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। एक

0: सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1,00,000 से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने लगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में जनगणना 2027 का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में स्वगणना की भी शुरुआत हो गई। कल शाम 6 बजे तक प्रदेश में 1,00,000 से अधिक लोगों ने स्वगणना कर ली थी। जनगणना के शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल जनसंख्या की गणना भर नहीं है, बल्कि समग्र, समावेशी और सुनियोजित विकास का सशक्त आधार है।
3: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जातीय गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
2: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर स्वगणना प्रक्रिया में हिस्सा लिया। इस अवसर पर उन्होंने अपील की कि प्रदेशवासी जनगणना अधिकारियों द्वारा मांगी जाने वाली समस्त जानकारी पूर्ण, सही एवं तथ्यात्मक रूप से उपलब्ध कराएं।
4: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
2: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की लागत वाली 325 लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की नीतियों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर व तकदीर दोनों बदली है। उन्होंने कहा कि शासन की योजनाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचा है।
5: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता।

0: उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
1: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में आयुष विभाग, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास विभाग तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के लिए चयनित 481 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जवाबदेही, तकनीक और पारदर्शिता के कारण यूपी देश में सबसे अधिक नियुक्तियां देने वाला राज्य बन चुका है।
2: पिछले 9 वर्ष के अंदर हमारी सरकार ने लगातार नियुक्ति पत्र वितरण के नए कीर्तिमान को स्थापित किया है। कोई सोचता भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया इतनी निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो पाएगी। प्रदेश में हम लोगों ने जो प्रक्रिया बनाई, अलग अलग आयोग बोर्ड को जवाबदेही के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए किसी भी प्रकार के किसी भी उस नौजवान के साथ जो योग्य है उसके साथ अन्याय न होने पाए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए जब बाध्य किया, परिणाम है 9 लाख से अधिक नौजवानों को हम लोगों ने सरकारी नियुक्ति पत्र के माध्यम से नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवाए।
1: नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 15 जून को पहली फ्लाइट बेंगलुरु के लिए उड़ान भरेगी। यह फ्लाइट लखनऊ से नोएडा एयरपोर्ट होकर बेंगलुरु जाएगी। यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि इसके लिए टिकट की बुकिंग कल दोपहर बाद से शुरू हो गई। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निर्यात बढ़ाने के लिए बागवानी क्षेत्र के सभी पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए समग्र सरकारी दृष्टिकोण के साथ काम करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए फलों की शेल्फ लाइफ बढ़ाना आवश्यक है।
3: किसानों ने मांग की कि सेल्फ लाइफ बढ़े तो हम बेच पाएंगे, नहीं तो हमारा खराब ही हो जाता है। तो एक, हम सेल्फ लाइफ बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कई फलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है और उस पर और काम चल रहा है, तो हम सेल्फ लाइफ बढ़ाएंगे। विदेशों में रिजेक्शन ना हो इसलिए क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम, क्वालिटी इम्प्रूव का एक उदाहरण यही मिलेगा आपको बागवानी संस्थान में, जहां फलों की बैगिंग की गई है।
1: केंद्रीय मंत्री ने बताया कि भारत सरकार स्वच्छ पौध केंद्र स्थापित कर रही है। उन्होंने बताया कि उच्च गुणवत्ता वाली पौध सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ऐसे 9 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इनमें से एक केंद्र उत्तर प्रदेश में भी खोला जाएगा। रेल मंत्रालय ने कहा कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में कल समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए।
4: भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कन्फर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: हमीरपुर के कुरारा थाना क्षेत्र में यमुना नदी में नाव पलटने की घटना में कल 5 शव बरामद हुए। यह हादसा 6 मई की रात में उस समय हुआ जब एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए नाविक सहित 10 लोग नाव पलटने के कारण नदी में गिर गए थे। हादसे के शिकार 4 लोग सुरक्षित बच गए, जबकि अंतिम समाचार मिलने तक एक की तलाश जारी थी। IPL क्रिकेट में लखनऊ के इकाना स्टेडियम में कल हुए मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु RCB की टीम को 9 रनों से हरा दिया। लखनऊ की टीम ने बारिश के कारण बाधित मैच

में 19 ओवर में 3 विकेट पर 209 रन बनाए, लेकिन डकवर्थ लुइस नियम के तहत आरसीबी को 19 ओवर में 213 रन का लक्ष्य मिला। आरसीबी की टीम 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। प्रदेश में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। गोरखपुर और आसपास के जिलों में कुछ स्थानों पर कल बारिश के साथ ओले भी पड़े। कई जिलों में आज भी सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से किया जनगणना 2027 का शुभारंभ। प्रदेश भर में शुरू हुई स्वगणना प्रक्रिया, पहले दिन 1 लाख से अधिक लोगों ने की स्वगणना। मुख्यमंत्री ने सहारनपुर में 2131 करोड़ रुपए की 325 परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। कहा, समाज के सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है डबल इंजन सरकार। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में फ्रूट होराइजन 2026 के उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, बागवानी क्षेत्र में निर्यात बढ़ाने के लिए गठित होगा कार्यबल। और रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलेगा रेल मंत्रालय, अगस्त माह में होगी प्रक्रिया की शुरुआत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। प्रस्तुत है दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो सखी हरप्रीत कौर का प्यार भरा नमस्कार। और अब शुरू करते हैं सूचनाओं का सिलसिला। श्रोताओं, भारत सरकार ने हर साल की तरह इस बार भी 26 जनवरी 2027 पर दिए जाने वाले पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कारों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये सम्मान खेल के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसमें इच्छुक खिलाड़ी, कोच या खेल क्षेत्र से जुड़े लोग अपना आवेदन 28 मई तक क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय आगरा में जमा कर सकते हैं। आवेदन के साथ जरूरी प्रमाण पत्र भी लगाने होंगे। आवेदन का निर्धारित प्रारूप और पूरी जानकारी क्षेत्रीय खेल कार्यालय आगरा से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले awards.gov.in वेबसाइट पर जाएं। अब रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें। जिस पुरस्कार के लिए आवेदन करना है उसका चुनाव करें। इसके बाद नामांकित व्यक्ति का नाम, व्यक्तिगत विवरण और कार्यक्षेत्र की जानकारी भर दें। संबंधित प्रशस्ति पत्र अपलोड करें और सभी जानकारी जांच कर आवेदन को जमा कर दें। हम आपको पुनः बता दें, इसके लिए

इच्छुक खिलाड़ी, कोच या खेल क्षेत्र से जुड़े लोग अपना आवेदन 28 मई तक क्षेत्रीय क्रीड़ा कार्यालय आगरा में जमा कर सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका हमने आपको बता ही दिया है।

खेलों से जुड़ी एक और जानकारी है। आगरा जिला रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 19 से 20 मई तक एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित की जाएगी। ये सभी मैच सुबह 9 बजे से खेले जाएंगे। अंडर 9 यानी कि बालक बालिका वर्ग, अंडर 11 बालक बालिका वर्ग, कैडेट, अंडर 13 बालक और बालिका वर्ग, सब जूनियर अंडर 15, जूनियर अंडर 17, इसी तरह यूथ अंडर 19, बालक और बालिका वर्ग, महिला और पुरुष वर्ग, मास्टर्स के मुकाबले खेले जाएंगे। प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी 15 मई तक जिला और उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ में पंजीकरण करा सकते हैं। सभी खिलाड़ियों को पंजीकरण फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। जो खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे वही बरेली में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में शामिल हो सकेंगे। हम आपको पुनः बता दें, इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी 15 मई तक जिला और उत्तर प्रदेश टेबल टेनिस संघ में पंजीकरण करा सकते हैं।

श्रोताओं, स्वास्थ्य विभाग ने हॉस्पिटल, लैब, क्लिनिक के पंजीकरण के नवीनीकरण के ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद भी प्रक्रिया को बंद नहीं किया है। जिन हॉस्पिटलों ने नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किया है वो अभी भी कर सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग ने वर्ष 2025 में मानक पूरे न होने पर 150 हॉस्पिटलों का पंजीकरण एक वर्ष के लिए किया था। 31 मार्च को पंजीकरण की अवधि समाप्त होने के बाद हॉस्पिटल, लैब और क्लिनिक संचालकों द्वारा नवीनीकरण के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन किए गए। जिन हॉस्पिटल, क्लिनिक और लैब के नवीनीकरण के लिए आवेदन अभी तक नहीं हुए हैं वो अभी भी आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अभी बंद नहीं की गई है।

जो लोग रेल यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए एक सूचना है। आगरा वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की संख्या को देखते हुए रेलवे ने 8 से 16 कोच कर दिए हैं। ये ट्रेन कैंट रेलवे स्टेशन से चलती है। इस ट्रेन का संचालन 17 माह पूर्व शुरू हुआ था, तो अब इसमें कोचों की संख्या बढ़ा दी गई है। तो आपको अगर इस रूट पर जाना है तो आप इसमें अपनी बुकिंग करा सकती हैं।

और अब कुछ सूचनाएं परीक्षार्थियों के लिए। श्रोताओं, इंजीनियरिंग कॉलेजों और संस्थानों में प्रवेश के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा एडवांस 17 मई को होगी। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित पैटर्न पर होगी, जिसको लेकर अभ्यर्थियों ने तैयारियां भी तेज कर दी हैं। इस परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल होंगे। प्रश्न पत्र में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के गहन और वैचारिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कक्षा 11वीं और 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। जेईई एडवांस अपनी कठिनाई और वैचारिक प्रश्नों के लिए जानी जाती है। इसमें नेगेटिव मार्किंग और आंशिक अंक यानी कि पार्शियल मार्किंग जैसी व्यवस्था होती है, जिससे परीक्षा और चुनौतीपूर्ण बन जाती है। जेईई एडवांस में शामिल होने के लिए छात्रों को 12वीं कक्षा

उत्तीर्ण करना अनिवार्य है और साथ ही जेईई मेन की कट ऑफ भी क्लियर करनी होती है। इसके लिए विद्यार्थी एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल से तैयारी करें, एनसीईआरटी के साथ मानक पुस्तकों का अध्ययन करते रहें। सबसे ज़रूरी बात, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करें। इसके साथ साथ पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र को भी हल करें। नियमित मॉक टेस्ट दें। समय प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें, यानी कि कितने समय आपको पढ़ना है, कितने समय आपको रेस्ट करना है। कमज़ोर विषयों का अधिक से अधिक अभ्यास करें, क्योंकि संतुलित तैयारी से ही सफलता मिलेगी।

संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2026 के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 10 मई कर दिया गया है। प्रदेश के राजकीय अनुदानित पीपीपी मोड अल्पसंख्यक और निजी क्षेत्र की पॉलिटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो हम आपको पुनः बता दें, इसमें प्रवेश परीक्षा के लिए आप 10 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

परीक्षार्थियों के लिए और सूचनाएं हैं। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती 2025 की लिखित परीक्षा का परिणाम गुरुवार को जारी कर दिया गया। भर्ती बोर्ड के मुताबिक डीवी पीएसटी की प्रक्रिया मई के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। इसकी पूरी जानकारी जल्द ही बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अभियोजन अधिकारी 2025 की मुख्य परीक्षा के लिए 22 मई तक ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ऑनलाइन भरे गए फॉर्म सेट की हार्ड कॉपी सभी संलग्नकों सहित 29 मई की शाम 5 बजे तक आयोग कार्यालय में पंजीकृत डाक से या स्वयं उपस्थित होकर जमा करनी होगी।

श्रोतो, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग दी जाएगी, इसके लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत जनपद आगरा में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग संचालित की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सिविल सर्विसेज, नीट, जेईई और एसएससी, एनडीए, सीडीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2026-27 को नवीन अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक अभ्यर्थी अभ्युदय पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के उपभोक्ताओं को अपने हिस्से की सब्सिडी हासिल करने को हर साल बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण यानी कि ई केवाईसी कराना होता है। अगर वित्तीय वर्ष में एक बार उनके द्वारा की ई केवाईसी नहीं कराई गई है तो उनकी आठवीं और नौवीं रिफिल की सब्सिडी रोक दी जाएगी। वित्तीय वर्ष के समापन तक ई केवाईसी कराने की स्थिति में रोकी गई सब्सिडी जारी भी कर दी जाएगी, अन्यथा की स्थिति में ये सब्सिडी लैप्स हो जाएगी। हालांकि ई केवाईसी न होने की स्थिति में गैस की बुकिंग करा सकते हैं और रिफिल भी प्राप्त कर सकते हैं।

श्रोताओ, आज वर्ल्ड रेड क्रॉस डे है। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे हर साल आज ही के दिन 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य मानवता, सेवा और मदद की भावना को बढ़ावा देना है। ये दिन रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े उन लोगों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जो युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं और संकट के समय बिना किसी भेदभाव के लोगों की सहायता करते हैं। शुद्ध 8 मई को यानी कि आज के दिन रेड क्रॉस डे मनाने की खास वजह है। दरअसल ये तारीख अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति के संस्थापक और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार पाने वाले जीन हेनरी ड्यूनेंट की जन्मतिथि भी है। हेनरी ड्यूनांट मूल रूप से स्विट्जरलैंड के व्यापारी और समाजसेवी थे। उन्होंने इटली के सोलफेरिनो युद्ध में हजारों घायल सैनिकों की दर्द से तड़पते देखा। उस समय घायल सैनिकों की देखभाल के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं थी। बस ये सब देखकर वो बहुत विचलित हुए। उन्होंने मानव सेवा के लिए एक ऐसे संगठन की जरूरत महसूस की जो युद्ध और आपदा के समय लोगों की मदद कर सके। इसके बाद इन्होंने एक किताब लिखी जिसमें इन्होंने युद्ध के दौरान घायलों की सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का विचार रखा। उनके इसी विचार से इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस यानी कि ICRC की स्थापना हुई और बाद में ये आंदोलन पूरी दुनिया में फैल गया और आज रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटी दुनिया के कई देशों में काम करती चली आ रही है। रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य मानवता की सेवा करना है। ये संगठन युद्ध, बाढ़, भूकंप, महामारी और अन्य आपदाओं के समय राहत कार्य करता है। इसके अलावा ये रक्तदान शिविर, प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं और जरूरतमंदों की सहायता भी करता है। रेड क्रॉस का सिद्धांत है हर व्यक्ति को बिना किसी जाति, धर्म, भाषा या देश के भेदभाव के सहायता मिलनी चाहिए। इस संगठन के 7 मूल सिद्धांत हैं: मानवता, निष्पक्षता, तटस्थता, स्वतंत्रता, स्वैच्छिक सेवा, एकता और सार्वभौमिकता। यही सिद्धांत इसे दुनिया के सबसे बड़े मानव सेवा संगठनों में से एक बनाती हैं। आज रेड क्रॉस दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। रेड क्रॉस हमें बताती है कि भले ही दुनिया युद्ध या आपदाओं में बटी हो, लेकिन मानवता का धर्म सबसे ऊपर है। एक इंसान का दूसरे इंसान के काम आना ही सबसे बड़ा धर्म है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है और आप सुन रहे हैं दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास। अब सुनिए एक खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना। यश प्रताप सिंह पुत्र रमन कुमार सिंह जो 383/1 DSNL कैंप एरिया एयरफोर्स स्टेशन खेरिया आगरा निवासी है, दिनांक 24 अप्रैल 2026 से आगरा छावनी रेलवे स्टेशन से लापता है। श्रोताओं, यश प्रताप सिंह की उम्र 22 वर्ष, कद 6 फुट और रंग की हुआ है। गुमशुदगी के समय यश प्रताप ने क्रीम रंग की फुल टी शर्ट और नीले रंग की जींस पहनी हुई थी। यश प्रताप के संबंध में आपको कोई भी सूचना मिलती है तो कृपया आगरा कैंट रेलवे स्टेशन के पते पर सूचित करें या फिर इनके परिवार का एक नंबर है, आप उसे नोट कर लें। आप उस नंबर पर भी सूचित कर सकते हैं। नंबर है 9411401702। इस नंबर को पुनः नोट कर लें। नंबर है 9411401702। खोए हुए व्यक्ति से संबंधित सूचना समाप्त हुई।

तथा चौधरी गार्डन से होगा। समापन जीएल फार्म हाउस टीवी टावर के सामने शमशाबाद मार्ग पर होगा। करीब 4 किलोमीटर लंबी इस शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। 5,000 से ज्यादा लोग इस शोभा यात्रा का हिस्सा बनेंगे। 2 दर्जन से ज्यादा झांकियां भी इसमें शामिल होंगी। इनमें महाराणा प्रताप का डोला विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगा। इसके अलावा हल्दी घाटी युद्ध की झांकी भी महाराणा प्रताप के शौर्य और युद्ध कौशल को दर्शाया जाएगा। श्रोताओं, हल्दी घाटी का युद्ध भारतीय इतिहास की सबसे चर्चित लड़ाइयों में से एक है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप ने मुगल सम्राट अकबर की विशाल सेना का डटकर मुकाबला किया। इस युद्ध ने महाराणा प्रताप की वीरता और रणनीति को भारतीय इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ उनके वफादार सरदारों और भीलों ने अहम भूमिका निभाई थी। सीमित संसाधनों के बाद भी उन्होंने मुगलों के सामने झुकने से इनकार कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना ने दुश्मनों को कड़ी टक्कर दी। ये साबित कर दिया कि आत्मसम्मान और साहस किसी भी बड़ी ताकत से ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। हल्दी घाटी में हुआ ये टकराव केवल एक युद्ध नहीं था, ये स्वाभिमान की रक्षा का प्रतीक बन गया।

श्रोताओं, मातृभूमि की रक्षा, स्वाभिमान की भावना और धर्म संस्कृति के सम्मान के रूप में महाराणा प्रताप की यादें आज भी जिंदा हैं। महान योद्धा के शौर्य और पराक्रम की गाथाएं दिल और दिमाग में राष्ट्रवाद की भावना को मजबूती देती हैं। यही कारण है कि महाराणा प्रताप की जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा एक आयोजन होने के साथ साथ उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बन चुकी है। महाराणा प्रताप शोभा यात्रा आयोजन समिति राजपुर चुंगी की ओर से भव्य शोभा यात्रा 9 मई को निकाली जाएगी। इस यात्रा का शुभारंभ राजपुर चुंगी

और इसी के साथ कार्यक्रम आसपास संपन्न करने की हरप्रीत कौर को इजाजत दीजिए। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

0: वजाहत के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी। सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच रोकी। और आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डकवर्थ लुइस नियम से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्र के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा, जिसमें विधायक दल के नेता का औपचारिक चयन किया जाएगा। अमित शाह केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में बैठक में मौजूद रहेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दास गुप्ता, कोलकाता।
0: उधर तमिलनाडु में नई सरकार के गठन में देरी से राजनीतिक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलग वेत्री कड़गम टीवीके को समर्थन देने के मुद्दे पर विदुथलाई चिरुथाईगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी। हमारी संवाददाता की रिपोर्ट।
2: AIADMK और DMK के विधायक दल की बैठक का नतीजा भी महत्वपूर्ण है। DMK प्रवक्ता TKS एलेंगोवन ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी का यह कर्तव्य है कि वह अपना बहुमत साबित करे, और साथ ही यह भी कहा कि DMK प्रमुख MK स्टालिन कोई संवैधानिक संकट नहीं चाहते। गौरतलब है कि विधायक दल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पुद्दुचेरी AIADMK के सचिव ए अनबाजगन ने कहा कि फैसला लेने का अधिकार पार्टी के महासचिव को दिया गया है। उन्होंने बहुमत के मुद्दे पर राज्यपाल के फैसले की सराहना की और कहा कि मौजूदा राजनीतिक अनिश्चितता में प्रत्याशित फैसले भी हो सकते हैं। उन्होंने मीडिया को यह भी बताया कि उनके नेता स्टालिन के चुनाव में हार से दुखी हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: उधर असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के लिए विभिन्न उपायों की समीक्षा की है। उन्होंने भारतीय खाद्य और कृषि चैंबर के अध्यक्ष डॉक्टर MJ खान के साथ बैठक की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक में किसानों के जीवन को बेहतर बनाने, देश की कृषि व्यवस्था को मजबूत करने और अफ्रीकी क्षेत्र के साथ सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि दीर्घकालिक खाद्य सुरक्षा के लिए कृषि सहयोग बढ़ाने के नए उपायों पर भी विचार विमर्श हुआ। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश का सरकारी अनाज भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। ये मात्रा बफर स्टॉक

0: यानी अनिवार्यता के समय की आवश्यक मात्रा से लगभग 3 गुना अधिक है। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गेहूं और चावल के सुरक्षित भंडार से देश में कल्याणकारी योजनाओं तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। इस बीच सरकार ने कहा है कि 6 मई तक मंडियों से 78,96,000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। पिछले साल इसी अवधि में यह आंकड़ा 75,63,000 मीट्रिक टन था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत प्रशिक्षण महानिदेशालय आज कानपुर स्थित राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान में उद्योग परामर्श बैठक आयोजित कर रहा है। 30 से अधिक उद्योग प्रमुख, मुख्य कार्यकारी अधिकारी और नीति विशेषज्ञ राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के बारे में विचार विमर्श करेंगे। इंडिया एआई और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने स्वास्थ्य सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को तेजी से अपनाने के लिए नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार और व्यापक अनुप्रयोग के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।

0: क्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का महत्वपूर्ण अवसर है। मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि पहले भी दोनों देशों ने आपसी सहयोग में कई चुनौतियों का सामना किया है। उन्होंने भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश के लिए आमंत्रित किया। वियतनाम के राष्ट्रपति ने कहा कि दोनों देशों के संबंध पूर्व वियतनामी राष्ट्रपति हो ची मिन और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं की दूरदृष्टि पर आधारित हैं। वर्ष 2016 के बाद से ये संबंध नई ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं। इस अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम के प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण क्षेत्र के उद्यमी, निवेशक और पेशेवर एशिया के भविष्य को आकार देंगे।
3: इंडिया एंड वियतनाम ऑफर समथिंग इम्पोर्टेंट।
4: भारत और वियतनाम दुनिया को कुछ महत्वपूर्ण चीजें देते हैं, एक भरोसेमंद साझेदारी, स्थिर शासन, आर्थिक गतिशीलता और दीर्घकालिक रणनीतिक विश्वास। एशिया का भविष्य भारत और वियतनाम जैसे देशों के उद्यमियों, इनोवेटर्स, निवेशकों, टेक्नोलॉजी लीडर्स, निर्माताओं और युवाओं के मिलकर काम करने से बनेगा।
3: इंडिया एंड वियतनाम वर्किंग टूगेदर।
2: सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी सेना की पहुंच पर रोक लगा दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़ने को बाध्य होना पड़ा है। अमरीकी अधिकारियों ने इस खबर की पुष्टि की है। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमरीकी रणनीति को झटका लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अब अपना ध्यान राजनयिक माध्यमों पर केंद्रित कर दिया है। उन्होंने ईरान के साथ हाल की बातचीत को संतोषजनक बताते हुए किसी स्थायी समाधान निकलने की आशा व्यक्त की।
5: ईरान अब युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका द्वारा 14 सूत्री प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने संवाद और कूटनीति का आह्वान किया है। प्रस्तावित ढांचे के अंतर्गत

0: अंतर्गत शत्रुता को विराम दिया जाएगा और अंतिम वार्ता के लिए 30 दिन की अवधि दी जाएगी। हालांकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम सहित प्रमुख मुद्दों को बाद की वार्ताओं के लिए छोड़ दिया जाएगा। कूटनीतिक स्थिति अभी भी अनिश्चित बनी हुई है क्योंकि ईरान ने सार्वजनिक रूप से किसी भी शर्त को स्वीकार करने की पुष्टि नहीं की है और ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद वगैर कलिबाफ ने कुछ मीडिया रिपोर्टों को फर्जी बताकर खारिज कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के 10% के नए वैश्विक टैरिफ को गैर कानूनी बताया है। न्यूयॉर्क में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अदालत की 3 सदस्यीय पीठ ने व्यवस्था दी कि राष्ट्रपति ट्रंप ने व्यापार कानून के तहत अमेरिकी संसद से प्रदत्त शक्तियों का उल्लंघन किया। छोटे व्यवसायियों ने राष्ट्रपति ट्रंप के शुल्क संबंधी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी। आकाशवाणी की स्थापना की 90वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज सुबह राजधानी दिल्ली में मैराथन का आयोजन किया गया। लगभग 3.5 किलोमीटर की ये दौड़ आकाशवाणी भवन से शुरू होकर कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक भवन होते हुए आकाशवाणी भवन में संपन्न हुई। प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन तथा दूरदर्शन सहित प्रसार भारती में कार्यरत सभी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों ने इस मैराथन में भाग लिया। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के आदर्श वाक्य के साथ आकाशवाणी की स्थापना वर्ष 1936 में हुई थी। यह देश का सर्वाधिक विश्वसनीय प्रसारण माध्यम है जो विभिन्न भाषाओं में समाचार बुलेटिन के अलावा संगीत, मनोरंजन और जन उपयोगी कार्यक्रमों का प्रसारण करता है। आईपीएल क्रिकेट में कल लखनऊ सुपर जायंट्स ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। वर्षा से बाधित मैच का फैसला डकवर्थ लुइस नियम के आधार पर हुआ। आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के शाम 7:30 बजे दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होगा। और अब मौसम की जानकारी। मौसम विभाग ने आज केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में आज गरज के साथ बारिश और तेज हवा चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी ऐसी ही स्थिति रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: जी विशाल, हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में सरकार गठन की प्रक्रिया पर आज के अधिकांश समाचार पत्रों की नजर है। नव भारत टाइम्स की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय के लिए बहुमत का क्लाइमैक्स बाकी। राज्यपाल ने कहा टीवीके के पास पर्याप्त विधायक नहीं। पार्टी प्रमुख विजय ने मांगा लेफ्ट दलों से समर्थन। दैनिक जागरण ने लिखा है राज्यपाल ने भंग की बंगाल विधानसभा। चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बावजूद भी ममता बनर्जी ने नहीं दिया इस्तीफा। अमर उजाला ने लिखा है पश्चिम बंगाल में पहली बार बन रही भाजपा की सरकार, शपथ ग्रहण समारोह कल। पश्चिम बंगाल में चुनाव बाद हिंसा पर पंजाब केसरी संपादकीय में लिखता है इस हिंसा ने राजनीति के रक्त चरित्र को एक बार फिर उजागर किया है। सत्ता में आने वालों के चेहरे तो बदलते रहे लेकिन खूनी सियासत का चरित्र नहीं बदला। लोकतंत्र में इस तरह की हिंसा के लिए कोई जगह नहीं। राज्य में भाजपा की नई सरकार के सामने राजनीतिक हिंसा, आपराधिक तत्वों और गुंडा संस्कृति पर लगाम लगाने की बड़ी चुनौती होगी। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 100 जवान मारे, 13 विमान गिराए। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र सेनाओं का ये बयान दैनिक भास्कर के मुख्य पृष्ठ पर है। देश में सड़क हादसों में रोजाना औसतन 546 लोगों की मौत, राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के हवाले से जनसत्ता लिखता है तेज गति से गाड़ी चलाना है सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण। बड़ा बदलाव शीर्षक से राजस्थान पत्रिका की खबर है, देश में मुफ्त एंटरटेनमेंट पर लगेगी लगाम, बंद होगी फ्री चैनल स्ट्रीमिंग, सरकार की शुल्क लगाने की तैयारी, रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य। केंद्र सरकार की ओर से 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए बड़ी सौगात, अमर उजाला में है कामगारों की अब हर साल होगी मुफ्त स्वास्थ्य जांच।
1: धन्यवाद निखिल। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पर्यवेक्षक अमित शाह आज कोलकाता में विधायक दल का नेता चुनने के लिए पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात करेंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर गतिरोध जारी, सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन देने के मुद्दे पर बीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के विधायकों की आज बैठक। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लैम ने मुंबई में व्यापार फोरम में वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत और वियतनाम की भूमिका पर बल दिया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने वैश्विक कृषि परिदृश्य में भारत की स्थिति मजबूत करने के उपायों की समीक्षा की और सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमरीकी

0: IPL cricket, Lucknow Super Giants beat Royal Challengers Bengaluru by 9 runs using DLS method at the Ikana Stadium. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
1: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकाने असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तो लैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। कॉमर्स के वजीर पीयूष गोयल ने आलमी जरई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम बनाने से मुतालिक इकदाम का जायजा लिया। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और आईपीएल क्रिकेट में इकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने डीएलएस साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद वजीर दाखिला अमित शाह आज कोलकाता पहुंच रहे हैं। वो बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएज के साथ मीटिंग करेंगे जिसमें पार्टी के लेजिस्लेटिव रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मगरबी बंगाल में शानदार जीत के बाद बीजेपी हलफबरदारी की तकरीब को कौमी अहमियत की सियासी तकरीब में तब्दील करने की तैयारी कर रही है। मगरबी बंगाल में पहली मरतबा बीजेपी की हुकूमत के लिए हलफबरदारी की तकरीब हफ्ते के रोज 9 मई को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद होगी। ये बैशाख की 25 तारीख होगी। मस्कूरा मकाम पर स्टेज और सिक्योरिटी इंतजामात की तैयारियां बुध के रोज से ही शुरू हो गईं। बीजेपी जराए के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा, बीजेपी सदर नितिन नवीन और मुतादिद दीगर आला रहनुमाओं के तकरीब में शामिल होने का इम्कान है। बीजेपी और एनडीए की हुकूमत वाली रियासतों के वज़ीरे आला और नायब वज़ीरे आला को भी तकरीब के लिए मदु किया जा रहा है। आज न्यू टाउन में बिस्वा बांग्ला कन्वेंशन सेंटर के मकाम पर बीजेपी के 9 मुंतखब एमएलएज की मीटिंग होगी जिसमें लेजिस्लेटिव पार्टी के रहनुमा का इंतखाब किया जाएगा। इस दौरान वजीर दाखिला अमित शाह मरकजी मुशाहिद के तौर पर मौजूद रहेंगे। हलफबरदारी की तकरीब के लिए सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इम्कान है कि इस दौरान तकरीबन 4000 पुलिस एहलकार तैनात रहेंगे क्योंकि ये तकरीब रविंद्र जयंती के मौके पर मुनक्किद हो रही है, इसलिए सकाफती प्रोग्रामों को खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए अर्जुमंद अली खान।
1: तमिलनाडु में नई सरकार की तश्कील में ताखीर हो रही है। अक्सरियत के लिए दरकार 118 अरकानी असेंबली की हिमायत हासिल करने की खातिर बातचीत का सिलसिला जारी है। इधर डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के नए मुंतखब अरकानी असेंबली की लेजिस्लेटिव पार्टी मीटिंगें हुई। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इडप्पडी पलनीस्वामी को पुदुचेरी में लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। इधर आज वीसीके, सीपीआई और सीपीआईएम के नए मुंतखब अरकान की अहम मीटिंग होने वाली है जिसमें वाहिद सबसे बड़ी पार्टी तमिल का वेट्री कड़गम टीवीके को हिमायत देने या ना देने के मामले पर गौर किया जाएगा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
3: तमिलनाडु में कल डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के अरकान असेंबली की मीटिंग के साथ ही सूरत हाल ने दिलचस्प सियासी रुख इख्तियार कर लिया है। इन दोनों पार्टियों ने अक्सरियत साबित करने के मामले पर गवर्नर के फैसले को सराहा है। डीएमके पार्टी के तर्जुमान टीकेएस एरनगोवन ने कहा है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी का यह फर्ज है कि वो अपनी अक्सरियत साबित करे। उन्होंने ये भी कहा कि डीएमके सरबरा एम के स्टालिन ये नहीं चाहते कि किसी तरह का कोई आईनी बहरान पैदा हो। इधर पुदुचेरी के लिए ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी के सेक्रेटरी ए अंबड़गन ने अरकान असेंबली की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि फैसला करने का इख्तियार पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को दिया गया है। उन्होंने अक्सरियत साबित करने के मामले पर रियासत के गवर्नर के फैसले की सताइश की और कहा कि मौजूदा सियासी गैर यकीनी के हालात में गैर मुतवक्को फैसले भी सामने आ सकते हैं।

0: चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
1: आकाशवाणी ने आज अपने कयाम को 90 साल मुकम्मल होने के मौके पर कौमी राजधानी में एक मैराथन का अहतमाम किया। तकरीबन 3.5 किलोमीटर की ये मैराथन आकाशवाणी भवन से शुरू हुई और कृषि भवन, रेल भवन और रिजर्व बैंक की इमारत के रास्ते से गुजरते हुए आकाशवाणी भवन पर इख्तिताम पजीर हुई। इसमें आकाशवाणी, दूरदर्शन और प्रसार भारती के मुलाजिमीन के साथ साथ उनके अरकान खानदान ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी और आकाशवाणी के डायरेक्टर जनरल राजीव कुमार जैन भी मौजूद थे। वियतनाम के सदर तो लैम ने इस बात पर जोर दिया है कि आज के बदलते हुए आलमी निजाम में भारत और वियतनाम के पास आलमी सप्लाई चेन के शोबे में कलीदी किरदार निभाने का बड़ा मौका है। मुंबई में भारत वियतनाम कारोबारी फोरम से खिताब करते हुए जनाब लैम ने उजागर किया कि मौजूदा आलमी मंजरनामा एक चैलेंज जरूर है, लेकिन साथ ही ये भारत और वियतनाम के दरमियान तआवुन व इश्तराक को नई बुलंदी पर पहुंचाने का एक मौका भी है। इस मौके पर खिताब करते हुए महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि भारत और वियतनाम जैसे मुल्कों के सनतकार, सरमायाकार और पेशेवाराना अफराद जो टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग शोबों से वाबस्ता हैं, एशिया के मुस्तकबिल की तश्कील करेंगे। वियतनाम के सदर और कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तो लैम कल रात श्रीलंका के 2 रोजा सरकारी दौरे पर वहां पहुंचे हैं, जिसका मकसद बाहमी ताल्लुकात को मुस्तहकम करना और तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देना है। सदर तो लैम भारत का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मुंबई से परवाज के जरिए बंदर नाइक के बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर पहुंचे। उनके हमराह 209 अरकान पर मुश्तमिल एक वफ्द भी है। सदर तो लैम श्रीलंका का दौरा सदर अनुरा कुमारा दिसा नाइके की दावत पर कर रहे हैं और ये दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 55 बरस मुकम्मल होने के मौके पर हो रहा है। वियतनाम के सदर श्रीलंका की कयादत के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे, पार्लियामेंट से खिताब करेंगे और कोलंबो में श्रीलंका वियतनाम तिजारत, सरमायाकारी और सियाहत से मुतालिक फोरम में शिरकत करेंगे। भारत और वियतनाम ने उभरती हुई टेक्नोलॉजी, इख्तिरा, तहकीक और स्टार्टअप इको निजाम में तआवुन व इश्तराक को गहरा करने से मुतालिक मुजाकरात किए हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर मुमलिकत जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में वियतनाम के अपने हम मनसब डॉक्टर वू हाई क्वान के साथ दो तरफा मुजाकरात किए। बातचीत के दौरान फरीकैन ने मसनूई जहानत, साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इख्तराई इको निजाम और टेक्नोलॉजी की मुंतकली से मुतालिक पहल कदमियों में तआवुन व इश्तराक पर तबादला ख्याल किया। मीटिंग में तहकीकी इदारों और इख्तराई मराकज से मुतालिक तआवुन समेत दोनों ममालिक के दरमियान जारी तालीमी और इदारा जाती इश्तराक का भी जायजा लिया गया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। कॉमर्स और सनत के वजीर पीयूष गोयल ने खुराक और ज़राअत की भारतीय चेंबर के चेयरपर्सन डॉक्टर MJ खान के साथ एक मीटिंग की सदारत की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में इन मालूमात को शेयर करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने हमारे किसानों के मियारे जिंदगी को बेहतर बनाने, आलमी ज़राई मंजरनामे में भारत की पोजीशन को मुस्तहकम करने, अफ्रीकी खित्ते में ज्यादा इश्तराक और इस शोबे में भारत की महारत को शेयर करने जैसे इकदामात पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मजीद कहा कि उन्होंने तवील मुद्दती खुराक की यकीनी फराहमी के लिए ज़राई इश्तराक बढ़ाने के नए तौर तरीकों पर भी बातचीत की। जनाब गोयल ने डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारन के साथ एक मीटिंग की भी सदारत की। उन्होंने कहा कि उन्होंने कंपनी के इख्तराई सफर और टेक्नोलॉजी पर मबनी कारोबारी मॉडल और इदारे की पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि कंपनी भारतीय लॉजिस्टिक्स को ज्यादा शफाफ, मुअस्सर और मुस्तकबिल के लिए तैयार बना रही है। खारिजा सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ने कल अबू जहबी में भारत, फ्रांस और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान एक सह फरीकी मीटिंग में शिरकत की। इसमें भारत के लिए वजीर मुमलिकत और खसूसी एलची रीम अल हाशमी और फ्रांस की यूरोपी और खारिजी उमूर की वजारत में सेक्रेटरी जनरल मार्टिन ब्रेन्स शामिल थे। वजारत खारिजा ने कहा है कि तीनों ममालिक ने अपनी शराकत दारी मुस्तहकम करने और आइंदा के लाइहा अमल के लिए काम करने से इत्तेफाक किया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है।

0: वजह से सदर डोनाल्ड ट्रंप को आबनाई हुरमुज से बहरी जहाजों को बाहिफाजत निकालने के अपने मंसूबे को बीच में ही तर्क करना पड़ा है। अमरीका के दो अहदेदारान ने इस बात की तस्दीक की है। सऊदी अरब का ये कदम खलीज के खित्ते से मुतालिक अमरीका की हिकमत अमली के लिए एक बड़ा धचका माना जा रहा है, क्योंकि अमरीका के एक कलीदी इलाकाई इत्तेहादी ने प्रोजेक्ट फ्रीडम के शुरू होने से पहले ही इस कार्रवाई में रुकावट डाल दी है। उधर सदर ट्रंप ने अपनी तवज्जो सिफारतकारी की जानिब मरकूज कर दी है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: ईरान जंग के खात्मे के लिए अब 14 निकात पर मुश्तमिल अमरीका की तजवीज का जायजा ले रहा है। उधर ईरान के वजीर खारजा अब्बास राखची ने मुजाकरात और सिफारतकारी की जरूरत पर जोर दिया है। मुजवजा फ्रेमवर्क में लड़ाई रोकने और हतमी मुजाकरात के लिए 30 दिन की मुद्दत की बात कही गई है, जबकि ईरान के एटमी प्रोग्राम समेत बुनियादी मामलात पर बाद में बातचीत की जाएगी। सिफारती मंजरनामा अब भी गैर वाजह है, क्योंकि ईरान ने किसी भी तरह की शराइत कबूल करने की तस्दीक नहीं की है और ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ ने भी इस बारे में कुछ मीडिया इत्तलात को फर्जी करार देकर इन्हें मुस्तरद कर दिया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शमीम इरफान।
0: रूस ने यूक्रेन के साथ लड़ाई में आज से जंग बंदी का ऐलान किया है, जो दूसरी आलमी जंग में साबिका सोवियत यूनियन की फतह के 81 साल पूरे होने के जश्न के दौरान 10 मई तक जारी रहेगी। सदर व्लादिमीर पुतिन के फैसले के तनाजुर में रूस की वजारत दिफा ने यह ऐलान किया है। इससे कबल यूक्रेन के सदर जेलेंस्की ने येरेवन में एक सरबराह मीटिंग में यह कहा था कि हो सकता है कि रूस मॉस्को के रेड स्क्वायर पर मुमकिन ड्रोन हमलों के अंदेशे से 9 मई की यौम फतह परेड के दौरान फौजी साजो सामान की नुमाइश करने से गुरेज करे। अमरीका की तिजारती उमूर से मुतालिक एक वफाकी अदालत ने यह फैसला सुनाया है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए 10% आलमी महसूलात गैर कानूनी हैं। न्यूयॉर्क में बैनुल अक्वामी तिजारत से मुतालिक अदालत के 3 जजों के पैनल ने यह फैसला सुनाया कि सदर ट्रंप ने तिजारत से मुतालिक कानून के तहत सदर को दिए गए कांग्रेस के इख्तियारात से तजावुज करके इकदाम किए हैं। भारतीय मौसमियात महकमे IMD ने केरलम, माहे, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज शदीद बारिश की पेशगोई की है। मौसमियात के महकमे ने कहा है कि उत्तर प्रदेश, मशरकी राजस्थान, साहिली कर्नाटक और रायलसीमा में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने और तेज हवाएं चलने का इम्कान है। IPL क्रिकेट में कल रात लखनऊ के ईकाना स्टेडियम में बारिश से मुतासिरा मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS तरीकाकार के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स को जीत के लिए 213 रन का निशाना मिला था और उसने 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन बनाए। आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
2: शुक्रिया नितिका। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी अखबारों ने मगरबी बंगाल असेंबली तहलील होने से मुतालिक खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की इस हवाले से सुर्खी है, ममता बनर्जी हुकूमत का 15 साल दौर खत्म, गवर्नर RN रवि ने आईनी इख्तियारात इस्तेमाल किए। बिहार काबीना में तौसी से मुतालिक खबर भी सभी अखबारों में नुमाया है। रोजनामा इनकलाब ने सुर्खी लगाई है, सम्राट काबीना की तौसी, 32 वज़रा को गवर्नर ने ओहदे का हलफ दिलाया। ऑपरेशन सिंदूर का एक साल मुकम्मल होने की खबर को भी सभी अखबारों ने अहमियत के साथ सफ़े अव्वल पर जगह दी है। रोजनामा प्रताप ने वजीर आजम के इस बयान को शह सुर्खी बनाया है कि ऑपरेशन सिंदूर दहशतगर्दी के खिलाफ भारत का सख्त रद्द अमल और आवाम की यकजहती की अलामत।
0: और अब आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। मगरबी बंगाल के लिए बीजेपी के मरकजी मुशाहिद अमित शाह कोलकाता में नए मुंतखब पार्टी अरकानी असेंबली के साथ मीटिंग करेंगे, ताकि कानून साज पार्टी के लीडर का इंतखाब किया जा सके। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के मामले पर तातुल बरकरार है। VCK, CPI और CPIM के अरकानी असेंबली हिमायत देने या न देने के मामले पर आज मीटिंग करेंगे। वियतनाम के सदर तोलैम ने मुंबई में एक कारोबारी फोरम के दौरान आलमी सप्लाई निजाम में भारत वियतनाम रोल पर जोर दिया है। सऊदी अरब ने अपने फौजी अड्डों और फजाई हदूद तक अमरीकी फौज की रिसाई को मुअत्तल कर दिया है। और IPL क्रिकेट में ईकाना स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स ने DLS साबते के तहत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अपराधा के 8:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि।

साथियों, साजिद वाजिद के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे शबीर अहमद की शब्द रचना। स्वर थे उदित नारायण और श्रेया घोषाल की फिल्म थी गर्व।

और अब लीजिए सुनिए वास्तव फिल्म से सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति को। गीतकार हैं समीर, संगीतकार हैं जतिन ललित।

इस गीत में स्वर थे अनुराधा पौड़वाल और हरी हरिन के, गीतकार थे समीर, संगीतकार थे नदीम शमर। फिल्म का नाम था सिर्फ तुम।

प्रीतम के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे सईद कादरी की शब्द रचना स्वर था जवाद अहमद का, फिल्म थी वो लम्हे। और अब लीजिए सुनिए सोनू निगम और अलका याग्निक को, फिल्म है कभी अलविदा ना कहना। बोल हैं जावेद अख्तर के, धुन बनाई है शंकर एहसान लोयनी।

सोनू निगम और अलका याग्निक के गाए इस गीत के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है।

आज सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आप सुनिए वाराणसी और गाजीपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं वाराणसी जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनीष।

0: सिंह का।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी काशी दौरे के दौरान 6332.08 करोड़ रुपए की 163 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने 2464.46 करोड़ रुपए की लागत से मालवीय पुल के पास बनने वाले रेलवे रोड ब्रिज सिग्नेचर ब्रिज की आधारशिला रखी। इसके अलावा 1582.99 करोड़ रुपए की सीवरेज व जलापूर्ति योजनाएं तथा 429.36 करोड़ रुपए के कवि चौरा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल परियोजना का भी शिलान्यास किया। लोकार्पित प्रमुख परियोजनाओं में 308.09 करोड़ का एसटीपी, 144.43 करोड़ का कजाकपुरा आरओबी और सारनाथ स्थित तिब्बती संस्थान में सोवा रिंगपा मेडिकल कॉलेज शामिल है। प्रधानमंत्री का यह दौरा काशी के समग्र विकास, आधारभूत संरचना सुदृढ़ीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर सारनाथ में आयोजित भव्य बौद्ध महोत्सव श्रद्धा, अध्यात्म और संस्कृति का अद्भुत संगम बनकर उभरा। गौतम बुद्ध की 2570वीं जयंती के उपलक्ष्य में हुए इस आयोजन में देश विदेश से आए 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने बुद्ध के पवित्र अस्थि धातुओं के दर्शन कर पुण्य अर्जित किया। महोत्सव का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध शोध संस्थान लखनऊ, महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा इंडो श्रीलंका जम्बू द्वीप बुद्ध विहार सारनाथ के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। मूलगन कुटी विहार में पवित्र अवशेषों के दर्शन के साथ श्रद्धालुओं ने आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किया। इस अवसर पर विश्व शांति के लिए तथागत बुद्ध विषय पर निबंध और चित्रकला प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें 200 से अधिक बच्चों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया, वहीं सभी को प्रमाण पत्र देकर प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के दौरान धम्म देशना, विपस्सना और विचार गोष्ठियों का आयोजन भी हुआ, जिसमें वक्ताओं ने बुद्ध के उपदेशों को जीवन में अपनाने पर बल दिया। श्रद्धालुओं के लिए पूरे दिन भोजन की व्यवस्था की गई, जिसमें सेवा और करुणा का संदेश भी प्रसारित हुआ। इस अवसर पर महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव सुमितानंद थेरो ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 महत्वपूर्ण घटनाओं लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान प्राप्ति और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण से जुड़ा पावन दिवस है।
2: बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हम लोग महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया तरफ से सारनाथ में हर साल में हम लोग बुद्ध पूर्णिमा मना रहा है। भगवान बुद्ध का पवित्र अस्थि ये मूलगंधकुटी महाविहार में रखा है, हम लोग को भगवान बुद्ध का अस्थि दर्शन कर रहा है।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस की पासिंग आउट परेड वाराणसी के पुलिस लाइन मैदान में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से परेड को संबोधित किया, जिसका सजीव प्रसारण सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर किया गया। वाराणसी मंडल के विभिन्न भर्ती प्रशिक्षण केंद्रों में आयोजित इस पासिंग आउट परेड में कुल 3070 प्रशिक्षु आर्ची अब उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान के रूप में सेवा के लिए तैयार हो गए हैं। वाराणसी, जौनपुर एवं गाजीपुर जनपदों के प्रशिक्षण केंद्रों सहित पीएसी 36वीं वाहिनी रामनगर एवं 34वीं वाहिनी भुल्लनपुर में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके आरक्षियों ने परेड में भाग लिया। इसके बारे में विस्तृत रूप से वाराणसी के पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने बताया कि वाराणसी रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर में विशेष रूप से महिला आरक्षियों को प्रशिक्षण दिया गया।
3: 491 महिला आरक्षियों ने यहाँ पर सफलतापूर्वक प्रशिक्षण अपना कंप्लीट किया है। दीक्षांत परेड 491 महिला आरक्षियों की यहाँ पर हुई है। इन महिला आरक्षियों की जो लगभग 9.5 महीने की यहाँ पर ट्रेनिंग हुई है, इन महिलाओं ने पूरे उत्साह के साथ, पूरी लगन के साथ सफलतापूर्वक इस ट्रेनिंग को पूरा किया है,
1: जिसमें से 491 महिला प्रशिक्षुओं ने भी परेड में सहभागिता की। परेड के उपरांत इन सभी महिला आरक्षियों को विभिन्न थानों में तैनाती के लिए तैयार किया गया है, जहां वे महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था सुदृढ़ीकरण एवं जन सेवा के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इसके अतिरिक्त वाराणसी परिक्षेत्र के जौनपुर एवं गाजीपुर प्रशिक्षण केंद्रों से 1390 आरक्षियों ने भी परेड में भाग लिया। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रशिक्षुओं को पुरस्कृत एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वाराणसी के चौका घाट स्थित गिरजा देवी सांस्कृतिक संकुल में प्रसिद्धि विद्यालयों के शिक्षा मित्रों के बढ़े हुए मानदेय की चेक वितरण एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गोरखपुर के गुरु गंभीर नाथ प्रेक्षागृह से प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुख्य आतिथ्य में आयोजित समारोह का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया, जिसे उपस्थित लोगों ने उत्साहपूर्वक देखा। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवा योजन समन्वय मंत्री अनिल राजभर, स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल, जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य, MLC धर्मेंद्र सिंह, विधायक सौरभ श्रीवास्तव एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार द्वारा दीप प्रज्वलन और माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। इस अवसर पर श्रम मंत्री अनिल राजभर ने शिक्षा मित्रों और शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि वे देश के भविष्य को संवारने में अहम भूमिका निभा रहे हैं।

0: उन्होंने मानदेय वृद्धि को शिक्षा मित्रों के मनोबल को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय बताया।
1: वाराणसी जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं गाजीपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है श्री राम राय का।
2: गाजीपुर के कासमाबाद तहसील स्थित कयामपुर छावनी गांव में मगई नदी पर लोगों ने श्रमदान कर पुल निर्मित कर दिया, जिसका लोकार्पण प्रयाग उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शेखर यादव ने किया। मगई नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 15 से 20 गांव के ग्रामीणों को लंबी दूरी तय कर जिला मुख्यालय पहुंचना पड़ता था। इसके लिए ग्रामीणों ने स्वयं पहल की एवं आपस में चंदा इकट्ठा कर मगई नदी पर पुल निर्मित कर दिया। न्यायमूर्ति शेखर यादव ने कहा कि यह संकल्प शक्ति एवं अच्छी सोच का ही परिणाम है कि आज ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी सहायता के मगई नदी पर पुल बनाकर एक अनूठा उदाहरण पेश किया है। पश्चिम बंगाल चुनाव में गाजीपुर के भावरकोल ब्लॉक अंतर्गत पलिया गांव निवासी उमेश राय ने कोलकाता के चर्चित हावड़ा उत्तर विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की है। उनकी इस उपलब्धि पर उनके गांव पलिया सहित पूरे जनपद में जश्न का माहौल है। ग्रामीण एक दूसरे को मिठाई खिलाकर ढोल नगाड़े बजाकर एक दूसरे को शुभकामना दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का असर अब गाजीपुर में भी दिखने लगा है। बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता विवेक खन्ना ने पिछले दिनों एक पावर हाउस के 10 ट्रांसफार्मर चोरी के मामले में विभागीय संलिप्तता को देखते हुए 3 अफसरों को और 2 कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसडीओ प्रमोद यादव, जेई राजीव गुप्ता, जेई नीरज खरवार को निलंबित कर दिया। वहीं 2 संविदा लाइन मैन बर्खास्त कर दिए गए। पिछले दिनों गाजीपुर में करंडा थाना क्षेत्र के कटरिया गांव में हुई संदिग्ध मौत के मामले में यूपी के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने मृतका के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें हर संभव मदद एवं न्याय का भरोसा दिलाया। वहीं दूसरी ओर पूर्व कैबिनेट मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह तथा अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने भी कटरिया गांव पहुंचकर मृतका के परिजनों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की। पिछले दिनों गाजीपुर में हुई बरसात और आंधी तूफान के कारण जहां सब्जियों को नुकसान हुआ, वहीं तेज आंधी के कारण पेड़ गिरने से 3 व्यक्तियों की मौत भी हो गई। घटना के बाद जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला मृतकों के परिजनों के बीच पहुंचे और उन्हें हर संभव मदद पहुंचाने का भरोसा दिलाया। अपर जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मृतकों को 4-4 लाख रुपए आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। 1 मई को गाजीपुर में मजदूर दिवस के अवसर पर जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने श्रमिकों के साथ बैठक की और उन्होंने उनके बीच मजदूर दिवस मनाया। उन्होंने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में गाजीपुर में 780 श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है तथा उन्हें 3.25 करोड़ रुपए भी प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अनुसार गाजीपुर में यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक श्रमिक को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके। पिछले दिनों गाजीपुर पुलिस ने जनपद में अपराध मुक्त वातावरण बनाने की उद्देश्य से पुलिस की 12 टीमों के द्वारा एक गैंग के 61 सदस्यों के ठिकाने पर छापेमारी की। इस क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ईरज राजा ने बताया कि गैंग के 24 सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है तथा गैंग के कुल 90 शस्त्र लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। पिछले दिनों गाजीपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 1 अप्रैल से शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दिया गया है। उन्होंने राजभर समाज के आजादी की लड़ाई में योगदान की चर्चा करते हुए कहा कि गोरखपुर के चौरी चौरा कांड में 26 राजभर युवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। आज भी राजभर समाज महाराजा सुहेल देव के चलाए रास्ते पर ही चल रहा है एवं विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में लगा हुआ है। पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी गाजीपुर पहुंचे एवं विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक संकट के बीच भी भारतीय युवा विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए पूरे मनोयोग से लगे हुए हैं। जनपद न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार पांडे ने बताया कि आगामी 9 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर न्याय आपके द्वार नारे को चरितार्थ करते हुए यह लोक अदालत लगाई जा रही है। इसमें बैंकिंग तथा पारिवारिक वाद के मामले तथा अन्य विभिन्न मामलों का भी निपटारा होगा। इस लोक अदालत के माध्यम से वादकारी का समय, श्रम एवं पैसे की बचत होगी। उन्होंने गाजीपुर के लोगों से अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत में भागकर अपने मामले को निपटाएं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में गाजीपुर के 6 मेडिकल फर्मों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। इसी क्रम में पिछले दिनों 2 आरोपियों राहुल यादव एवं दयाराम सिंह ने न्यायालय में हाजिर हुए एवं उन्हें जेल भेज दिया गया। 1 आरोपी सर्वांश वर्मा की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है एवं अन्य 3 के खिलाफ गिरफ्तारी के लिए कुर्की आदि के माध्यम से पुलिस लगातार गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

मीडियम वेव 196.9 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओ, गांधी चर्चा के अंतर्गत आइए आपको सुनवाते हैं राम नाम के संबंध में गांधी जी के विचार।

गांधी चर्चा के अंतर्गत आज हम राम नाम के संबंध में बापू के विचार बतलाएंगे। मानस शास्त्री भी मानते हैं कि मनुष्य जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। राम नाम इसका अनुसरण करता है। नाम जप पर मेरी श्रद्धा अटूट है। नाम जप की खोज करने वाला कोई अनुभवी था और मेरी ये दृढ़ सम्मति है कि वो खोज बहुत ही महत्व की है। निरक्षर के लिए भी शुद्धि का द्वार खुला रहना चाहिए। नाम जप से ये काम होता है। जिसके हृदय में राम प्रतिक्षण बसे रहते हैं उस पर विकार हमला कर ही नहीं सकते। सच तो ये है कि जो शुद्ध बुद्धि से राम नाम जपता है समय पाकर वो उसके हृदय में प्रवेश करता ही है। हृदय में प्रवेश हो जाने के बाद राम नाम अभेद किला बन जाता है। कोई कैसा भी दुष्ट मनुष्य आप पर हमला करने आए तो आप राम नाम लीजिए। बहुत से दुष्ट मनुष्य तो उसकी आवाज से ही भाग खड़े होंगे। लेकिन कदाचित ऐसा ना हो तो भी क्या हुआ, ऐसे समय हमें मर मिटना चाहिए। तेरे लिए भी राम नाम है, इसी तरह मेरे लिए और सबके लिए भी वही है। ये दवा निरंतर काम करती रहती है, लेकिन जानने वाला ही इसका लाभ उठा सकता है। जब राम नाम का स्मरण श्वासोच्छ्वास की तरह स्वाभाविक होता है तब वो दूसरे कार्यों में विघ्न रूप नहीं होता बल्कि बल पहुंचाता है। उसी तरह जिस तरह तंबूरे का सुर दूसरे सुरों को बल देता है। इसमें एक समय में दो काम करने का दोष नहीं आता। आंख अपना काम करती है, कान अपना, सब एक साथ होता है। अब तुम समझ सकते हो कि किस तरह राम नाम मेरे दूसरे कार्यों को सरल बनाता है और सफल भी।

उसका स्वरूप अवर्णनीय है, अनुभव गम्य है। राम नाम लेते समय मैं किसी मूर्ति का ध्यान नहीं धरता, मैं मूर्तिमंत राम को नहीं पूजता। हम नाम की पूजा करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम से नाम बड़ा है, अर्थात देहधारी की अपेक्षा देहातीत अनिर्वचनीय तत्व बड़ा है। हरि नाम जपो, परमार्थ करो, महिमा राजा राम की नहीं बल्कि नाम की है। राम नाम का उपयोग तो जाने अनजाने रोज होता ही है, किंतु प्रत्येक संकट के समय ज्ञान पूर्वक होता है और जहां तक मुझे याद है उससे हमेशा शांति मिली है। ये नहीं कहा जा सकता है कि नाम स्मरण का कोई निश्चित समय होता है। राम को निरंतर हृदय में रखेंगे तो हमारा बाल भी बांका न होगा। जब हमारे हृदय में राम नाम अंकित हो जाता है तो जिस तरह नींद में सांस चलती रहती है उसी तरह राम नाम चलता रहता है। नाम स्मरण ही एक दृष्टि से यज्ञों का राजा है। उसमें शारीरिक कष्ट नहीं के बराबर है और परिणाम सबसे अधिक हैं। हम लोग पाप योनि से उत्पन्न हुए और पाप कर्मों के परिणाम स्वरूप ही देहाधीन हुए हैं। आप ये सारा पल भर में कैसे धो डालने की अपेक्षा करते हैं? तुलसीदास भी कहते हैं कि संकट हो या ना हो पर राम नाम का जप निरंतर जारी रखो। ऐसा करने से ही हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा और हमें जो स्वार्थ सिद्ध करना है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अतः जप निरंतर चलता रहे। और राम कौन है ये तो हमें स्वयं सोचकर निर्णय कर लेना है। राम तो निरंजन है, निराकार है। ये थे राम नाम के संबंध में बापू के विचार। और आइए अब सुनते हैं मधुसूदन और साथी की आवाज में बापू का ये प्रिय भजन।

श्रोताओं, माँ यशोदा के लाडले श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से कौन परिचित नहीं है। समस्त संसार को अपनी मुरली की धुन का दीवाना बनाने वाले श्री कृष्ण हम सबके दिलों में वास करते हैं।

वो देवकी और यशोदा का नंदलाला, वो उंगली पर गोवर्धन उठाने वाला गोकुल का ग्वाला, वो रुक्मणी का अधिकार, राधा का प्यार, वो द्वारका नरेश, सुदामा का यार, वो आखिरी सच, आखिरी न्याय, वो जीवन का सार, वो गीता के अध्याय।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह के स्वर में भजन। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। लोक संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं मधुरिमा सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आप सुन रहे हैं लोक संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मधुरिमा सक्सेना के गाए कुछ लोकगीत।

मधुरिमा सक्सेना के गाए इस दो गीत के साथ लोक संगीत का कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

आरडी बर्मन के संगीत निर्देशन में अभी आप सुन रहे थे आनंद बख्शी की शब्द रचना, स्वर थे लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, फिल्म थी रॉकी।

कार्यक्रम का अगला गीत है एक बार फिर से लता मंगेशकर और किशोर कुमार के जुगल स्वरों में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार है आर डी बर्मन, फिल्म का नाम है शक्ति।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम सुर सरिता में अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और किशोर कुमार को। गीतकार है जावेद अख्तर, संगीतकार है शिव हरी। फिल्म का नाम है सिलसिला।

इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता अब यही संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए आपको सुनवाते हैं राग ललित में संतूर वादन। कलाकार है अनवर हुसैन खान।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनवर हुसैन खान का राग ललित में संतूर वादन। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। समय है कार्यक्रम आज के कलाकार का, जिसे लेकर हाजिर है आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हिंदी सिनेमा के इतिहास में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो केवल पर्दे पर निभाए गए किरदारों से नहीं, बल्कि अपनी सादगी, संवेदना और मानवीय गहराई से हमेशा के लिए याद रह जाते हैं। बलराज साहनी ऐसा ही एक नाम है। वे उन चुनिंदा अभिनेताओं में थे जिन्होंने अभिनय को बनावट और आडंबर से दूर रखकर उसे जीवन की सच्चाई से जोड़ा। उनके चेहरे की सहजता, आवाज का ठहराव और भावनाओं की ईमानदार अभिव्यक्ति ने उन्हें दर्शकों के दिल में एक स्थायी स्थान दे दिया। बलराज साहनी का जन्म 1 मई 1913 को रावलपिंडी में हुआ था, जो अब पाकिस्तान में है। उनका असली नाम युधिष्ठिर साहनी था, लेकिन हिंदी सिनेमा ने उन्हें बलराज साहनी के रूप में वो पहचान दी जो आज भी बड़े सम्मान से याद की जाती है।

बलराज साहनी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनकी पत्नी दमयंती साहनी थी जो रंगमंच और रेडियो से जुड़ी थी। उनके पुत्र परीक्षित साहनी आगे चलकर हिंदी फिल्मों और टेलीविजन के जाने माने अभिनेता बने। बलराज साहनी के छोटे भाई भीष्म साहनी हिंदी साहित्य के अत्यंत सम्मानित लेखक थे। इस प्रकार उनका परिवार साहित्य, कला और सामाजिक चेतना से गहराई से जुड़ा हुआ था। ये वातावरण उनके व्यक्तित्व में भी साफ दिखाई देता है, जहां संवेदना, विचारशीलता और सरलता का सुंदर संगम मिलता है।

दोस्तों, बलराज साहनी केवल अभिनेता ही नहीं बल्कि एक पढ़े लिखे, गंभीर और सामाजिक सरोकारों से जुड़े व्यक्तित्व थे। उन्होंने अध्यापन, लेखन और प्रसारण के क्षेत्र में भी कार्य किया। बाद में उन्होंने फिल्मों की दुनिया में प्रवेश किया और अपने सहज अभिनय के कारण बहुत जल्दी दर्शकों और समीक्षकों का ध्यान आकर्षित किया। वे उन कलाकारों में थे जिनके अभिनय में शोर नहीं बल्कि गहराई थी, नाटकीयता नहीं बल्कि जीवन की सच्चाई थी। यही कारण है कि उनका अभिनय हर वर्ग के दर्शक को अपना सा लगता था।

दोस्तों, बलराज साहनी की प्रमुख फिल्मों में दो बीघा जमीन, काबुलीवाला, सीमा, वक्त, एक फूल दो माली और गरम हवा जैसी यादगार फिल्में शामिल हैं। दो बीघा जमीन में संघर्षशील किसान का उनका किरदार आज भी भारतीय सिनेमा में यथार्थवादी अभिनय की मिसाल माना जाता है। काबुलीवाला में उन्होंने भावनाओं की गहराई को अत्यंत मार्मिक ढंग से व्यक्त किया, जबकि गर्म हवा में विभाजन के बाद के दर्द, असुरक्षा और टूटन को इतनी सच्चाई से निभाया कि वह अभिनय आज भी स्मरणीय है। उनके निभाए गए किरदारों में हमेशा एक आम इंसान की धड़कन सुनाई देती थी।

बलराज साहनी की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वे अभिनय करते हुए दिखाई नहीं देते थे, बल्कि किरदार को जीते हुए प्रतीत होते थे। उनके चेहरे की सादगी, आवाज का ठहराव और भावों की ईमानदार अभिव्यक्ति ने उन्हें अपने समय से के सबसे सम्मानित कलाकारों में शामिल किया। भारतीय सिनेमा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे लेखन से भी जुड़े रहे और अपने अनुभवों को शब्दों के माध्यम से भी अभिव्यक्त किया, जिससे ये स्पष्ट होता है कि उनका व्यक्तित्व केवल अभिनय तक सीमित नहीं था, बल्कि बौद्धिक और मानवीय दृष्टि से भी बहुत समृद्ध था।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, समय है सूचना परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का, और आज आपके साथ है आपके रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा ये अंक दो ऐसे विषयों को समर्पित है जो केवल चर्चा के विषय नहीं बल्कि जीवन की सच्चाइयां भी हैं। पहला, यातायात नियमों के पालन से जीवन रक्षा, और दूसरा, संघर्ष और आपात स्थिति में मानवीय पक्ष। सड़क पर चलना केवल एक दैनिक क्रिया नहीं, एक सामूहिक जिम्मेदारी है, और संकट की घड़ी में इंसान बने रहना यही हमारी असली पहचान है। जिंदगी एक सफर भी है, एक परीक्षा भी, और इस सफर को सुरक्षित, संवेदनशील और सार्थक बनाना हम सबके हाथ में है। इन्हीं भावों के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं इस गीत के साथ।

जी हाँ दोस्तों, जीवन एक यात्रा ही तो है और हम सब किसी न किसी रूप में उसके मुसाफिर। हर दिन हम घर से निकलते हैं, कभी काम के लिए, कभी पढ़ाई के लिए, कभी अपनों से मिलने के लिए, तो कभी अपने सपनों की राह पर आगे बढ़ने के लिए। लेकिन एक सच्चाई हमेशा याद रखनी चाहिए, सफ़र तभी अच्छा है जब वह सुरक्षित है। कई बार लोग सोचते हैं बस थोड़ी दूर ही तो जाना है, इतना ट्रैफिक भी नहीं, अभी हेलमेट की क्या ज़रूरत है, फ़ोन भी देख लेंगे, कुछ नहीं होगा। मगर सड़क पर लापरवाही कभी छोटी नहीं होती, एक पल की असावधानी पूरे जीवन का दुख बन सकती है। इसलिए जब भी सड़क पर निकले, याद रखिए कि हम सिर्फ मुसाफिर नहीं, जिम्मेदार मुसाफिर हैं, और दूसरों की सुरक्षा भी कहीं ना कहीं हमारे व्यवहार से ही जुड़ी हुई है। धीरे चलना कमजोरी नहीं, समझदारी है। नियम मानना मजबूरी नहीं, जिम्मेदारी है। और सुरक्षित घर लौटना केवल किस्मत नहीं, सजगता का परिणाम है। इसी भावना के साथ आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों, मुश्किल घड़ी में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? हौसला। और उससे भी बड़ी ताकत, मिलकर खड़े हो जाना। जब सड़क पर कोई घायल पड़ा हो तो वहाँ तमाशबीनों की भीड़ नहीं, मददगार हाथों की ज़रूरत होती है। जब कोई आपदा आती है तो लोगों को सलाह से ज़्यादा सहारे की ज़रूरत होती है। जब कोई संकट में होता है तो उसे भाषण नहीं, इंसानियत चाहिए होती है। ऐसी ही घड़ियों में मानवता की असली परीक्षा होती है। तो क्या हम रुकते हैं? क्या हम किसी घायल के लिए एम्बुलेंस बुलाते हैं? क्या हम मदद की सूचना देते हैं? और क्या हम किसी डरे हुए इंसान को भरोसा दिलाते हैं? क्योंकि दोस्तों, यही तो सच्चा मानवीय पक्ष है, सच्ची सभ्यता है।

दोस्तों, जीवन में संघर्ष अनेक रूपों में आता है। कभी बीमारी बनकर, कभी दुर्घटना बनकर, कभी प्राकृतिक आपदा बनकर, तो कभी ऐसी परिस्थिति बनकर जहां मनुष्य को मनुष्य का साथ निभान सबसे ज्यादा चाहिए होता है। ऐसे समय में जीत का अर्थ केवल बच निकलना नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को बचाते हुए आगे बढ़ना होता है। किसी को पानी पिला देना, रक्तदान करना, घायल को अस्पताल पहुंचाने में मदद करना, राहत सामग्री पहुंचा देना, या बस किसी को भरोसा दिलाना कि वो अकेले नहीं है, ये छोटे नहीं बहुत बड़े काम हैं। यही वो क्षण है जहां इंसानियत शब्द नहीं कर्म बनती है। दोस्तों, जीवन तो क्षण भंगुर है, इसलिए जब तक है प्रेम, संवेदना और जिम्मेदारी के साथ जिए। इसी संदेश के साथ मैं आपकी रेडियो दोस्त गरिमा शाक्य लेती हूँ आपसे विदा, और आपको छोड़े जाती हूँ इस गीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे समसामयिक विषय पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। दोपहर के 12 बजने को है। प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को मेरा यानी विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार के साथ, जिसे हमें भेजा है गुजरात गांधीग्राम राजकोट से प्रवीण सोनी और कलावती सोनी जी ने।
2: लिखते हैं, खुशी दुनिया में उपलब्ध सब दवाओं में सर्वोत्तम दवा है, इसलिए खुश रहो और खुशियां बांटो।
1: बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुमबाई नागनपुरे।
2: अयोध्या धाम से राजा बाबू शर्मा, राम बाबू शर्मा, राज बाबू शर्मा, सचिन शर्मा, शैलेंद्र शर्मा, सौरभ शर्मा, सोनल शर्मा, साक्षी शर्मा, सिमरन शर्मा और सोनाली शर्मा।
1: और पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू,
2: सिटी गोनियाना मंडी से गुरप्रीत सिंह जस्सल
1: और गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी।
2: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
1: अरे वह फिर से आप सबका स्वागत है ये भी जानिए श्रृंखला में। श्रोताओं, इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं समुद्र की,
2: इसके रहस्यों की और मानवता को दिए जाने वाले इसके अमूल्य योगदान की। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भारतीय शास्त्रों में इसे किन किन नामों से पुकारा गया है। इन नामों से भी समुद्र की विशेषताओं का पता चलता है। अजीत जी, अब आपकी बारी है।
1: जी विमलेश जी, तो साथियों, समुद्र का सबसे प्रचलित नाम है सागर
2: जी,
1: लेकिन इसे जलधि भी कहा जाता है, यानी जल को धारण करने वाला। अब आपकी बारी।
2: दूसरा प्रचलित नाम है रत्नाकर, यानी बहुमूल्य रत्नों का भंडार। विष्णु पुराण और भागवत पुराण में समुद्र मंथन का उल्लेख है। इस प्रक्रिया में बहुत से अलग अलग प्रवृत्ति वाले रत्न निकले थे।
1: श्रोताओं, समुद्र को अर्णव भी कहा गया है, यानी विशाल और गर्जन करने वाला। इसे सिंधु भी कहते हैं, यानी जल का विशाल बहता भंडार। तो श्रोताओं, ये हैं समुद्र के विभिन्न नाम जो हम अपने शास्त्रों में पाते हैं। आज हम विशेषकर बात करेंगे समुद्र की गहराई और इसके एक खास रहस्य के बारे में।
2: वैसे तो समुद्र अपनी गहराई के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हम जानेंगे कि दुनिया का सबसे गहरा समुद्र स्थल कहाँ है। जी जी जी, चर्चा को आगे बढ़ाएं।
1: जी श्रोताओं, मरियाना ट्रेंच दुनिया का सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र है, जो फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है, और सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर डीप।
2: यहाँ समुद्र 10,984 मीटर से भी अधिक गहरा है, यानी करीब 11 किलोमीटर गहरा।

0: विमलेश जी, इस तथ्य को और रोचक बनाते हैं एक प्रश्न से। क्या चैलेंजर डीप की गहराई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से अधिक है?
1: जी बिल्कुल, इस बात को एक तुलना से समझते हैं। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊपर है, जबकि समुद्र तल से नीचे चैलेंजर डीप की गहराई 10,984 मीटर है, यानी अंतर करीब 2 किलोमीटर का है।
0: 2 किलोमीटर का अंतर, अद्भुत सच में। यानी यदि माउंट एवरेस्ट को मरियाना ट्रेंच के चैलेंजर डीप में डाल दिया जाए तो यह पूरी तरह से डूब जाएगा
1: जी
0: और ऊपर 2 किलोमीटर गहराई का पानी बचा रहेगा।
1: जी
0: अच्छा, चलिए वार्ता को कुछ और रोचक बनाते हैं। अभी हमने बात की माउंट एवरेस्ट की, सुना है कि समुद्र के अंदर भी पर्वत होते हैं।
1: जी बिल्कुल सही सुना है आपने। समुद्र के अंदर हमारी भूमि से अधिक पर्वत श्रृंखलाएं हैं, वहाँ बड़े बड़े ज्वालामुखी भी होते हैं। श्रोताओं को एक और रोचक बात बताऊं, समुद्र में भी एक ऐसा पर्वत है जिसकी ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से भी अधिक मानी जाती है, नाम है माउना केया।
0: जी श्रोताओ, है ना रोचक बात। यदि पूरी पृथ्वी की बात करें तो इसमें समुद्र भी शामिल है।
1: जी
0: तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है, ये यानी माउना केया।
1: जी
0: और ये पर्वत प्रशांत महासागर में स्थित है।
1: जी
0: समुद्र के ऊपर दिखाई देने वाली ऊंचाई लगभग 4,000 मीटर है, लेकिन बाकी हिस्सा समुद्र के अंदर है। माउना केया की ऊंचाई आधार से लगभग 10,200 मीटर है, यानी जबकि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है।
1: ये एक ज्वालामुखी द्वारा निर्मित पर्वत है जो लाखों वर्षों में लावा जमा होते रहने से धीरे धीरे बना और परत दर परत जमा होकर इतना विशाल हो गया। आज ये एक आकर्षक पर्यटन स्थल और अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जाना जाता है।
0: तो विमलेश जी, अब समाप्त करने से पहले श्रोताओं को समुद्र के बारे में कुछ और रोचक जानकारी दे दें।
1: जी
0: तो सबसे पहली जानकारी है, पूर्ण विकसित ब्लू व्हेल समुद्र का सबसे बड़ा जीव है। और मालूम है, इसका दिल एक सामान्य कार के आकार से भी बड़ा होता है।
1: जी समुद्र की गहराई के 3 भाग हैं, सतही क्षेत्र, ये वो भाग हैं जहां अधिकतर जीव पाए जाते हैं, यहां सूर्य का प्रकाश पहुंच पाता है।
0: और दूसरा क्षेत्र है मध्य क्षेत्र, यहाँ समुद्र का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इसलिए कई ऐसे जीव यहाँ पाए जाते हैं जो खुद चमकते हैं।
1: और तीसरा क्षेत्र है बहुत ही गहरा क्षेत्र, यहाँ पूरी तरह से अंधेरा रहता है और जल का दबाव लाखों टन से भी अधिक होता है। सामान्य स्थिति में हम वहाँ कुचल जाएंगे, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में बहुत से जीव पाए जाते हैं। ये प्रकृति का चमत्कार नहीं तो और क्या है।
0: सच में ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है। तो श्रोताओं, अब करते हैं समाप्त आज की चर्चा और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए।
0: 8800440559 यानी हमारे IBRS नंबर पर और audio@cieet.nic.in पर आप अपना संदेश भेज सकते हैं।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: और अब सुनते हैं आज का विशेष शैक्षिक कार्यक्रम, शीर्षक है रविंद्रनाथ टैगोर।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन, उनकी साहित्यिक रचनाओं और कविताओं के बारे में जानकारी दी गई है। उनके जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को भी शामिल किया गया है और बताया गया है कि उनका व्यक्तित्व कितना बहुआयामी और विलक्षण था। रविंद्र संगीत के बारे में भी इसमें चर्चा की गई है।
0: विश्व शिक्षक रविंद्रनाथ टैगोर।

0: रविंद्रनाथ ठाकुर के इस गीत में है निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा, चाहे कोई साथ दे या ना दे। आज भी रविंद्र संगीत में वही ऊर्जा, वही शक्ति और वही प्रेरणा है। रविंद्र संगीत हमारे दिलो दिमाग पर छा गया है, हमारी संस्कृति में रच बस गया है। बंगाल की माटी के कवि रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि काव्य कृति को 10 दिसंबर सन 1913 में एशिया में प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संसार का सर्वोत्कृष्ट और दुर्लभ पुरस्कार है।
1: इस अवसर पर स्वीडिश अकादमी की नोबेल कमेटी के चेयरमैन हेरल्ड हर्जन ने कहा था

भारतीय कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने श्रेष्ठ आध्यात्मिक कविताओं की रचना की है। गीतांजलि ने बहुत से आलोचकों का ध्यान अपनी तरफ मोड़ा है और अब ये अंग्रेजी साहित्य में ही नहीं, अमेरिका और समस्त पश्चिमी दुनिया के साहित्य में भी उपलब्ध होगी। इसकी विशेषताएं हैं कवि के विचारों में संपूर्णता, कविताओं में लयात्मक संतुलन, शब्दों का चयन, और किसी अन्य भाषा में इसका अनुवाद करना मुश्किल होगा।

0: गीतांजलि के गीतों में भारत के प्रति अगाध प्रेम और श्रद्धा है।
1: हेमोर चित्त पुण्य तीर्थ जागरे धीरे এই ভারতের মহামানবের সাগর তীরে।
2: इस गीत में कवि ऐसे भारत की कामना करता है जहां हमारा मन निर्भय और मस्तक ऊंचा हो।
0: वे मनुष्य के कर्म को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। भजन, कीर्तन, कंठी माला सब बेकार। किसे पूछते हो अंधियारे मंदिर में तुम बंद किए सब द्वार। कृषक जहां खेती करते हैं ईश वहां है।
2: गीतांजलि में प्रतीक्षा का भाव अनेक रचनाओं में है, चाहे वो ईश्वर की हो या ऋतुओं की। इसमें कुछ गीत भावात्मक हैं, कुछ सोनेट शैली में लिखे गए हैं। सोनेट 14 पंक्तियों के प्रगीतों को कहते हैं जो मुक्त छंद में लिखे होते हैं। कवि रविंद्रनाथ ने इन्हीं दिनों हमारे देश का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा और स्वयं उसे गाया भी।
3: जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ युष्कल बंगा विंध हिमाचल जमुना गंगा उत्थल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मागे गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे।
2: बंगाल ही नहीं, उनके गीत देश विदेश, गांव शहर हर जगह गाए और सराहे जाते हैं। भारत के सुप्रसिद्ध जाने माने साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर एक सशक्त गीतकार और संगीतकार ही नहीं, साहित्य की अनेक विधाओं में उन्हें महारत हासिल है। वे एक सुविख्यात कवि, नाटककार, उपन्यासकार, कथाकार, गद्यकार, निबंधकार, व्याख्याता, कुशल गायक, चित्रकार और नाट्य अभिनेता होने के साथ साथ विश्व के एक महान शिक्षक हैं।
0: देश ने मनाई रविंद्रनाथ ठाकुर की 150वीं जयंती। इस अवसर पर तेलुगु के प्रसिद्ध कवि समालोचक एन गोपी ने ठाकुर बाड़ी कविता लिखी। प्रस्तुत अंश उसी कविता का है। जोड़ा सांकों की एक पतली गली में है ठाकुर बाड़ी। उस गली ने खोल दिए हैं विशाल विश्व के प्रवेश द्वार। द्वार छोटे भले ही क्यों ना हो पर विहरण है दिगंतों तक। सात मई सन 1861 को इसी ठाकुरबाड़ी में पिता देवेंद्रनाथ की 14वीं संतान रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म

0: हुआ। ये जगह उत्तरी कलकत्ता में है, कलकत्ता जो अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज में इसे बनाया गया था। बचपन में रविंद्रनाथ ने बहुत से स्कूल बदले। स्कूल के बंधन उन्हें कारागार जैसे लगते। घर पर ही उन्होंने बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, संगीत, चित्रकला आदि विषयों का अध्ययन किया। मगर घर में नौकरों का शासन भी था, जिसे रवि ने सेवकशाही तंत्र का नाम दिया। ये नौकर बच्चों को रामायण महाभारत की कथाएं सुनाते, उन्हें घेरे रहते और दंड भी देते।
1: रविंद्रनाथ ने लगभग 7-8 वर्ष की उम्र से लिखना शुरू किया। उन्हें नए शब्दों को गढ़ने में बहुत आनंद मिलने लगा और फिर नीले कागजों की बही पर गढ़ी जाने लगी कविता। उनकी प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल तथा कवि काहिनी विशेष महत्वपूर्ण है।

0: और फिर वो दिन भी आया जब पिता 12 वर्ष के रविंद्रनाथ को अपने साथ हिमालय यात्रा पर ले गए। प्रकृति के प्रति लगाव को देखते हुए पिता ने उन्हें वहां घूमने और अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी दी। यहीं रविंद्र ने प्रकृति को जाना, पहचाना और उसे महसूस किया।
1: कविंद्र रविंद्र को नदी का कवि भी कहा जाता है।
0: यही प्रकृति आगे चलकर उनके काव्य सृजन का सशक्त आधार बनी। 12 वर्ष की उम्र में ही रविंद्रनाथ ठाकुर की पहली कविता अभिलाष सन 1874 में तत्व बोधिनी पत्रिका के नवंबर दिसंबर अंक में छपी। फिर दूसरी रचना भारत उस समय की अमृत बाजार पत्रिका में प्रकाशित हुई। उनका मन संगीत में रचा बसा था। उन्होंने भक्ति, प्रकृति, देश प्रेम, ऋतुओं, उत्सवों सभी के गीत गाए। उन्होंने बंगला में गीतों की स्वरलिपि साधने में कठिन साधना की थी। सांध्य संगीत और प्रभात संगीत संग्रह उनके गीतों के दो महत्वपूर्ण काव्य संग्रह हैं। प्रभात संगीत संग्रह की एक चर्चित कविता है निर्झरेर स्वप्न भंग, जिसमें सूर्य किरण के स्वागत में झरना फूट पड़ता है, जो जिंदगी के उल्लास और आनंद का प्रतीक है।
1: बच्चों के लिए रविंद्रनाथ की पहली कविता है बृष्टि पड़े टापुर टुपुर। इसकी धुन लोकगीत जैसी है।

0: शिशु भोलानाथ आदि काव्य संग्रहों में रविंद्रनाथ द्वारा रचित बाल कविताएं हैं। बच्चों के लिए लिखी एक कविता दोपहर बड़ी मार्मिक है। इसका अनुवाद सिने जगत के प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने किया। ओ मां, अब मेरी छुट्टी करो ना। सुबह से पढ़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कमरे में जाकर मैं पढ़ना खेलूंगा। अभी दोपहर है बस, कह दिया तुमने। उन्होंने बच्चों के लिए नाटक और कथाएं भी लिखी।
1: सन 1877 के आसपास इन्होंने लघु कथा कहानी की एक नई विधा को जन्म दिया। इस समय की कहानियां गल्पगुच्छ के नाम से प्रसिद्ध थीं। उनकी पहली कहानी है भिखारिणी, जो रविंद्रनाथ ठाकुर की

साधना पत्रिका में प्रकाशित हुई। इनमें उन दिनों के अनुभवों पर आधारित कहानियां हैं, जब रविंद्रनाथ ठाकुर जमींदारी की देखभाल के लिए शजातपुर सियालदेह गांव का दौरा कर रहे थे।

0: यहीं वे नदी के किनारे नौकाओं पर रहते और लोगों की समस्याएं सुनते। इनसे मिलने के लिए किसानों, मल्लाहों, केवटों, चरवाहों, कुम्हारों, यात्रियों, गायकों, बालकों, शिक्षकों, सभी का मेला लगा रहता। वे अपने स्नेहयुक्त हृदय और उदारता के कारण बाबू मोशाय बन गए और इन्हीं में रविंद्रनाथ को मिलते गए अपनी कथाओं के पात्र भी।
1: जुलाई 1905, अंग्रेजी शासन ने भाषा और संस्कृति की दृष्टि से हिंदुओं और मुस्लिमों में भेद उत्पन्न करने के लिए बंग विभाजन किया। बंगीय जनता में तिलमिलाहट पनपी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने इस अवसर पर अपने मातृभूमि से प्रेम और सांप्रदायिक एकता बनाए रखने के लिए बंगाल के लोगों का अपने गीतों द्वारा आह्वान किया।
2: আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি, চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি।

0: और फिर दिल दहलाने वाली नरसंहार की घटना घटी। अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग वाली त्रासद घटना के विरोध में उन्होंने नाइटहुड उपाधि लौटाई। इस संबंध में 30 मई 1919 को उन्होंने वॉइसरॉय को पत्र लिखा।
1: अपने देश के लिए मैं इतना तो अवश्य कर सकता हूँ, चाहे उसका नतीजा कुछ भी हो, कि मैं अपने करोड़ों देशवासियों के विरोध को वाणी दे सकूं। समय आ गया है, अब ये उपाधियों के तमगे हमारे अपमान के संदर्भ में लज्जास्पद लगते हैं।
0: रविंद्रनाथ ने नाट्य रचना के गुण विरासत में पाए। उन्होंने अपने नाटकों में बांग्ला यात्रा के लोक तत्वों और संस्कृत नाट्य परंपरा के तत्वों का सामंजस्य किया। इससे उस समय के रंगमंच को एक नया स्वरूप मिला। नाट्य से रविंद्रनाथ ने गीति नाट्यों की ओर रुख किया। उन्होंने संगीत को काव्य और नाटक का महत्वपूर्ण साधन माना है। रविंद्रनाथ ठाकुर एक शिक्षक हैं। वे जीवन और शिक्षा में सामंजस्य स्थापित करना चाहते थे। वे शिक्षा नीति अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़े रखना चाहते थे। साहित्य, संगीत एवं अन्य कलाओं को शिक्षा में स्थान दिलाने का श्रेय रविंद्रनाथ ठाकुर को जाता है। उनका मानना था कि बच्चा अपने परिवेश और पर्यावरण से जुड़कर बेहतर सीख सकता है और समझ सकता है।
2: आमादेर शांति निकेतन, यानी हमारा शांति निकेतन।
3: আমাদের শান্তি নিকেতন, আমাদের শান্তি।
2: সন 1901 में শান্তি নিকেতন আরম্ভ।

0: हुआ, जिसमें रविंद्रनाथ ने शिक्षा की औपचारिक रटंत विद्या से अलग बच्चों की सृजन शक्ति के विकास के लिए भारत की प्राचीन आश्रम व्यवस्था को अपनाया। एक कवि की पाठशाला में उन्होंने लिखा,
1: बच्चे का अवचेतन संवेदनशील होता है और पेड़ों की तरह वह अपनी खुराक वातावरण से ग्रहण करता है। उसके लिए यह नियमों, रीतियों, पाठ्य पुस्तकों और पाठों से अधिक महत्वपूर्ण है।
0: शिक्षार हेरफेर निबंध में सशक्त निबंधकार रविंद्रनाथ ने मातृभाषा को शिक्षा का माध्यम बनाने पर जोर दिया। सामान्य स्कूलों की तुलना उन्होंने कारखानों से की है। भारतीय औपनिवेशिक शिक्षा व्यवस्था पर रविंद्रनाथ ने एक मार्मिक नीति कथा लिखी, तोते का प्रशिक्षण, जो पाठ्य पुस्तकों को बच्चों में जबरन ठूसने पर एक करारा व्यंग्य है। इस कहानी में तोते को ऐसी भयानक कष्टपूर्ण शिक्षा दी जाती है कि तोता मर जाता है। शांति निकेतन में बच्चों को पेड़ों के नीचे शिक्षा दी जाती थी और आज भी यही पद्धति जारी है। यहां बच्चों के बहुमुखी विकास के लिए अलग अलग प्रयोगशालाएं हैं, जहां सीखने की आजादी है। अब ये विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। रविंद्रनाथ ने कहा था,
1: विश्व से एकात्म होने का अर्थ अपनी पहचान खो देना नहीं है, बल्कि सीखने सिखाने के लिए एक सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना है।
2: उनका मानना था इस विश्व भारती में सभी देशों के शिक्षा संस्कृति के प्रतिनिधि शामिल हों, जिससे सारा संसार एक घोंसला बन जाए। और ऐसा हुआ भी। उनके प्रयासों से ही देश विदेश के विद्वानों को इस विश्व भारती में आमंत्रित किया जा सका।
0: वे स्त्रियों की शिक्षा के हिमायती थे। उस जमाने में भी उनकी कहानी, उपन्यासों के स्त्री पात्र, कविता लेखन और स्वतंत्र चिंतन के प्रतिरूप हैं। स्त्री शिक्षा निबंध में उन्होंने लिखा था,
1: विद्या यदि मनुष्यत्व प्राप्त करने का उपाय है और विद्या प्राप्त करना यदि मानव मात्र का जन्मजात अधिकार है, तो उसे इस अधिकार से वंचित न किया जाए। जो कुछ भी जानने लायक है वही विद्या है। पुरुष को भी जानना होगा, स्त्री को भी जानना होगा।
2: रविंद्रनाथ ठाकुर ने अनेक विधाओं में लिखा, पर स्वयं को मूलतः कवि ही माना। आमी कवि, मैं एक कवि हूँ, उन्होंने अपने 70वें जन्मदिन पर लिखा।
1: मैंने एक तपोवन का संधान करना चाहा था, शहर के भयावह घरों में नहीं, आकाश के खुले वितान के नीचे सुबह से शाम तक मैं इन लड़के लड़कियों के खेल का साथी बनना चाहता था। यही मेरा सच्चा कार्य रहा है। मेरी जगह वही है, धरती की गोद, इन पेड़ों, इन जंगलों में, इस धूल, इस तृण दल में मैंने अपना जीवन उंडेला है। जो धरती की आत्मा के निकट हैं, जो उससे ही बने, उसी में ढले हैं, जो अपना अंतिम विराम उसी में पाएंगे, मैं उन सब का मित्र हूं, मैं कवि हूं।
0: स्पेनिश, जर्मन, अंग्रेजी और विभिन्न विदेशी भाषाओं में रविंद्रनाथ की कृतियों का अनुवाद किया गया है। उनकी कविताओं की अंग्रेजी में अनुदित कृतियां हैं, गार्डनर, फ्रूट गैदरिंग, द फ्यूजिटिव क्रेसेंट मून। न केवल भारत में अपितु जर्मनी, अमेरिका, इटली आदि अनेक देशों के पाठ्यक्रम में रविंद्र साहित्य शामिल किया गया है।

सुनकर पुकार तुम्हारी, आए नहीं कोई पास तो क्या, चल दो अकेले। जो कायर हैं छुपते हैं ओट लेकर, तुम चलो अकेले। अरे अभागे खोलो मन, तुम बोलो पगले एक अकेले। रेगिस्तानों में कोई साथ छोड़े तो भी क्या है, कांटों के पांव में चुभने से होता क्या है, रक्त सने पथ पर बढ़ लेना अकेले। तूफानी रातों में दीपक लेकर कोई खड़ा नहीं तो भी तुम चलो अकेले। तड़त ज्योति पीड़ा की बलने दो एकाकी मन में, चलते चलो अकेले, चलते चलो अकेले।

0: तो श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यही समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी के आगरा केंद्र से।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम नए तराने का।

कार्यक्रम का पहला गीत था फिल्म करम से अलीशा चिनॉय की आवाज में, इरशाद कामिल के बोल थे विशाल शेखर की धुन। अगला गीत है फिल्म टैक्सी नंबर 9211 से के के और सुनीति चौहान की आवाजों में, विशाल डडलानी की शब्द रचना है, विशाल शेखर की संगीत रचना।

के को आपने सुना फिल्म द ट्रेन में, मिथुन की धुन पर बोल थे सईद कादरी के। अगला गीत है श्रेया घोषाल और सोनू निगम के युगल स्वरों में। स्वानंद किरकिरे की रचना को संगीत से संवारा है शांतनु मोइत्रा ने। फिल्म का नाम है परिणीता।

मोहित चौहान की आवाज़ में ये गीत था फिल्म कमीने से। विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में गीत था गुलजार का। कार्यक्रम की ये आखिरी पेशकश है फिल्म शिवाय से, सुनिधि चौहान और अरिजीत सिंह के युगल स्वरों में। सईद कादरी के शब्दों को संगीत में ढाला है मिथुन ने।

इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने अब संपन्न होता है। श्रोताओ, दोपहर के एक बजने को है। अब आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई सन 1951 में पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल में भाजपा विधायक दल की बैठक आज होगी। गृहमंत्री अमित शाह पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। श्री शाह कोलकाता पहुंच गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पश्चिम बंगाल में पहली बीजेपी सरकार इस शनिवार 25 बैसाख को ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई वरिष्ठ नेता समारोह में शामिल हो सकते हैं। इससे पहले शुक्रवार को न्यू टाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में नवनिर्वाचित बीजेपी विधायकों का बैठक होगा। आकाशवाणी समाचार के लिए संदीप दासगुप्ता, कोलकाता।
0: असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO और भारतीय वायुसेना ने कल ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल उड़ान परीक्षण किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तारा हथियार की पहली परीक्षण उड़ान के लिए DRDO, वायुसेना, DCPP और उद्योग

जगत को बधाई दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय संघ यह सुनिश्चित करने के लिए एकजुट हैं कि ईरान के पास कभी भी परमाणु हथियार न हो। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ सार्थक बातचीत की और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने भी सोशल मीडिया पर बातचीत की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया से जुड़े घटनाक्रमों और क्षेत्रीय साझेदारों के साथ समन्वय पर बातचीत की। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने संयुक्त अरब अमीरात के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग राज्य मंत्री और भारत के लिए विशेष दूत रिम अल हाशमी के साथ अबूधाबी में बैठक की। दोनों नेताओं ने भारत संयुक्त अरब अमीरात व्यापक कार्यनीतिक साझेदारी और परस्पर हित के वैश्विक मुद्दों की समीक्षा की। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा, रक्षा, वित्त, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संस्कृति और जनसंपर्क क्षेत्र में हुई प्रगति पर विचार विमर्श किया। श्री मिश्री ने भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच अबूधाबी में हुई त्रिपक्षीय बैठक में भी हिस्सा लिया। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि तीनों देशों ने परस्पर साझेदारी मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। वियतनाम के राष्ट्रपति और कम्युनिस्ट पार्टी महासचिव तो लाम कल रात दो दिन की राजकीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे। उनके साथ 209 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ये यात्रा दोनों देशों के राजनयिक संबंधों की 55वीं वर्षगांठ पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमारा दिसा नायके के निमंत्रण पर हो रही है। राष्ट्रपति तो लाम श्रीलंका के नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और कोलंबो में आयोजित श्रीलंका वियतनाम व्यापार, निवेश और पर्यटन फोरम में हिस्सा लेंगे। दोनों पक्षों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की भी उम्मीद है। बांग्लादेश में खसरे की स्थिति और गंभीर हो गई है। खसरे के संक्रमण से कल 12 और बच्चों की मौत हो गई। महानिदेशालय ने बताया है कि परीक्षण किट की कमी से यह संकट और गहरा गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: अब आप शाइस्ता बानो से इलाकाई खबरें सुनिए। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल सहारनपुर में 2,131 करोड़ रुपए की लागत से 325 अवामी फलाही मंसूबों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। इस मौके पर प्रोग्राम से खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत की पॉलिसियों ने मगरबी उत्तर प्रदेश के चेहरे और तकदीर दोनों को बदल दिया है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कीमों का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में विकास के समग्र विकास के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाया है और बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बांटा है। वंचित को वरीयता मिली है, पिछड़ों को प्राथमिकता मिली है, हर वंचित के घर तक उसकी योजना पहुंचाने का कार्य किया है और उसका परिणाम आज हमारे सामने है।
0: वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ से मर्दमशुमारी 2027 का आगाज किया। इसके साथ ही रियासत भर में खुद मर्दमशुमारी भी शुरू हो गई। शाम 6 बजे तक कल रियासत में 1 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी मर्दमशुमारी मुकम्मल की। मर्दमशुमारी के आगाज के मौके पर वजीर आला ने कहा कि ये महज आबादी की गिनती नहीं है बल्कि हमजहत जामे और मनसूबाबंद तरक्की की मजबूत बुनियाद है।
2: प्रदेश में 21 मई तक होने वाली स्वगणना के माध्यम से नागरिक स्वयं डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे। इसके उपरांत फील्ड कार्य के अंतर्गत जनगणना कार्मिक घर घर जाकर सूचीकरण का कार्य करेंगे। जनगणना के पहले चरण में 22 मई से मकानों की गणना शुरू होगी जो 22 जून तक चलेगी। दूसरे चरण में प्रत्येक व्यक्ति की गणना की जाएगी। इस बार जनगणना में जाति गणना को भी सम्मिलित किया गया है। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: गवर्नर आनंदीबेन पटेल ने कल जनभवन में डिजिटल तौर पर अपनी मालूमात दर्ज करके खुद गिनती के अमल में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने रियासत के शहरियों से अपील की कि वो मर्दमशुमारी के अहलकारों की तरफ से दरखास्त करदा मुकम्मल दुरुस्त और हकायक पर मबनी मालूमात फराहम करें।
3: जनगणना लोकतंत्र की आधारशिला है। इसके माध्यम से प्राप्त आंकड़े देश और प्रदेश की नीतियाँ, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के निर्माण का आधार बनते हैं। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संस्थानों के वितरण और शहरी योजना जैसे अनेक क्षेत्रों में जनगणना की महत्वपूर्ण भूमिका है। आपकी दी गई सही जानकारी न केवल प्रदेश

0: बल्कि पूरे देश के विकास की दिशा तय करने में मदद करेगी।
1: वजारत रेलवे ने ऐलान किया है कि ट्रेनों को एडवांस पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम में तब्दील करने का अमल अगस्त में शुरू हो जाएगा। कल नई दिल्ली में एक जायजा मीटिंग में रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने अफसरान को हिदायत दी कि वो इस बात को यकीनी बनाए कि 40 साल पुराने रिजर्वेशन सिस्टम से नए निजाम में तब्दीली के दौरान मुसाफिरों को किसी किस्म की तकलीफ का सामना न करना पड़े। रिजर्वेशन का निजाम 1986 में शुरू किया गया था और गुज़िश्ता 40 वर्षों में इसमें कई तब्दीलियां आई हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2024 के आदाद और शुमार से पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में अमनो अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में जरायम की शरह में उत्तर प्रदेश मुल्क में 18वें नंबर पर था। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस राजीव कृष्णा ने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में जदीद पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं और ज्यादा चौकस एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने में खवातीन के लिए वक्फ करदा हेल्प डेस्क, कमजोर तबकात को तेज रफ्तार इंसाफ फराहम करने वाली फास्ट ट्रैक अदालतें और मुनज्जम जराइम के खिलाफ सख्त कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून की हुक्मरानी कायम की है। हुकूमत ने रियासत भर में नस्ब तमाम स्मार्ट मीटरों के पोस्ट पेड मोड में चलाने के अहकाम जारी किए। वजीर तवानाई ए के शर्मा ने कहा कि तमाम स्मार्ट मीटर्स को फौरी असर से पोस्ट पेड सिस्टम में तब्दील किया जा रहा है। अब सार्फिन के बिजली इस्तेमाल करने के बाद ही बिल वसूल किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सार्फिन को बिल हर माह की 10 तारीख तक SMS और व्हाट्सएप के जरिए भेजे जाएंगे। वजीर तवानाई ने कहा कि स्मार्ट मीटर और बिजली के बिलों से मुतालिक शिकायात के तस्फीये के लिए 15 मई से 30 जून तक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और सब डिविजनल ऑफिसर के दफ्तर में खसूसी कैंप और इमदादी मराकज कायम किए जाएंगे। रियासत में सिविल पुलिस के सब इंस्पेक्टर उसके मसावी ओहदों पर बराह रास्त भर्ती के लिए 2025 के तहरीरी इम्तिहान के नतायज जारी कर दिए गए हैं। इस भर्ती के अमल के लिए तकरीबन 15,75,760 उम्मीदवारों ने दरखास्त दी, जो कि 4,543 असामियों के लिए मुनक्किद की गई। इनमें से 12,333 उम्मीदवार अगले मरहले के लिए कामयाब करार पाए हैं। ये इम्तिहान 14 और 15 मार्च 2026 को मुनक्किद हुआ था। रिक्रूटमेंट बोर्ड के मुताबिक दस्तावेजात की तस्दीक और फिजिकल टेस्टिंग मई के तीसरे हफ्ते में की जाएगी। की वेबसाइट पर मुकम्मल तफसीलात दस्तयाब कराई गई हैं। आज 8 मई को रेडक्रॉस का आलमी दिन है। आलमी रेडक्रॉस का दिन हर साल 8 मई को मनाया जाता है। इस दिन का मकसद इंसानियत खिदमत और खैरात के जज्बे को फरोग देना है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरें खत्म हुई। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 1:15 हो चुके हैं। प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

नमस्कार बहनों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का लोकप्रिय कार्यक्रम घर संसार। कैसी हैं आप सभी? उम्मीद करती हूं कि आप अच्छी होंगी। बहनों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो मानवता, सेवा और सुरक्षा तीनों से जुड़ा हुआ है। हर वर्ष 8 मई को पूरे विश्व में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। ये दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेंट की जयंती के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने मानव सेवा और सहायता का जो संदेश दुनिया को दिया, वही आज करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा बना हुआ है। बहनों, रेड क्रॉस केवल एक संस्था नहीं बल्कि मानवता की सेवा का प्रतीक है। प्राकृतिक आपदा हो, सड़क दुर्घटना हो, महामारी हो या किसी भी प्रकार की आपात स्थिति, रेड क्रॉस हमेशा जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए आगे रहता है। घायल लोगों को प्राथमिक उपचार देना, रक्तदान शिविर लगाना, जरूरतमंद तक राहत सामग्री पहुंचाना और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये सभी कार्य रेड क्रॉस द्वारा लगातार किए जाते हैं। बहनों, रेड क्रॉस 7 सिद्धांतों पर कार्य करता है और यही सिद्धांत इसकी सबसे बड़ी पहचान है। ये सिद्धांत केवल संस्था

नियम नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी प्रेरणा है। पहला सिद्धांत है बहनों, मानवता, यानी हर इंसान की मदद करना और उसके दुख दर्द को समझना। आज के समय में जब लोग अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए हैं कि दूसरों की परेशानियों को अनदेखा कर देते हैं, तब मानवता का यह संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा सिद्धांत है निष्पक्षता। रेड क्रॉस कभी धर्म, जाति, भाषा, अमीरी या गरीबी देखकर मदद नहीं करता। जिसे जरूरत होती है उसकी सहायता की जाती है। तीसरा सिद्धांत है तटस्थता, यानी किसी विवाद, राजनीति या पक्ष विपक्ष से दूर रहकर केवल सेवा करना। चौथा सिद्धांत है स्वतंत्रता। संस्था अपने मानवीय कार्यों को स्वतंत्र रूप से करती है ताकि सेवा का उद्देश्य हमेशा सर्वोपरि रहे। पांचवा सिद्धांत है स्वैच्छिक सेवा, यानी सेवा किसी लाभ या प्रसिद्धि के लिए नहीं बल्कि समाज के प्रति जिम्मेदारी समझकर करना। और छठा सिद्धांत है एकता। हर देश में एक ही रेड क्रॉस संस्था होती है जो पूरे देश में समान रूप से कार्य करती है। और यही नहीं, हमारा सातवां सिद्धांत है सार्वभौमिकता। दुनिया

0: से थका देती है। ऐसे समय में यदि कोई चीज हमें संभाल कर आगे बढ़ने की ताकत देती है तो वे है सकारात्मक सोच। जी हाँ, इसलिए कहा जाता है सकारात्मकता को बनाइए अपना हथियार। बहनों, सकारात्मकता का अर्थ ये नहीं कि जीवन में केवल खुशियां ही होंगी और समस्याएं कभी आएंगी ही नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, बल्कि इसका मतलब है हर परिस्थिति में उम्मीद बनाए रखना, कठिन समय में धैर्य रखना और समस्याओं से घबराने के बजाय उनका समाधान खोजने की कोशिश करना। हम अक्सर देखते हैं कि एक जैसी परिस्थिति में दो लोगों की सोच बिल्कुल अलग होती है। एक व्यक्ति छोटी सी परेशानी में हार मान लेता है, जबकि दूसरा उसी मुश्किल को सीख और अनुभव में बदल देता है। फर्क केवल सोच का होता है। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर हाल में आगे बढ़ने का रास्ता खोज लेता है। बहनों, हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि मन में हमेशा नकारात्मक बातें चलती रहें, मैं नहीं कर सकती, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो धीरे धीरे आत्मविश्वास आपका कमजोर होने लगेगा। वही यदि हम खुद से कहें, मैं कोशिश करूंगी, हर समस्या का हल होता है, आज कठिन समय है लेकिन कल बेहतर होगा, तो आप देखिए मन में नई ऊर्जा और उम्मीद पैदा होगी। सकारात्मक सोच का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है। सकारात्मक व्यक्ति जल्दी टूटता नहीं है, वह असफलता से सीखता है और दोबारा प्रयास करने का साहस रखता है। दुनिया में जितने भी सफल लोग हुए हैं, उन्होंने कठिनाइयों के सामने हार मानने के बजाय अपनी सोच को मजबूत बनाया। बहनों, सकारात्मकता केवल हमारे मन को ही नहीं बल्कि हमारे स्वास्थ्य और रिश्ते को भी प्रभावित करती है। जो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं और अच्छा सोचते हैं, वह तनाव से कम प्रभावित होते हैं, उनका व्यवहार भी दूसरों के प्रति अच्छा रहता है और परिवार तथा समाज में भी सकारात्मक वातावरण बनता है। अब सवाल ये है कि हम अपने जीवन में सकारात्मकता कैसे लाएं? सबसे पहले सुबह की शुरुआत अच्छे विचारों से करें। सुबह उठते ही नकारात्मक खबरों या वे वजह की चिंताओं में खोने के बजाय कुछ प्रेरणादायक बातें पढ़ें या सुनें। दूसरा, अपनी तुलना दूसरों से करना बिल्कुल बंद कर दें कि इसके पास तो बहुत कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा क्यों सोचती हैं आप मेहनत करिए। हर व्यक्ति को जिंदगी, संघर्ष और मंजिल अलग होती है। तीसरी, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखें। परिवार के साथ बिताया गया समय, किसी की मदद करना, प्रकृति के बीच कुछ पल बिताना, ये छोटी छोटी बातें भी मन को आपके खुश करेगी। चौथा, अपने आसपास ऐसे लोगों को रखें जो आपका उत्साह बढ़ाएं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। और सबसे जरूरी, हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास बनाए रखें। बहनों, जीवन में अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटी सी रोशनी उसे दूर कर सकती है। उसी तरह सकारात्मक सोच भी जीवन की मुश्किलों को आसान बनाने की ताकत रखती है। याद रखिए, हार और जीत परिस्थितियों से नहीं सोच से तय होती है, और सकारात्मक सोच वह शक्ति है जो मुश्किल समय में भी आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो बहनों, आइए आज हम ये संकल्प लें कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, हम उम्मीद का साथ नहीं छोड़ेंगे और सकारात्मकता को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाएंगे। और इसी सकारात्मक सोच के साथ आइए सुनते हैं काव्य पाठ डॉक्टर आराधना भास्कर जी के द्वारा, जिसका शीर्षक है उम्र के उस पड़ाव पर।
1: मेरी पहली कविता का शीर्षक है उम्र के उस पड़ाव पर। उम्र के उस पड़ाव पर जब सब सिमटने लगे, शांत होने लगे, जब आसपास की हलचलें अनवरत घड़ी की सुइयों सी भागती जिंदगी जब थमकर सांस लेने लगे, तब हम फुर्सत के पलों को जीते हुए पलटेंगे गुजरे वक्त के पन्ने। मैं ढूंढूंगी पुरानी एल्बमों में कैद वो लम्हे, मैं ढूंढूंगी पुरानी एल्बमों में कैद वो लम्हे जिनमें कभी जिंदगी मुस्कुराई थी, और तुम ढूंढ निकालना वो गुमशुदा हुआ प्रेम जो जीवन की आपाधापी में पड़ा रहा हाशिए पर। प्राथमिक

की सूची में अपनी बारी का इंतजार करता। हमारे साथ ही उम्र की तहों के तले धीमे धीमे अपना वजूद खोता जाता। पर तुम ठीक ऐसे ढूंढ निकालना उसे जैसे कोई खोई हुई चीज अचानक मिल जाए और बड़ी खुशी दे जाए। तुम छेड़ना उस अधूरे गीत की लय, तुम छेड़ना उस अधूरे गीत की लय, करना वो सब आधी अधूरी रह गई बातें, घंटों बैठना साथ बस यूं ही बगैर कुछ बोले, तब जब मुझ में और तुम में ज्यादा फर्क ना रह जाए, एक दूसरे के साथ एक दूसरे के जैसे जीते जीते, क्या पता पूरी हो जाए वो कविता ठीक तभी जब सब सिमटने लगे, शांत होने लगे। मेरी दूसरी कविता का शीर्षक है मेरी भाषा मेरे शब्द। मेरी भाषा मेरे शब्द नहीं ओढ़ पाते छद्म आवरण, नहीं हो पाते सुशोभित क्लिष्ट अलंकारों से, मन के भाव जैसे होते हैं अपने शुद्धतम निर्मलतम रूप में संप्रेषित होते हैं वैसे ही मुझे नहीं भाते चमकीले वस्त्र आभूषण, कृत्रिम सौंदर्य प्रसाधन, क्योंकि छुपा देते हैं ये वास्तविकता को एक झूठे आवरण तले। मनुष्य ने ओढ़ रखे हैं वैसे ही इतने मुखौटे कि अपना असली चेहरा खुद भूल चुका है। मोहक मुस्कान के पीछे हो सकती है कितनी कुटिलता, उसे स्वयं नहीं पता है। दुनियादार होने के क्रम में खोई है कितनी मौलिकता, अब ये भी याद नहीं। अब बचा है बहुत थोड़ा सा मनुष्य ज्यादातर मानवों में। ऐसे में क्या जरूरी है, ऐसे में क्या जरूरी है कि सब शामिल हों इस दुनियादारी की अंधी दौड़ में। इसीलिए, बस इसीलिए मैंने छोड़ दिए हैं जतन दुनियादारी के मानकों पर खरे उतरने के, मौलिकता छोड़ कृत्रिमता ओढ़ लेने के। मुझ में बची रहे मानवता और मेरे शब्दों में पारदर्शिता जो संप्रेषित कर सके मानवीय भावनाएं और संवेदनाएं, कोई ढूंढ ले उनमें अपना दर्द, कोई ढूंढ ले उनमें अपना दर्द, अपनी खुशी, अपना अक्स, तो सार्थक है जीवन भी और लेखन भी। मेरी अगली कविता समर्पित है उन माओं को जो किसी ना किसी वजह से अकेली रह जाती हैं और बच्चों की जिम्मेदारी के साथ अपनी जिंदगी अकेले ही काटती हैं। कविता का शीर्षक है अकेली माँ। औरत का सर्वश्रेष्ठ रूप देखना हो तो किसी अकेली माँ को देखो, उसके परिश्रम, उसके साहस, उसके जीवट को देखो, उसकी सुबहें शामें दिन रात जो नाम होते हैं जिंदगी की अंतहीन जद्दोजहद के, उसके कामों की फहरिस्त कभी खत्म नहीं होती, दिन भर के काम की थकन लेकर लौटती है अपने आशियाने में, थके चेहरे पे जबरन ओढ़ती है मुस्कान और सुनती है बच्चों की फरमाइशें, उनकी अनगिन बातें सुनते हुए बुनती है आने वाले दिन की रूपरेखा। कितने काम अधूरे पड़े हैं अब तक, कितने काम अधूरे पड़े हैं अब तक, कल तक कितने निबट जाएंगे और कितने हफ्ते के अंत तक, भरती है ठंडी सांस, लगाती है हिसाब आने वाली जिंदगी का, जिंदगी जिसमें अब थकन है अंतहीन जिम्मेदारियों की। बिस्तर पर लेटकर बच्चों को थपकियां देती एक अनमनी सी कहानी कहती, बार बार लौटती है कड़वे अतीत की ओर, तन मन आत्मा पर लगे जख्म टीसने लगते हैं, बोझिल पलकों की कोर से अब भी छलक जाता है कोई आंसू बेआवाज, टूटे ख्वाबों की किरचें चुभती हैं आंखों में, सो जाने की भरपूर कोशिश के बावजूद नींद नहीं आती, और फिर नजर डालती है वो अपने आगोश में बेखबर और बेफिक्र सोते अपने जिगर के टुकड़ों पे, हौले से चूमती है उनके माथे को और मुस्कुरा देती है, मन ही मन दोहराती है अपना संकल्प, मन ही मन दोहराती है अपना संकल्प, मुझे बनाए रखना है खुद को मजबूत ताकि हर रात यूं ही दे सकूं इन्हें यह सुखद बेफिक्र नींद और हर रोज एक खुशनुमा दिन, मुझे मुस्कुराना है ताकि खिली रहे मुस्कुरा।

0: कान इनके होठों पर। मुझे जीना है जिंदा दिली से, ताकि सिखा सकूं इन्हें जीवन को हर हाल में स्वीकारना और हिम्मत ना हारना। और सब दुश्चिंताएं झटक कर वो मूंद लेती है अपनी पलकें, ताकि फिर तैयार कर सके खुद को अगले दिन की उसी जद्दोजहद के लिए।
1: अभी आपने काव्य पाठ सुना डॉक्टर आराधना भास्कर जी की आवाज़ में। लेते हैं यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, मैं पुनः उपस्थित होती हूँ।

अल्प विराम के बाद आपकी सखी शेफाली जैन पुनः उपस्थित है आपके बीच कार्यक्रम घर संसार में। बहनों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी कहीं ना कहीं केयर करना भूल जाते हैं, और खासकर हम सभी महिलाओं के लिए सबसे जरूरी होती है हमारी ब्यूटी। ऐसे में अगर आप अपनी केयर करना भूल गई हैं तो मैं आपको याद दिला देती हूँ। आप अपनी जो देख रहे हैं कि गर्मी का मौसम भी आ गया है, कहीं कहीं बरसात भी पड़ जाती है, तो ऐसे में कभी आपकी स्किन ऑयली या चिपचिपी भी आप देखती होंगी, तो आप सबसे पहले क्या करें, आप गुलाब जल का उपयोग कर सकती हैं। जी हाँ, गुलाब जल से पाएं आप निखरी और ताजगी भरी त्वचा। गुलाब जल को लंबे समय से स्किन केयर का अहम हिस्सा माना जाता है, और आप सुनती भी होंगी ये एक नेचुरल तरीका है जो त्वचा को आपकी फ्रेश रखेगा। इसके साथ चेहरे की सफाई भी करेगा पूरी तरीके से। बदलते मौसम में धूल मिट्टी और तेज धूप की वजह से अक्सर आप देखती होंगी कि आपकी त्वचा बेजान हो जाती है, थकी हुई नजर आने लगती है। ऐसे में गुलाब जल स्किन को ठंडक और ताजगी देने का काम कर सकता है। अगर आप दिन भर बाहर रहती हैं तो घर आने के बाद कॉटन पर थोड़ा सा गुलाब जल लेकर चेहरे को आप इससे साफ कर सकते हैं। इससे चेहरे पर जमा धूल और अतिरिक्त तेल हटाने में मदद मिल सकती है और आपकी स्किन फ्रेश महसूस करेगी। खासकर ऑयली स्किन वालों के लिए गुलाब जल काफ़ी फायदेमंद माना जाता है, क्योंकि ये चेहरे के अतिरिक्त ऑयल को कंट्रोल करने में सहायक होता है। वहीं ड्राई स्किन पर ये हल्की नमी बनाए रखने में मदद करता है। गुलाब जल का इस्तेमाल फेस पैक में मिलाकर भी किया जा सकता है, जैसे कि बेसन, चंदन या दही में गुलाब जल मिलाकर लगाने से त्वचा आपकी साफ और चमकदार बन जाएगी। कई लोग इसे नेचुरल टोनर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, जिससे स्किन में ताजगी बनी रहती है। आंखों में थकान या जलन महसूस हो तो ठंडे गुलाब जल में कॉटन भिगोकर कुछ मिनटों तक आंखों पर आप रखें, आपको तुरंत आराम मिलेगा। यही वजह है कि गुलाब जल को सिर्फ ब्यूटी ही नहीं बल्कि स्किन रिलैक्सेशन के भी यूज़ किया जाता है। हालांकि किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो पहले पैच टेस्ट करना बेहतर होगा। नियमित और सही तरीके से इस्तेमाल करने पर गुलाब जल आपकी त्वचा को ताजगी और नेचुरल निखार देने में मदद कर सकता है। बहनों, इसी के साथ हम सभी महिलाओं का घर तो आप समझ सकते हैं कि किचन में ही होता है, और हमारा आधा घर संसार तो हमारे किचन में ही बसा हुआ है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ ब्यूटी टिप्स। ब्यूटी टिप्स के साथ ही अब हम देखेंगे कि हमारी रेसिपी क्या होने वाली है। गर्मी के मौसम में एक यूनिक और रिफ्रेशिंग रेसिपी है तरबूज गजपाचो। ये एक ठंडी सूप रेसिपी है जो स्वाद के साथ शरीर को भी ठंडक देती है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लगभग 2 कप तरबूज के टुकड़े लें। इसमें एक छोटा टमाटर, आधा खीरा, कुछ पुदीने की पत्तियां, एक छोटा चम्मच नींबू रस और स्वादानुसार काला नमक डालें। अब इन सभी चीज़ों को मिक्सर में अच्छी तरह ब्लेंड कर लें। अगर आप हल्का तीखा स्वाद चाहती हैं तो उसमें थोड़ी काली मिर्च भी मिला सकती हैं। तैयार मिश्रण को अब करीब आधे घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दें। इसके बाद इसे एक बाउल या ग्लास में निकालें और ऊपर से पुदीने या छोटे कटे खीरे से गार्निश करें। ये रेसिपी गर्मी में काफ़ी हल

हेल्दी और हाइड्रेटिंग मानी जाती है। खास बात यह है कि इसे बिना गैस जलाए बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है। और एक और विशेष बात, अगर आप तरबूज खरीदने जा रहे हैं या घर पर मंगवा रही हैं, तो आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आजकल तरबूज खाने से भी बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। तो जब भी आप तरबूज घर में लाएं, सबसे पहले आप उसको अच्छी तरीके से धो लें। और ये सिर्फ मैं तरबूज की ही बात नहीं कर रही हूँ, जितने भी फल सब्जियां हों सभी को अच्छी तरीके से वॉश करें, क्योंकि आप देख रहे हैं कि गर्मी का समय है, बहुत सारी आप देखते हैं सब्जियां, ज़्यादा भी ना मंगवाएं, क्योंकि घर पे रखे रखे सब्जियां या आपके फल भी ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखिए। चलिए अब स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी सखी शेफाली जैन फिर उपस्थित होंगी, आपसे फिर मिलूंगी। तब तक आप अपना, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखें। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे हमारी बहनों का कार्यक्रम घर संसार आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और अब समय है कार्यक्रम सुगम संगीत का। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं तलत अजीज की आवाज में कुछ गजलें। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम की पहली पेशकश।

0: मंत्री अमित शाह कोलकाता पहुंच गए हैं।
1: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के लगभग डेढ़ दशक के शासन का अंत हो चुका है। कल नवनिर्वाचित सरकार की शपथ ग्रहण के साथ ही बंगाल में राजनीतिक इतिहास में एक नई कड़ी का शुरुआत होगी। कल रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड पैरेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल की पहली बीजेपी सरकार शपथ लेगी। बीजेपी के विधायक दल का नेता चुनने का प्रक्रिया को संपन्न करने
2: 30-day विंटर फॉर फाइनल नेगोशिएशन।
0: ग्रहण समारोह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप 18 के बहुमत तक पहुंचने के लिए बातचीत जारी है। डीएमके और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी ने कल नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक की। ऑल अन्ना डीएमके पार्टी के महासचिव ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना गया। राज्य की सबसे बड़ी पार्टी तमिलक वेत्री कड़गम को समर्थन देने के मुद्दे पर विद्युत हलाई चिरू थैगल काची, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक आज होगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonyayar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 में पुनः निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज एक राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में ये जानकारी दी। श्री मोदी ने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ को भारत की सभ्यतागत शक्ति और मजबूती का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि सोमनाथ मंदिर की यात्रा विध्वंस से सृजन की तरफ बढ़ने का प्रतीक है और ये दिखाती है
2: देशों के साथ प्रवासियों की आवाजाही के लिए व्यापक द्विपक्षीय समझौते और समझौता ज्ञापन किए हैं तथा निष्पक्ष और नैतिक आवाजाही के लिए कई और अन्य समझौतों पर विचार किया जा रहा है। भारत का लक्ष्य अवैध पलायन, तस्करी और सामाजिक सुरक्षा में मौजूद कमियों जैसी चुनौती से निपटते हुए समावेशी मानवीय और भविष्य के लिए तैयार ढांचे का निर्माण करना है।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के सबसे तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। श्री नायडू ने ये बात गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में भारत विमान लीजिंग और वित्त पोषण के दूसरे चरण में मुख्य भाषण देते हुए कही। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने वैश्विक आर्थिक स्थिरता

0: द्विवेदी और आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने इस मैराथन को रवाना किया।
1: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुंचाया जा रहा है।
2: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
1: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
3: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुंचता है और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
4: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं, उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
1: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के अंतर्गत छठे युवा संगम का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं में सांस्कृतिक एकीकरण को बढ़ावा देना तथा लोगों के बीच संपर्क को सशक्त बनाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों के युवा प्रतिभागी जीवन, विकास, संस्कृति, विरासत, शिक्षा, पर्यटन, नवाचार और श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों के विभिन्न पहलुओं का अनुभव करने के लिए सहयोगी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का दौरा कर रहे हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। ये मैच शाम 7:30

0: क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला आज शाम दिल्ली में कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र।

अभी आप सुन रहे थे पंडित भीमसेन जोशी का राग भैरवी में ठुमरी गायन। इसी के साथ कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत अब संपन्न होता है।

0: सुनो ना।
1: हाँ?
0: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
1: तो रोका किसने है? हाँ?
0: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
1: मुझसे।
0: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
1: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
0: पर उससे मेरा क्या फायदा?
1: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
0: पर अब ये भी तो बता।

कार्यक्रम का पहला गीत था सुरैया की आवाज में फिल्म लाल कुंवर से। साहिर लुधियानवी के बोल थे एस डी बर्मन की धुन। अगला गीत है फिल्म वक्त से आशा भोसले की आवाज में। रवि की धुन पर बोल है साहिर लुधियानवी के।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब वक्त है उर्दू कार्यक्रम अंजुमन का। कार्यक्रम की पहली पेशकश में आइए सुनते हैं मकाला, जिसका उन्वान है हकीम मोमिन खान मोमिन की शायरी। मकाला निगार है तनवीर मुस्तफा।
1: गालिब का एक शेर है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। उर्दू अदब में गज़ल एक ऐसी महबूब सिंफ सुखन है, जिसकी जुल्फों को संवारने और निखारने का सिलसिला उसके इब्तदाई दौर से मुसलसल जारी है, लेकिन हनूज उसकी जुल्फों की परेशानी बाकी कायम है। ये अपनी लोच और लचक के बायस अपनी हैयत में तब्दीली गवारा की।

ये बगैर हर दौर के असली तकाजों से हम आहंगी पैदा करने और उनकी खुश असलूबी से तर्जमानी करने की सलाहियत से मुजयन है। मैं समझता हूँ कि उसका ये वस्फ ही उसकी बका का ज़ामिन है। हकीम मोमिन खां मोमिन को उर्दू गज़ल गो शौरा में ख़ास मुकाम हासिल है। उन्होंने गज़ल के रूप को निखारा और उसे पुरकशिश बनाया। उन्होंने अपनी फ़नी महारत, दिलकश लबो लहजे और मुनफरिद असलूब से गज़ल में असर आफरीनी, लताफत व ताजगी पैदा की। हकीम मोमिन खां मोमिन सन 1800 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। ये वो दौर था जब गालिब ज़ौक ज़फ़र की तूती बोल रही थी। उनका ख़ानदानी पेशा तिब्ब हिकमत था। उन्होंने इल्म नुजूम, मौसीकी और शतरंज में भी कमाल व महारत हासिल की थी। खूबरू, खुश वज़ा, खुददार होने के साथ साथ तबीयत में निफाजत पसंदी और रंगीनी थी। हुस्न परस्ती और आशकाना मिजाज ने दिल्ली के गली कूचों का असर कबूल किया। आरजुओं और तमन्नाओं पर बहारें मुस्कुराईं। मोमिन को बचपन ही से शेरगोई का शगफ था। आशकाना मिजाजी ने मज़ीद इस जज्बे को तवानाई बख्शी। उस वक्त की दिल्ली इल्म व अदब फ़नी कमालात की बुलंदी पर थी और ज़हूर कमाल व फ़न के लिए फ़ज़ा हर उनवान से साजगार थी। मोमिन ने अपनी फितरी सलाहियतों और खुदादाद इस्तेदाद के सहारे खूब गौरवशानी की। उनकी रफ़त फ़िक्र ने बहुत जल्द उन्हें बाकमाल अदीबों और शौरा की सफ में खड़ा होने के काबिल बना दिया। मोहब्बत की ज़बान में मोहब्बत की गुफ्तगू करना उर्दू गज़ल का महबूब वसीला रहा है। कोई गज़ल को शायर ऐसा नहीं है जिसने इससे अपना दामन दूर रखा हो। राहो रस्म इश्क आशिकी का ये कूचा हज़ार फरसुदा पामाल सही, लेकिन इसके बगैर गज़ल अपनी मंजिल मकसूद तलाश करने में नाकाम ही रहती है। मोमिन के कलाम में मोहब्बत की कारफरमाइयाँ, हुस्न की जलवा आराइयाँ, इश्क की बेताबियाँ वरक वरक पर नुमायाँ महसूस होती हैं। हिजर विशाल चांद तारों तक फैलती सूरज की किरणें, आबशारों की नगमगी, आतिश गुल की जलन, यादों के कवल महकते नजर आते हैं। मोमिन की खुददार तबीयत ने किसी अमीर, नवाब या बादशाह की खुशामद या चापलूसी करना गवारा नहीं किया। उनके कलाम में गज़लों के अलावा मसरी, रुबाइयात और मुसद्दस के नमूने भी मिलते हैं। ना तो हमद और मनकबत के साथ खुलफाए राशिदीन की मदा में कसायदी कलम का हिस्सा हैं। मोमिन के कलाम की खूबी व खूबसूसियत उनका रंग तगज़ुल है, जिसे उनके हालात और ज़ाती तजर्बात व एहसासात के इम्तज़ाज का नतीजा समझना चाहिए। जज्बात व एहसासात की यह कहकशां दिलकश व दिलनशी भी है और जाज़िब नज़र भी। उनके अशार की सहरंगेजी दिलों को मसहूर कर देती है। मोमिन को उर्दू अदब में मकरे शायराना का मुजिद भी कहा जाता है। ये उनका ख़ास अंदाज है। मकरे शायराना की मिसाल इन अशार में मुलाहज़ा फरमाएं। गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी दीदा गमाज देखना, क्यों सुने अर्ज़ मुस्तरिब मोमिन सनम आखिर खुदा नहीं होता। मामला बंदी में भी मोमिन को महारत हासिल है। हफ़्ज़ुल अशआर इस ज़मीन में पेश हैं। वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही यानी वादा निबाह का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, न जाऊँगा कभी जन्नत को मैं न जाऊँगा, अगर न होवेगा नक्शा तुम्हारे घर का सा, जिनसे मंजूर वफा है हो जफा भी उन पर, मुझसे कुछ काम नहीं है तो सताते क्यों हो। जिद्दत तराजी के अंदाज और नाजुक ख्याली के लिए उनका यह शेर समाज फरमाए, जिसके बारे में मशहूर है कि इस शेर को सुनकर गालिब ने कहा था, मोमिन खां मेरा पूरा दीवान ले लें और ये शेर मुझे दे दें। तुम मेरे पास

0: होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मोमिन के कलाम में तशबीहात सारात का बागपन और सर्विक्टर की वो की लताफतें अजीब हुस्न के साथ जलवागर हैं। कहते हैं उनको होश नहीं इस तराम में, सारे गिले तमाम हुए एक जवाब में। है कुछ तो बात मोमिन जो छा गई खामोशी, किस बुत को दे दिया दिल, क्यों बुत से हो गए बन गए हो। मोमिन के यहाँ रश्क तंज के भी बेशुमार शार मिलते हैं, जैसे जिद से वो फिर रकीब के घर में चला गया। ए रश्क मेरी जान गई तेरा क्या गया, लिखो सलाम गैर के खत में गुलाम को, बंदे का बस सलाम है ऐसे सलाम को। मोमिन अपने मक्ते से खूब फायदा उठाते हैं। दुश्मने मोमिन रहे हैं बुत सदा, मुझसे मेरे नाम ने क्या क्या किया। मोमिन के कितने ही अशार अवाम में जरूर मसल बन गए हैं। उलझाए पाँव यार का जुल्फ दराज में, लो आप अपने दाम में सयाद आ गया। उम्र तो सारी कटी इसके बुताव में मोमिन, आखिरी वक्त में क्या खाक मुसलमान होंगे। कुछ और अशार उनके मखसूस लबो लहजे मुलाजा फरमाए। हैं असीर उसके जो है अपना असीर, हम न समझे कैद क्या सयाद क्या। ये हालत है तो क्या हासिल बयां से, कहूँ कुछ और निकले कुछ जबान से। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। सब्र वहशत असर ना हो जाए, कहीं सहराई घर ना हो जाए। तू कहाँ जाएगी कुछ अपना ठिकाना कर ले, हम तो कल ख्वाब अदम में शब हिजरा होंगे। अल्लाह रे गुम रही बुतो बुसखाना छोड़कर, मोमिन चला है काबे को एक पारसा के साथ। हमसे न बोलो तुम इसे क्या कहते हैं भला, इंसाफ कीजिए पूछते हैं आप ही से हम। मेरे तगीले रंग पे मत जा, तुझको अपनी नज़र न लग जाए। नियाज फतापुरी ने अपने निगार नंबर में मोमिन की सारी खूबियों को वजाहत के साथ उजागर करके गालिब के मुकाबले ज़्यादा अजीम साबित करने की जो कोशिश की थी, वो अगरचे बराबर तो साबित नहीं हुई। बहरहाल मोमिन का मुकाम ऐसा मुनफरद मुकाम है जिसका मवाजना किसी दूसरे शायर से नहीं किया जा सकता।
1: अभी आप सुन रहे थे मकाला जिसका उनवान था हकीम मोमिन खान, मोमिन की शायरी। मकाला निगार थे तनवीर मुस्तफ़ा। कार्यक्रम अंजुमन की अगली पेशकश कलाम शायर में आइए सुनते हैं मोहम्मद तारिक अब्र को।
2: आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि थपकियाँ दे के सुलाया है बड़ी मुश्किल से, थपकियाँ दे के सुलाया है बड़ी मुश्किल से, आज उम्मीद को एक छोटे से बच्चे की तरह। जीस्त हर साल बदलती है सिलेबस मेरा, जीस्त हर साल बदलती है सिलेबस मेरा, और किस्मत है पुराने किसी बस्ते की तरह, और किस्मत है पुराने किसी बस्ते की तरह। एक मतला और एक गजल के चंद शेर देखें कि जुल्मत का एक घूंट ज्याले को पी गया, जुल्मत का एक घूंट ज्याले को पी गया, बीमार जहन इल्म के हाले को पी गया। मंजिल की प्यास चाट गई रूह की नमी, मंजिल की प्यास चाट गई रूह की नमी, फिर पांव अपनी राह के छाले को पी गया। भूखे की अब जबान पे एक ही सवाल है, भूखे की अब जबान पे एक ही सवाल है, ये कौन मेरे हक के निवाले को पी गया, ये कौन मेरे हक के निवाले को पी गया। और शेर देखें कि ये हैरत में पड़ गई है अंधेरे की सल्तनत, हैरत में पड़ गई है अंधेरे की सल्तनत, जुगनू का एक वार ही काले को पी गया, जुगनू का एक वार ही काले को पी गया। और सच की चमक सलीब पे रुसवा ना हो सकी, सच की चमक सलीब पे रुसवा ना हो सकी, रहबर का सब्र जुल्म के भाले को पी गया, रहबर का सब्र जुल्म के भाले को पी गया। और शेर देखें कि मजलूम की पुकार कहीं दब के रह गई, मजलूम की पुकार कहीं दब के रह गई, अखबार फिर से सच के हवाले को पी गया, अखबार फिर से सच के हवाले को पी गया। اور مقطع آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ

सूरज को था गरूर बहुत अपनी ताब पर। सूरज को था गरूर बहुत अपनी ताब पर, एक अब्र आया और उजाले को पी गया। एक अब्र आया और उजाले को पी गया। अपनी बात एक और मतले से रखता हूँ, कहता हूँ कि गुल मकबरे पे कोई चढ़ाया हुआ हूँ मैं। गुल मकबरे पे कोई चढ़ाया हुआ हूँ मैं, कुछ इस तरह से इश्क में जाया हुआ हूँ मैं। कुछ इस तरह से इश्क में जाया हुआ हूँ मैं, और दुनिया के साथ मेरा बस इतना सा वास्ता। दुनिया के साथ मेरा बस इतना सा वास्ता, जिंदा हूँ और कब्र में आया हुआ हूँ मैं। जिंदा हूँ और कब्र में आया हुआ हूँ मैं। एक शेर देखें कि मिट्टी ये मेरी चाक पे धर तो रहे हो तुम। मिट्टी ये मेरी चाक पे धर तो रहे हो तुम, ये सोच लो खुदा का बनाया हुआ हूँ मैं। ये सोच लो खुदा का बनाया हुआ हूँ मैं। एक गजल के चंद शेर और देखें कि आज़ाद रखो मुझको, आज़ाद रखो मुझको या जिंदान में रखो। आज़ाद रखो मुझको या जिंदान में रखो, हक बोलता हूँ कैसे भी मीज़ान में रखो। और जिंदा हूँ मैं अगर तो गज़ल की तरह सुनो। जिंदा हूँ मैं अगर तो गज़ल की तरह सुनो, मुर्दा हूँ फिर तो कब्र के दीवान में रखो। मुर्दा हूँ फिर तो कब्र के दीवान में रखो। तुमने मर्ज ये पाला है माजी के दर्द का, तुमने मर्ज ये पाला है माजी के दर्द का। ये मैंने कब कहा था मुझे ध्यान में रखो, ये मैंने कब कहा था मुझे ध्यान में रखो। और सच बोलने लगा हूँ मैं झूठों के शहर में, सच बोलने लगा हूँ मैं झूठों के शहर में। लाजिम है मुझको मेरी कलम दान में रखो, लाजिम है मुझको मेरी कलम दान में रखो। और हर जंग जीत जाओगे तुम तीरगी के साथ, हर जंग जीत जाओगे तुम तीरगी के साथ। बस शर्त ये है जुगनू को मैदान में रखो, बस शर्त ये है जुगनू को मैदान में रखो। एक मतला और चंद शेर और समात फरमाए के दौलत से ऐबों को सवारा जाएगा, दौलत से ऐबों को सवारा जाएगा, हर सच को अब झूठ से मारा जाएगा। दौलत से ऐबों को सवारा जाएगा, हर सच को अब झूठ से मारा जाएगा। सर इतना मशहूर हमारा लोगों में, सर इतना मशहूर हमारा लोगों में, चौराहे के बीच उतारा जाएगा, चौराहे के बीच उतारा जाएगा। और शेर देखें कि हिस्सों में जब तोड़ रहे हो माजी को, हिस्सों में जब तोड़ रहे हो माजी को, हिस्सों में ही वक्त गुजारा जाएगा, हिस्सों में ही वक्त गुजारा जाएगा। और एक शेर जो बच्चों के लिए है, इस पे गौर करें कि धागे से आज़ाद तो कर इन बच्चों को, धागे से आज़ाद तो कर इन बच्चों को, कितना ऊंचा देख गुबारा जाएगा, कितना ऊंचा देख गुबारा जाएगा। और शेर है कि माना हमने बज़्म बड़ी है हम छोटे, माना हमने बज़्म बड़ी है हम छोटे, गाया फिर भी शेर हमारा जाएगा, गाया फिर भी शेर हमारा जाएगा। एक मतला और आपकी समातों के हवाले करता हूँ कि ऐसे निकला हूँ मैं इस जिस्म की वीरानी से, ऐसे निकला हूँ मैं इस जिस्म की वीरानी से, लाश जैसे कि उभरती हो कोई पानी से। ऐसे निकला हूँ मैं इस जिस्म की वीरानी से, लाश जैसे कि उभरती हो कोई पानी से। हंसते चेहरों से शिकायत है जहां वालों को, हंसते चेहरों से शिकायत है जहां वालों को, दर्द बेचोगे तो बिक जाएगा आसानी से, दर्द बेचोगे तो बिक जाएगा आसानी से। और शेर है कि चलती फिरती हुई क्या लाश नहीं देखी कभी, चलती फिरती हुई क्या लाश नहीं देखी कभी, लोग क्यों देखते हैं मुझको यूं हैरानी से, लोग क्यों देखते हैं मुझको यूं हैरानी से। एक गजल के कुछ और शेर हैं जो आपकी समातों के हवाले करता हूं कि इसके रदीफ को गौर में रखिएगा कि दिल में जला दिया जो वो ही तो शेर था, दिल में जला दिया जो वो ही तो शेर था, लिख के मिटा दिया जो वो ही तो शेर था। जो याद है जबानी उनको मैं क्यों पढ़ूं, जो

0: याद है जबानी, उनको मैं क्यों पढूं, सबने भुला दिया जो वो ही तो शेर था, सबने भुला दिया जो वो ही तो शेर था, और बाहर था जो भी जाहिर गजलों में कह लिया, बाहर था जो भी जाहिर गजलों में कह लिया, अंदर छुपा दिया जो वो ही तो शेर था, अंदर छुपा दिया जो वो ही तो शेर था। और तुम तक कहाँ ये पहुंची पूरी मेरी गजल, तुम तक कहाँ ये पहुंची पूरी मेरी गजल, खत से हटा दिया जो वो ही तो शेर था, खत से हटा दिया जो वो ही तो शेर था, दुनिया जो सुन रही है ये लफ्ज हैं फकत, दुनिया जो सुन रही है ये लफ्ज हैं फकत, तुमको सुना दिया जो वो ही तो शेर था, तुमको सुना दिया जो वो ही तो शेर था, हैं अब्र की गजल में ये चांद तारे सब, हैं अब्र की गजल में ये चांद तारे सब, जुगनू बुझा दिया जो वो ही तो शेर था, जुगनू बुझा दिया जो वो ही तो शेर था। एक मतला और देखें, तेरी नजर से माना कि दरिया नहीं हूं मैं, तेरी नजर से माना कि दरिया नहीं हूं मैं, तू प्यास बन के देख तो क्या क्या नहीं हूं मैं, तू प्यास बन के देख तो क्या क्या नहीं हूं मैं, एक बार मेरे दिल में उतर के तो देखते, एक बार मेरे दिल में उतर के तो देखते, तुम सोचते हो उतना भी गहरा नहीं हूं मैं, तुम सोचते हो उतना भी गहरा नहीं हूं मैं। और शेर बतौर खास के, जिंदा दिली है जिंदा मेरी सबके वास्ते, जिंदा दिली है जिंदा मेरी सबके वास्ते, हालांकि अपनी जात में जिंदा नहीं हूं मैं, हालांकि अपनी जात में जिंदा नहीं हूं मैं, और हारा हूं जानबूझ के बाजी ये इश्क की, हारा हूं जानबूझ के बाजी ये इश्क की, वाकिफ हूं तेरी चाल से बच्चा नहीं हूं मैं, वाकिफ हूं तेरी चाल से बच्चा नहीं हूं मैं। एक छोटी बहर में छोटी सी गजल आपकी समातों के हवाले करता हूं कि अक्स हो जैसे आब में कोई, अक्स हो जैसे आब में कोई, रोज मिलता है ख्वाब में कोई, अक्स हो जैसे आब में कोई, रोज मिलता है ख्वाब में कोई, फर्क लगता नहीं जरा सा भी, फर्क लगता नहीं जरा सा भी, आप में और गुलाब में कोई, आप में और गुलाब में कोई, घुल गए आप जिस्म में ऐसे, घुल गए आप जिस्म में ऐसे, बर्फ घोले शराब में कोई, बर्फ घोले शराब में कोई, और तेरी यादें यूं रखता हूं दिल में, तेरी यादें यूं रखता हूं दिल में, गुल हो जैसे किताब में कोई, गुल हो जैसे किताब में कोई, जख्म खाके भी जिंदा बैठा हूं, जख्म खाके भी जिंदा बैठा हूं, गड़बड़ी है हिसाब में कोई, गड़बड़ी है हिसाब में कोई, और इस शबे इंतजार के बदले चांद उतरे हिजाब में कोई, इस शबे इंतजार के बदले चांद उतरे हिजाब में कोई, सब यहाँ अब्र के हैं दीवाने। मक्ते का शेर देखें कि सब यहाँ अब्र के हैं दीवाने, बात तो है जनाब में कोई, बात तो है जनाब में कोई।
1: कलाम शायर में अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद तारिक अब्र को। अब आइए कार्यक्रम की आखिरी पेशकश में सुनते हैं अफसाना, जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार है सादिया राशिद।
2: आखिर अम्मा आप रो रो कर क्यों हलकान हो रही हैं? जो किस्मत में लिखा होता है वो होकर रहता है, इंसान अपनी किस्मत अपने हाथों से नहीं लिखता। और क्या आपको अल्लाह पर भरोसा नहीं है? हर काम में अल्लाह की मसलियत होती है, हो सकता है यही मेरे लिए बेहतर हो। प्यारी अम्मा हिम्मत मत हारिए, अगर जिंदगी में एक बार खजा आती है तो दूसरी बार बहार जरूर आएगी। दानिया अपने लफ्जों में माँ को तसल्ली देने लगी। आखिर मैं एक माँ हूँ, कोई मेरे दिल से पूछे आखिर क्या कमी नजर आई थी मेरी बेटी में, जिस कमी की वजह से रिजेक्ट किया, सिर्फ इसलिए कि लोगों की तरह हमारे पास देने को जहेज नहीं है, लालची लोगों को हमारा अखलाक नजर नहीं आया, ये साफ शफाफ दिल नजर नहीं आया, लोग क्या सोचेंगे, 2 साल की मंगनी क्यों टूट गई, आखिर क्या वजह थी। सुल्ताना बेगम के आंसू नहीं रुक

रहे थे। अम्मी लोगों का क्या है, जितने मुंह उतनी बातें। अम्मी ये दुनिया बेबुनियाद बातों के अफसाने बना देती है, फिर लोगों से क्या डरना। बेटी रहना भी हमें इसी मुआशरे में है, ये बात तो सच है। ये दुनिया ना दुख देख सकती है ना सुख। छोड़िए अम्मी दुनिया को, अपनी फिक्र कीजिए, इतना रोएंगी तो तबीयत खराब हो जाएगी, वो माँ को बहलाने लगी। दानिया अपने माजी की यादों में गोते लगाने लगी। दादी के दो बेटे थे, उसके अब्बू और शाहरुख चाचा। अब्बू नहायत सुलझे हुए नरम मिजाज थे, हर काम हमेशा सोच समझ कर करते। इसके बरक्स चाचा अब्बू के उलट थे, मिजाज बहुत गुस्से वाला, हमेशा वही काम करते जो उनका दिल चाहता। दादी बड़ी बहू अपनी पसंद से लाई थी, सुल्ताना बेगम गरीब मगर शरीफ खानदान से ताल्लुक रखती थी। अब्बू ने दादी की पसंद से शादी की थी, चाचा ने अपनी पसंद से शादी की थी। चाची एक फैशनेबल खानदान से ताल्लुक रखती थी, बात बात पर अकड़, मिजाज में गुस्सा। दादी मेरी अम्मी को पसंद करती थी, इसलिए चाची मेरी अम्मी से जलती थी। शादी को थोड़े ही दिन गुजरे थे तो चाची ने एक अलग घर लेने का मुतालबा शुरू कर दिया, और जब चाचा ने अलग घर ले लिया तो चाची ने रिश्वत लेने पर उकसाना शुरू कर दिया। चाचा रिश्वत लेकर तरक्की पर तरक्की करने लगे। जब भी दादी चाची से मिलने जाती तो चाची अपनी जुबान दराजी से दादी को दो चार घाव दे देती। फिर इन्हीं दिनों चाची की यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसका नाम उन्होंने साइमा रखा। दानिया के अब्बू रिटायर हो चुके थे, घर की सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आन पड़ी थी। इस हालत में माँ को तसल्ली देना और उनका सहारा बनना वो अपना फर्ज समझती थी। नौकरी के लिए वो इश्तहारात देखने लगी, रात देर तक निशान लगाने लगी। या अल्लाह, ये इंटरव्यू है या फैशन शो, फहद गुस्से से खोलता। हर एक फैशन एबल लड़की को देख रहा था। दो घंटे से मुझे ऐसा लग रहा है इंटरव्यू नहीं फैशन शो में बैठा हूँ, वो गुस्से से बड़बड़ा भी रहा था। मिसेस खान ही सवालात कर रही थी, फहद एक आधा ही सवाल करता, कोई उम्मीदवार जवाब नहीं दे पाती। मैं जा रहा हूँ मम्मी, फहद खड़ा हो गया। बैठो ना बेटा, एक दो उम्मीदवार बाकी हैं, मिसेस खान उसकी परेशानी समझकर मुस्कुराने लगी। मम्मी आप मुस्कुरा क्यों रही हैं, तुम्हारे तैश में आने पर मुझे तो लगता है कोई एडिटर के मियार पर पूरी नहीं उतरेगी। बैठो, आखिरी उम्मीदवार बाकी है, वो भी आएगी और नाकाम लौट जाएगी। फहद गुस्से में खिड़की के बाहर देखने लगा। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आ जाइए, मिसेस खान सवालात कर रही थी, दानिया जवाबात दिए जा रही थी। क्या तुम कोई सवाल करोगे फहद? मिसेस खान मुखातिब हुई। फहद ने अजबात में सर हिला दिया। उसने एक नजर उम्मीदवार की तरफ देखा, आने वाली ने काजल की एक हल्की सी लकीर का भी सहारा नहीं लिया था। सादगी, फैशन से बेनियाज चेहरा, दुपट्टा सलीके से सर पर सजाए हुए, उसे हैरत हुई। आपका नाम? दानिया आसिम। तालीम? बीए। मशगला? उर्दू अदब की किताबें पढ़ना। आपकी नज़र में तालीम की क्या अहमियत है? तालीम हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो किसी मजहब का हो या किसी मुल्क का। तालीम से इंसान का शऊर बेदार होता है। गुड। कौन सा हर्ज का बीज एक तनावर दख्त बन चुका है? जहेज ही ऐसा नासूर है जो समाज में हर्ज और लालच को तरक्की दे रहा है। ये ऐसा बीज है जो एक तनावर दख्त बन चुका है। जहेज की वजह से कितनी बहनें बैठी हैं, कितनी ही जिंदा जलाई जाती हैं, इसका खात्मा तो आज की नस्ल पर मुनहसर है। वेरी गुड, आप कल से ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए। शुक्रिया सर, वो खुश होते हुए बोली और बाहर निकली। ए अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे नौकरी मिल गई। दानिया जब इंटरव्यू देने आई थी तो बहुत सारे रंगीन आंचलों को देखकर ऐसा लगा उसे आज भी नौकरी नहीं मिलेगी। उसकी काबिलियत देखकर उसे नौकरी मिल गई। बेशक अल्लाह अपने बंदों को कभी नाराज नहीं करता। हफ्ता महीनों में गुजर गया, मिसेस खान दानिया के काम से बहुत खुश थी। अस्सलामुअलैकुम, फहद ने जोरदार सलाम किया। आओ बैठो बेटा, यकीन मानो अभी मेरा दिल तुम्हें ही याद कर रहा था, मिसेस खान खुशदिली से बोली। जहन नसीब, छुट्टी के बाद भी काम किया जा रहा है? वो पास ही फाइल चेक करती दानिया पर एक निगाह डालते हुए पूछने लगा। ये बच्ची तो हीरा है, एडिटर का काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। फहद की नजरें बार बार दानिया की तरफ उठ रही थीं, जो दुनिया जमाने से बेनियाज अपने काम में मशगूल थी। मेरा काम हो गया, दानिया ने मिसेस खान के आगे फाइल रख दी और बैग कंधे पर डालते हुए निकल गई। मेरा काम भी हो गया, फहद ने मिसेस खान को फाइल दी। कार ड्राइव करते हुए उसकी नजर बस स्टॉप पर खड़ी दानिया पर पड़ी। कार उसने दानिया के सामने रोक दी। अगर आप माइंड न करें तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं, बारिश शुरू हो गई थी, अंधेरा बढ़ रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आप बारिश को देखकर मुझे

0: लिफ्ट दे रहे हैं। लेकिन क्या आप नहीं जानते कि मिडिल क्लास की लड़कियों को आदत होती है बारिश में भीग कर जाने की, गर्मियों में तपती धूप में जलने की। हम मिडिल क्लास की लड़कियां कभी ख्वाब नहीं देखती, क्योंकि हमारे हालात हमें हकीकत पसंद बना देते हैं। मेरी बस आ गई है, अल्लाह हाफिज। दिन गुजरते गए। मिसेस खानदानिया के काम से बहुत खुश थी। सारा स्टाफ उसकी तारीफ करता था। हसबे आदत फहद रोज की तरह मम्मी से दुआएं लेने कमरे में आया। थोड़ी देर की गुफ्तगू के बाद मिसेस खान बोली, बेटा अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ। वो सामने वाली कोठी में जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनकी बेटी साइमा तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत शरीफ मालूम होती है। मम्मी क्या आप चाहती हैं कि मैं किसी आवारा लड़की से शादी करूं? नहीं बेटा, मैं तो सिर्फ तुम्हारी पसंद जानना चाह रही थी। साइमा क्लब की मेंबर है, आधी आधी रात तक म्यूजिक की आवाजें आती रहती हैं। फहद तफसील बताने लगा, बेटा मैं क्या जानूं कौन कैसा किरदार निभा रहा है। बेटा मुझे तुम पर फख्र है, तुम्हारी पसंद मशरकी लड़की है। अच्छा छोड़ो, दानिया के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? जैसे आपकी मर्जी। फहद भी दानिया को पसंद करता था। आज वो ऑफिस में दानिया से अपने ख्यालात जाहिर करना चाहता था। वो दरअसल मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। बस बहुत हो गया, आखिर आपने समझा क्या है? मैं गरीब लड़की जरूर हूँ लेकिन एहसासात रखती हूँ। अगर ये मजाक किया है तो इससे मेरे दिल को बहुत अजियत पहुंची है। आप गलत समझ रही हैं, फहद ने कुछ कहना चाहा। बस रहने दीजिए, मैं खिलौना नहीं हूँ। मेरी मंगनी टूट चुकी है, मेरा भी दिल है, मेरी भी मर्जी है। प्लीज आप मुझे समझने की कोशिश कीजिए, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ। क्या बेवकूफ थी वह खातून? ये अंधी थी। किसी ने कहा नाक मोटी है, किसी ने कहा मेरी आंख छोटी है, किसी ने कहा जहेज इतना सा है, ना मेरे माँ बाप अमीर हैं। फिर कौन से एंगल से आपने मुझे पसंद किया? मुझे आपकी सादगी, आपकी साफगोई और ईमानदारी पसंद है। जिस तरह जौहरी हीरे की कीमत पहचानता है, उस तरह मैंने आपके शफाफ बातिन को देख लिया है। हर इंसान को एक कसौटी पर रख कर परखना नहीं चाहिए, किसी पर एतबार करना सीखिए। इंशाल्लाह आने वाली सुबह खुशी का पैगाम लेकर आएगी। वो उठकर कमरे से निकलता चला गया। सुर्ख रंग के जोड़े में दानिया बहुत खूबसूरत नजर आ रही थी, और फहद की दुल्हन बनकर आई दानिया को वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से तारुफ करा रहा था। ये हमारे पड़ोस में सामने वाली कोठी में रहती हैं। साइमा और चाची को देखकर माजी फिर एक बार नजरों में घूम गया। वो अपना गुजरा हुआ वक्त कैसे भूल सकती थी? कुछ देर वहीं खड़ी रही, फहद आगे बढ़ गया। बेटी मुझे माफ कर दो, बाज वक्त इंसान गुरूर में इतना अंधा हो जाता है, हर इंसान को हकीर समझने लगता है। मेरा भी वही हाल है। चाची दानिया के सामने अपना हाल बयान करने लग गई थी। मैं गुरूर में इतनी अंधी हो गई थी, अल्लाह की लाठी बेवाज है। 2 महीने पहले साइमा की शादी हुई थी, शादी के 3 दिन बाद साइमा को तलाक हो गई। आखिर मुझे सजा मिलनी थी। बेवाज आंखों से आंसू निकले। एक नजर कुछ फासले पर खड़े अपने अम्मी अब्बू को देखा, कितने खुश नजर आ रहे थे। दानिया इधर आओ, फहद की आवाज पर दानिया धीरे धीरे कदम उठाती हुई आगे बढ़ी। बेशक अल्लाह तू बहुत रहीम है, तू हर एक की दुआ सुनता है। माँ की गोद औलाद के लिए पहला मदरसा होती है। वालदैन बच्चे को जिस सांचे में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। चाची ने अपने रंग में औलाद की परवरिश की और मेरे वालदैन ने मेरी तरबियत अपने रंग में की। वो सोचती हुई लोगों से मिल रही थी। आज जहन पर कोई बोझ और होठों पर कोई शिकवा ना था।
1: अभी आप सुन रहे थे अफसाना, जिंदगी के बदलते रंग। अफसाना निगार थी सादिया राशिद। इसी के साथ कार्यक्रम अंजुमन अब खत्म हुआ। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस सभा के कार्यक्रमों का प्रसारण अब यहीं समाप्त होता है। सायंकालीन सभा के कार्यक्रमों के साथ शाम 5 बजे आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। नमस्कार।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। संध्या के 5 बजने को हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा के प्रसारण आरंभ होते हैं। सभा के आरंभ में सबसे पहले सुनते हैं हिंदी में समाचार।

0: भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायक शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री होंगे। कोलकाता में पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। श्री शाह ने इसकी घोषणा की।
1: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
0: इसके बाद राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। कल सुबह 11 बजे रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्य की पहली भाजपा सरकार शपथ लेगी। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं चल रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक अपने नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। आयोग ने कहा है कि हाल ही में संपन्न 803 विधानसभा सीटों पर चुनाव से जुड़े सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमवार को गुजरात जाएंगे। देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने 11 मई 1951 को पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर का शुभारंभ किया था। प्रधानमंत्री ने आज राष्ट्रीय दैनिक में लिखे लेख में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ महीनों के भीतर सोमनाथ मंदिर से जुड़े दो महत्वपूर्ण आयोजनों में शामिल होना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इस वर्ष की शुरुआत में प्रधानमंत्री मंदिर पर पहले आक्रमण के 1000 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व में शामिल हुए थे। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा है कि भारत विश्व के तेजी से बढ़ते विमानन बाजार के बाद अब विमान पट्टे पर देने और वित्तीय सहायता के मामले में एक प्रमुख वैश्विक स्थान बन रहा है। गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत तीसरा सबसे बड़ा घरेलू विमानन बाजार बनकर उभरा है। सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर महिला रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू झू को 6-0 से हराया। कल भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में प्रवेश किया था। वहीं दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली अंक तालिका में 7वें और कोलकाता 8वें पायदान पर है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत प्रसारित की जाएगी। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। यह कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेवी 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे

स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:05। आइए अब जानते हैं आज की सांध्यकालीन सभा और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर भक्ति परक फिल्म संगीत का आनंद लीजिएगा कार्यक्रम सुर संध्या में। रोज की तरह कार्यक्रम युववाणी होगा 5:30 पर। आज के कार्यक्रम में रेड क्रॉस की भूमिका विषय पर होगी चर्चा। साथ ही सुनिएगा इरम खान से कनिका सिंह की बातचीत, विषय रहेगा इकोलॉजिकल हेरिटेज कंजर्वेशन। ताकत वतन की हमसे में है, बात होगी सड़क पर संयम की। शाम 6 बजे का समय रहेगा कार्यक्रम ग्रामीलोक का। आज के कार्यक्रम में जल है तो कल है विषय पर चर्चा सुनिएगा और वार्ताकार डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह हमें बताएंगे कि किसान भाई भूसे की पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं। कार्यक्रम मजदूर मंडल में रेड क्रॉस दिवस पर की जाएगी चर्चा और वार्ताकार विनोद कुमार अग्रवाल से सुनिएगा वार्ता। विषय है यातायात नियम और सड़क सुरक्षा। समय 6:30। शाम 7:10 पर कार्यक्रम विविधा में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर रुचि चतुर्वेदी से काव्य पाठ। कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश का समय रहेगा 7:31। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम महफिल कव्वाली में सुनिएगा फिल्मी कव्वालियां और 8:30 पर चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा। रात्रि 10 बजे का समय रहेगा फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनीगंधा का। शास्त्रीय संगीत में सुनिएगा रमेश तागड़े से वायलिन वादन। समय रात्रि 10:30। ये तो था आज की सांध्यकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। आइए अब जानते हैं कल की प्रातःकालीन सभा में क्या है खास। कल सुबह 6:05 पर होगा कार्यक्रम वंदना और 6:25 पर सुनेंगे कार्यक्रम चिंतन, जिसमें आप सुनेंगे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। सुरेश वाडेकर और भूपेंद्र सिंह से सुनिएगा श्री राम चरितमानस गान कल सुबह 6:35 पर। खेती की बातें क्रम में कल सुबह 6:45 पर सुनेंगे डॉक्टर विनय सिंह की वार्ता, विषय है गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं। सुबह 7:10 का समय होता है स्वास्थ्य चर्चा का। कल के कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे बच्चों के दिल में छेद की परेशानी विषय पर वार्ता। वार्ताकार होंगे डॉक्टर वीके राजपाल। कल सुबह 7:31 का समय रहेगा आसपास की घटनाओं पर आधारित कार्यक्रम आसपास का। सदाबहार फिल्मी गीतों का आनंद उठाइएगा कार्यक्रम गीतांजलि में। समय 8:45। कल सुबह 9:45 पर आनंद लीजिएगा लोक संगीत का और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन का। अभी आपने जाना आज की सांध्यकालीन और कल की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारी स्टूडियो की घड़ी में समय हुआ है 5:10। आइए अब आनंद लेते हैं भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या का।

ये भक्ति गीत हमने फिल्म यशवंत से लिया था, जिसके रचनाकार थे समीर। संगीत आनंद मिलन ने दिया था और आवाज दी थी रविंद्र साठे ने। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आप आनंद ले रहे हैं भक्ति गीतों का। फिल्म बेटी के इस भजन को सुरों से सजाया है कुक्कू सिंह ने। रचना नक्श लायलपुरी की है और आवाज है दिलराज कौर और अनुराधा पौडवाल की।

ये भक्ति गीत हमने फिल्म साथी से लिया था, जिसे लिपिबद्ध किया था समीर ने। संगीत नदीम श्रवण का था और आवाज थी अनुराधा पौडवाल की। न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। अगला भक्ति गीत

अभी आपने सुना भक्ति परक फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुर संध्या। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। संध्या के 5:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, जहां बातें होती हैं दिल से, समाज से और हम सब से जुड़ी हुई। मैं हूं आपकी दोस्त रोशनी शर्मा और आज फिर हम लेकर आए हैं एक ऐसा विषय, ऐसी बातें जो सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि इंसानियत की असली पहचान में बसती हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं एक छोटे से सवाल से। ज़रा सोचिए, अगर आज आपका फ़ोन अचानक बंद हो जाए, इंटरनेट चला जाए और सोशल मीडिया से एक दिन का ब्रेक मिल जाए तो सबसे पहले क्या करेंगे? हमें लगेगा कि यार, दुनिया से तो कनेक्शन ही टूट गया। लेकिन सच कहें तो असली कनेक्शन सिर्फ नेटवर्क से नहीं दोस्तों, इंसानों से होता है। किसी की मदद करना, किसी अनजान का हाथ पकड़ना, किसी मुसीबत में साथ खड़ा होना, यही वो चीज़ें हैं जो समाज को मजबूत बनाती हैं। और इसी सोच से जुड़ा है आज का हमारा विषय, रेड क्रॉस की भूमिका। क्योंकि आज यानी 8 मई को पूरी दुनिया में मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस दिवस। दोस्तों, जब भी कहीं बाढ़ आती है, भूकंप आता है, सड़क दुर्घटना होती है या किसी को खून की ज़रूरत पड़ती है, तब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना ये पूछे कि सामने वाला कौन है, किस धर्म या भाषा का है, बस मदद के लिए आगे बढ़ जाते हैं। यही भावना रेड क्रॉस की पहचान है दोस्तों। दोस्तों, इंटरनेशनल रेड क्रॉस मूवमेंट की शुरुआत मानवता की सेवा के उद्देश्य से हुई थी। इसका मुख्य काम पता है क्या था? आपदा के समय राहत पहुंचाना, प्राथमिक उपचार देना, नुकसान को बढ़ावा देना और ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करना। आज के समय में जब लोग सीन करके जवाब देना भूल जाते हैं, ऐसे में किसी अजनबी के दर्द को समझना और उसकी मदद करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। और रेड क्रॉस हमें यही सिखाता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। भारत में भी इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी कई महत्वपूर्ण काम करती है। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य जागरूकता अभियान, प्राकृतिक आपदाओं में सहायता और प्राथमिक चिकित्सा प्रशिक्षण, ये सब इसके मुख्य कार्यों में से हैं दोस्तों। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि समाज के लिए कुछ बड़ा करना पड़ेगा तभी बदलाव आएगा, लेकिन कई बार एक छोटा कदम भी बहुत मायने रखता है। जैसे आप चाहें तो किसी घायल व्यक्ति की मदद कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं या फिर किसी ज़रूरतमंद को सही समय पर अस्पताल पहुंचा सकते हैं। आज के युवा होने के नाते हमारी कई जिम्मेदारियां हैं। हर चीज़ में हम लोग तेज हैं। सोशल मीडिया, ट्रेंड फॉलो करना, सारी चीज़ें हमारे बाएं हाथ में हैं। और यही युवा मदद करने की आदत को भी अगर ट्रेंड बना लें तो सोचिए समाज कितना बदल सकता है। और रेड क्रॉस सिर्फ सहायता नहीं देता बल्कि लोगों को तैयार भी करता है कि आपातकाल में घबराना नहीं है बल्कि समझदारी से काम लेना है, क्योंकि कई बार एक सही निर्णय किसी की जान बचा सकता है। विश्व रेड क्रॉस दिवस यानी आज का दिन हमें ये याद दिलाता है कि मानवता सबसे ऊपर है। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में जहाँ लोग मेरे पास टाइम नहीं है कह के आगे बढ़ जाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपना समय, मेहनत और कभी कभी अपनी जान तक दूसरों की मदद में लगा देते हैं और शायद यही असली हीरो होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी समाज में बदलाव लाना चाहते हैं तो शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं बल्कि छोटी छोटी मददों से कीजिए, क्योंकि इंसानियत की कोई उम्र नहीं होती और मदद करने के लिए किसी खास दिन का इंतज़ार भी नहीं करना चाहिए। तो चलिए इसी से संबंधित पूछ लेते हैं आज से आपसे आज का सवाल। बताइए, रेड क्रॉस संगठन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? इसका जवाब हम जानेंगे कार्यक्रम के अंत में। तब तक हमारे साथ तो आपको जुड़े रहना है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों मानवता, सहायता और समाज के प्रति हमारी जिम्मेदारी की, कि कैसे छोटे छोटे प्रयास किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और जब हम जिम्मेदारी की बात करते हैं तो ये सिर्फ इंसानों तक तो सीमित बिल्कुल भी नहीं। हमारी प्रकृति, हमारे जंगल, नदियाँ, पहाड़ और जैव विविधता भी हमारी साझा जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर इंसानियत समाज को बचाती है तो प्रकृति पूरी पृथ्वी को संतुलित रखती है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जब हम अक्सर विकास की बातें तो करते हैं लेकिन पर्यावरण संरक्षण को कल देखेंगे वाली लिस्ट में डाल देते हैं और फिर

0: जब गर्मी बढ़ती है, मौसम बदलता है, हवा खराब होती है, तब हमें याद आता है कि प्रकृति का लो बैटरी वार्निंग काफी पहले से आ रहा है। इसी महत्वपूर्ण बातों को आगे बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ हैं इरम खान, जिनसे बात करेंगी कनिका सिंह, इकोलॉजिकल हेरिटेज कंजर्वेशन पर। तो आइए सुनते हैं और समझते हैं कि हमारी पारिस्थितिक विरासत को सुरक्षित रखना आगे वाली पीढ़ियों के लिए क्यों इतना जरूरी है।
1: नमस्कार साथियों, हम आज बात करेंगे इकोलॉजिकल हेरिटेज के बारे में और इस संदर्भ में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं इरम, जो कि जर्नी टू रूट्स के फाउंडर हैं और हम इन्हें आत्मीय के नाम से भी जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: शुक्रिया कनिका मुझे अपने स्टूडियो में बुलाने के लिए।
1: तो सबसे पहले आप हमें बताएं कि इकोलॉजिकल हेरिटेज है क्या।
2: इकोलॉजिकल हेरिटेज को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे पुरानी बिल्डिंग्स को हम हेरिटेज का नाम देते हैं, उसी तरीके से 100 साल पुराने वृक्ष को हमें हेरिटेज मानना चाहिए, क्योंकि वो एक इतिहास को अपने साथ लेके चल रहा है जो कि हमारी इकोलॉजी का इतिहास है। और अगर हम उस सॉइल की स्ट्रक्चर को समझेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता चलेंगी जो बायोलॉजिकली हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट रही होंगी, उसकी एक बायोलॉजिकल लेयरिंग हुई होगी, एक हिस्ट्री रही होगी। तो वो एक इतिहास है जो कि हमारे इवोल्यूशन के लिए भी बहुत जरूरी है, और जितनी स्टडीज की जाती हैं उसमें इसी तरीके की चीजों की स्टडी करके हमें एहसास या पता चलता है कि हम किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, जो कि डेवलपमेंट के चलते हुए हमने देखा है कि हमारा इकोलॉजिकल हेरिटेज जितनी तेजी से खत्म हुआ है उतना मुझे लगता है कि नॉर्मल हेरिटेज भी नहीं हुआ। हम अपनी बिल्डिंगें बचा लेते हैं मगर इकोलॉजी या पेड़ों को या फिर बायोडाइवर्सिटी के को लेकर हमारी सजगता उतनी नहीं है।
1: आप हमें बताएं कि ये इकोलॉजिकल हिस्ट्री में हमें इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, हम इसके बारे में कैसे जान सकते हैं।
2: बिल्कुल, इकोलॉजिकल हेरिटेज अगर हम देखेंगे, क्योंकि हम भारतीय भी हैं और हम प्रकृति से जुड़े, तो वैसे पूरे विश्व में ही लोग प्रकृति से जुड़े हुए थे, इसीलिए सर्वाइव किए हैं इतने सालों तक हम लोग। हमारी जितनी भी ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वो प्रकृति के साथ एक समन्वय में थी और वैसे ही हमारी भी संस्कृति रही है। तो आप देखेंगे ये ब्रिज क्षेत्र है हमारा, तो यहाँ पे वनों की बात की गई है, 12 वन बताए गए हैं और 24 उपवन थे हमारे। और इन वनों के अंदर हम बहुत अच्छे से देखते हैं कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां थीं और बड़े घने वन थे और एक अपना इकोलॉजिकल सिस्टम था उस पूरी चीज के अंदर। और इन वनों के अंदर यदि ये प्रजातियां एग्जिस्ट करती हैं तो उसके लिए जो भी पक्षी और दूसरे प्रकार का जो फौना होता है, जिसमें स्नेक्स भी हैं, तमाम सारी चीजें हैं, वो सब उसके अंदर थी। तो ये एक हमारे ग्रंथों में, हमारी कथाओं में इसको बहुत कहा गया है। जैसे हम कदम की बात करते हैं, कदम के पेड़ की, वो कृष्ण भगवान से जुड़ा हुआ पेड़ है ना। इसी तरीके से जब हम टेसू के फूलों की बात करते हैं, द होली हमारे लिए टेसू के फूल का एक महत्व है उसका। और ऐसी कई चीजें हैं जो कि हम अपनी कथाओं में सुनते हैं तो हमें पता चलता है कि ये वन थे और यही हमारा एक तरीके से इकोलॉजिकल हेरिटेज का प्रमाण है।
1: जी, तो अभी आपने जाना कि कदम का पेड़ और ये टेसू के फूल, हमने इसके बारे में अक्सर सुना है लेकिन ये वाकई काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब मेडिवल हिस्ट्री का टाइम पीरियड आता है तो उसमें हमें किस प्रकार उल्लेख मिलता है।
2: मेडिवल हिस्ट्री में हमें इसके बाद रिकॉर्डेड बहुत अच्छी तरीके से मिलती है जहांगीर के टाइम की हिस्ट्री। और आप तमाम सारे देखिएगा, आप अगर आखिरी कुछ पेंटिंग्स बची रह गई हैं, आराम बाग जो जगह है जिसको जहां नारा बाग भी कहा जाता है, आजकल आप रामबाग के नाम से उसको जानते हैं, तो अगर वहां पे उस मॉन्यूमेंट के अंदर जाएंगे तो कुछ ही पेंटिंग्स आपको देखने को मिलेंगी। तो वहां खूब अच्छी तरीके से जो पेंटर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से एवियन फौना को, खास तौर पे पक्षियों को बहुत दिखाया है। इनफैक्ट उस्ताद मंसूर की जो पेंटिंग्स हैं बड़ी फेमस हैं जहांगीर के समय में, और आप उसके बाद आप उनको देखते हैं एतमादुद्दौला में भी, उन पेंटिंग्स को आप देख सकते हैं। तो वहां पक्षी भी हैं और वहां पेड़ भी हैं। पक्षी इसलिए आपको देखने को मिलते हैं, बड़ी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलती हैं। डोडो पक्षी का नाम सुना होगा आपने, ये विलुप्त पक्षी है, हम बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डोडो विलुप्त हो गया, मगर उसकी कलर्ड पेंटिंग उस्ताद मंसूर के उसमें मिलती है आपको। तो वो एक हमारा एक हेरिटेज उस जमाने का हो गया, यहाँ का नहीं है वो पक्षी मगर उसको पहचानते थे। इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि बाहर से क्या क्या चीजें भारत आती होंगी। जेब्रा हमारे क्षेत्र का नहीं है मगर वो भी आता था वहां पे। मगर इसके अलावा मंसूर साहब की जो

0: पेंटिंग है, उसके अंदर आप देखते हैं सारा स्क्रीन को देखते हैं, एक बार्बेट पक्षी होता है। हमारे क्षेत्र में कॉपर स्मिथ बार्बेट मिलती है या फिर ब्राउन हेडेड मिलती है, मगर एक ब्लू थ्रोट बार्बेट का पेंटिंग है जो हिमालय में मिलती है, वो उस्ताद मंसूर की पेंटिंग्स में आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा कई सारे जो ट्यूलिप्स हैं, चमेली, बहुत सारी, क्योंकि मुगलों के टाइम पे बागों का बहुत प्रचलन था और खूब बाग बनाए गए हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं देखने के लिए, और उसका बड़ा अच्छा बल्कि चित्रण आपको देखने को मिलता है, ना सिर्फ सुनने में। इसके बाद आप नज़ीर अकबराबादी कुछ पोएम्स के अंदर यहाँ के लोकल पेड़, इनफैक्ट उन्होंने तो समझ लीजिए जो छिपकली या मेंढक जैसी चीज़ों को भी मैंशन कर दिया अपनी पोइट्री में, तो वहाँ से आपको तीतर, बटेर, कोयल, पपीहा, बहुत कुछ आपको सुनने को मिलेगा, पेड़ों के बारे में सुनने को मिलेगा, फलों के बारे में सुनने को मिलता है
1: जी। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऐसा काफी कुछ है जो मेरे आसपास अभी तक नहीं देखा है, और जिससे मुझे समझ में आता है कि हमारी जो वर्तमान स्थिति है वो वाकई काफी चैलेंजिंग स्टेट में है। तो अब अगर हम आगे इसको बचाने के लिए कुछ करना चाहें तो हम क्या कर सकते हैं?
0: सबसे पहले इस वक्त सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको खास तौर पर आप बागों में लेके जाएं और अपना जो लोकल फौना और फ्लोरा है उसके बारे में उनको बताएं, सिखाएं। आपको बताना पड़ेगा कि अंकुल का पेड़ कौन सा है, अशोक का पेड़ कौन सा है, नीम का पेड़ कौन सा है, नीम और चलिए पीपल पहचान भी जाते हैं, आंवला कहाँ से आता है, हमें बकायदा बच्चों को दिखाना होगा आंवला के पेड़ कहाँ पर है, इमली कहाँ पर है, छोकर कहाँ पर है, गुलर हुआ करता था हमारे क्षेत्र के अंदर, हमारे क्षेत्र में खीरनी हुआ करती थी, बेलपत्र का जो जूस पीते भी हैं हम लोग, जो उसको घर में निकाल लेते हैं, नारंगी, नींबू उगते कहाँ पर हैं, ये सब चीज़ें हमारे बच्चों को नहीं मालूम है, उनको पेड़ों को दिखाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी लोकल कुछ चीज़ थी, जैसे बबूल की हम बात करते हैं, बबूल बबूल पैसे वसूल पहले आता था, हमारा जो अपना बबूल था जो आज भी है वो बहुत अच्छा है हमारे लिए, तो वो हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ हैं इनके लिए बात करना और इनके लिए लोगों को जागरूक करना और ख़ास तौर पे बच्चों को वहाँ लेके जाना और सिखाना बहुत ज़रूरी है
1: जी। तो मैं आपसे चाहूँगी कि आप आखिर में हमारे सभी श्रोतागण से कुछ कहना चाहें तो आप।
0: आगरा के सारे लोगों के लिए इससे मेरी इल्तिजा है कि पहले, सबसे पहले तो ये तो एक चीज़ होती है कि आप नए पेड़ लगा रहे हैं, बहुत सारे लोग जागरूक हो गए हैं, इस बार तो बहुत पेड़ लगे हैं, लोगों ने बड़ी कोशिश करी है, गर्मी हो रही है तो हमें लगता है, मगर पुराने पेड़ जितने कट रहे हैं आप समझ लीजिए, पुराने पेड़ के कटने का मतलब ही ये है कि वो पेड़ जितना कार्बन विस्थापित कर रहा होगा वो छोटा पेड़ नहीं कर सकता, एक छोटे से बच्चे से आप वजन नहीं उठवा सकते ना, उसी तरीके से एक बड़ा पेड़ जितना आपकी सांसों के लिए अच्छा है उतना एक छोटा आप बच्चा लगा देते हैं आप सोचते हैं 10-20 साल में बड़ा हो जाएगा, मगर जो एक बड़ा पेड़ किसी ने काट दिया, डेवलपमेंट के चलते काट देते हैं, घर बन रहा है तो काट देते हैं, रोड बन रहा है तो काट देते हैं, कोई भी बड़ा निर्माण हो रहा है तो काट देते हैं, बचाइए, रोकिए, आवाज उठाइए, लिखिए अपनी सरकारों को, पूछिए सवाल कि ये पेड़ क्यों काटे गए, क्योंकि ये आपकी सांसों पे टोल है, और ये बहुत बड़ा झूठ है कि हम कहते हैं कि हमारा जो EQI, जरा घर से रोज चेक करा कीजिए बाहर निकलते वक्त कि कितने EQI में सांस लेने जा रहे हैं आप, 20 सिगरेट तक का धुआं आप प्रतिदिन ले रहे हैं, आप धूम्रपान नहीं भी कर रहे हैं तो भी कर रहे हैं उस चीज को, तो ये इकोलॉजिकल हेरिटेज का लॉस तो है ही है, ये हमारे जीवन के ऊपर भी आन पड़ी है, तो अगर आप धुएं भरे कमरे में नहीं बैठ सकते हैं तो बाहर जब जा रहे हैं और फिर उस पर हम योगा और कपालभाति भी करते हैं, हम ये समझते हैं कि बड़े स्वस्थ काम कर रहे हैं, मगर गंदी हवा को तेजी से आप जब ले रहे हैं तो वो आपको कोई बचा नहीं रहा है, प्राणायाम उल्टा हो जाएगा आपके साथ में, तो जिस हवा में आपको सांस लेनी है उसको बचाने की तो कोशिश कीजिए पहले हवा को, तो ये बहुत जरूरी है। फिर नेटिव पेड़ों के नाम भी नहीं पता लोगों को, लोकल फलों के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं, उसके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि अपने बच्चों को जोड़िए इस चीज से, और खास तौर पे रोकिए पुराने पेड़ अगर कट रहे हैं तो नए पेड़ लगाइए
1: जी। बहुत बहुत धन्यवाद इरम हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुमूल्य जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो दोस्तों आप भी ये प्रण लें कि आप इस इकोलॉजिकल हेरिटेज को बचाएंगे। धन्यवाद।
2: तो दोस्तों आपने सुनी ये विशेष बातचीत जिसमें कनिका सिंह ने इरम खान से इकोलॉजिकल हेरिटेज कंजर्वेशन जैसे विषय पर बात की। उम्मीद है इस बातचीत ने आपको ये सोचने पर जरूर प्रेरित किया होगा कि विकास और संरक्षण दोनों का संतुलन कितना हमारी कला, संस्कृति और परंपराओं की भी होती है। और जब

बात भारतीय विरासत की हो तो हमारे देश के हाथों से बुने वस्त्र यानी हैंडलूम की पहचान पूरी दुनिया में अलग ही दिखाई देती है। भारत के अलग अलग राज्यों की बुनाई अपने आप में एक कहानी कहती है, कई घरों की कहानी, कहीं परंपराओं की कहानी तो कहीं मेहनत और हुनर की। और इसी भारतीय कला और शिल्प को वैश्विक मंच तक पहुंचाने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय द्वारा एक विशेष पहल शुरू की गई है, विश्व सूत्र, वीवीज ऑफ इंडिया फॉर द वर्ल्ड। दोस्तों, ये पहल को राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान यानी NIFT के सहयोग से तैयार किया गया है। इस अनोखी पहल के तहत देश के हर राज्य की अलग अलग हैंडलूम बुनाइयों को शामिल किया गया है। खास बात पता है क्या है कि इन भारतीय बुनाइयों को दुनिया के 30 देशों की डिजाइन प्रेरणाओं के साथ जोड़कर एक आधुनिक और वैश्विक रूप दिया गया है। जैसे अभी उड़ीसा की ईकट बुनाई को ग्रीक शैली से जोड़ा गया, बनारसी वस्त्रों को UAE की डिजाइनों से प्रेरणाओं से जोड़ा गया, कांचीपुरम सिल्क को नॉर्वे की डिजाइन लाइन से जोड़कर प्रस्तुत किया गया। तो दोस्तों, ये पहल वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल की सोच को आगे बढ़ाती है और प्रधानमंत्री के 5F विजन को भी, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉरेन को भी दर्शाती है। साथ ही हमें याद भी दिलाती है कि भारतीय हैंडलूम सिर्फ कपड़ा नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक पहचान, कारीगरों की मेहनत और आत्मनिर्भर भारत की शक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, ये तो बात रही विश्व सूत्र पहल की, लेकिन दोस्तों सूत्र शब्द का अर्थ जीवन के कई पहलुओं से जुड़ा जा सकता है। सूत्र दुनिया का सहयोग, संवाद और साझा विकास के सूत्र में बांधने की सोच है। और सच कहें तो आज का समय ऐसे ही अनोखे मेल का समय है, जहां एक तरफ प्रकृति है, दूसरी तरफ तकनीक, और अब दोनों के बीच की दूरी भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। पहले लोग कहते थे कि पेड़ पौधे सिर्फ छाया, फल और ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन दोस्तों विज्ञान अब उनसे कई आगे की बात कर रहा है, इतनी आगे की कि आने वाले समय में पौधे सिर्फ ग्रीनरी नहीं बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी का हिस्सा भी बन सकते हैं। और इसी दिलचस्प सोच से जुड़ा है आज का हमारा अगला विषय, साइबॉर्ग बॉटनी। दोस्तों, साइबॉर्ग बॉटनी विज्ञान का एक नया और रोचक क्षेत्र है जिसमें पौधों और तकनीक को आपस में जोड़ने पर काम किया जाता है, यानी ऐसे पौधे विकसित करना जो सिर्फ प्राकृतिक ना रहे बल्कि तकनीकी क्षमताओं से भी लेस हों। उदाहरण के तौर पे वैज्ञानिक ऐसे पौधों पर शोध कर रहे हैं जो वातावरण में मौजूद प्रदूषण को पहचान सकें, क्योंकि आप और मैं पूरी तरह वाकिफ हैं कि प्रदूषण ने तो हाल बेहाल कर रखा है। वैज्ञानिक मिट्टी की स्थिति की जानकारी दे सकें ऐसे पौधों पर भी काम कर रहे हैं और फिर छोटे छोटे सेंसर की तरह काम कर सकें। सोचिए, एक ऐसा पौधा जो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं दे बल्कि ये भी बता दे कि आसपास का वातावरण कितना सुरक्षित है। अब तक तो हम यही सुनते आए हैं कि पेड़ों से बात करो मन शांत होगा, लेकिन भविष्य में शायद पेड़ ही हमें जवाब देने लगेंगे। हालांकि ये तकनीक अभी शोध और प्रयोगों के स्तर पर है, लेकिन ये दिखाती है कि विज्ञान किस तरह प्रकृति के साथ मिलकर नए समाधान खोज रहा है। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं ये विषय हमें ये सिखाता है कि भविष्य सिर्फ मशीनों का नहीं होगा बल्कि प्रकृति और तकनीक के संतुलन का भी होगा। और अब आपके मस्तिष्क के संतुलन के लिए ये प्यारा सा गीत आप सभी के लिए।

स्वागत है दोस्तों आपका हमारे कार्यक्रम में। अब तक की बातचीत में हमने देखा कि कैसे दुनिया बदल रही है। कहीं प्रकृति और तकनीक साथ आ रहे हैं, कहीं देश आपस में जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कहीं इंसानियत लोगों को एक दूसरे के करीब ला रही है। लेकिन इन सब के बीच एक चीज़ और है जो हम सबको रोज़ जोड़ती है, सड़कें। वही सड़कें जिनसे होकर कोई अपने सपनों की ओर जाता है, कोई अपने परिवार से मिलने तो कोई अपने काम की तरफ। मज़ेदार बात पता है क्या है कि सड़क पर हर इंसान जल्दी में होता है। लाल बत्ती होते ही हमारा धैर्य तो गायब ही हो जाता है। लेकिन सड़क पर सिर्फ गाड़ी नहीं चलती दोस्तों, जिम्मेदारियां भी साथ चलती हैं, क्योंकि हमारे

एक छोटी सी लापरवाही किसी और के घर की चिंता बन सकती है। और शायद इसी सोच के साथ आज से शुरुआत हो रही है संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह की। ये सप्ताह हमें याद दिलाता है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ नियमों का पालन नहीं बल्कि जीवन के प्रति सम्मान है। हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना, मोबाइल से दूरी रखना, धैर्य के साथ वाहन चलाना, ये छोटी बातें सुनने में तो सामान्य लगती हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं से बड़ी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। क्योंकि देश सिर्फ सीमाओं से मजबूत नहीं होता, देश मजबूत होता है अपने नागरिकों की समझदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से। और जब हम सड़क पर संयम रखते हैं, किसी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने वतन को भी सुरक्षित

दूरी रखना, धैर्य के साथ वाहन चलाना। ये छोटी बातें सुनने में तो सामान्य लगती हैं दोस्तों, लेकिन इन्हीं से बड़ी दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। क्योंकि देश सिर्फ सीमाओं से मजबूत नहीं होता, देश मजबूत होता है अपने नागरिकों की समझदारी, संवेदनशीलता और जिम्मेदारी से। और जब हम सड़क पर संयम रखते हैं, किसी की सुरक्षा का ध्यान रखते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने वतन को भी सुरक्षित बना रहे होते हैं, क्योंकि आखिर ताकत वतन की हमसे है। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हर विषय ने आपको कुछ नया सोचने, समझने और महसूस करने का अवसर दिया होगा। आज हमने बात की मानवता की, पर्यावरण संरक्षण की, वैश्विक सहयोग की, विज्ञान और तकनीक की, और सबसे ज़रूरी हमारी सामाजिक जिम्मेदारियों की। क्योंकि बदलाव हमेशा बड़े मंचों से नहीं, छोटी छोटी हमारी आदतों और संवेदनशील सोच से होता है। और अब समय हो चुका है आज के सवाल का जवाब का। हमने आपसे पूछा था रेड क्रॉस संगठन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी, तो इसका सही उत्तर है हेनरी ड्यूना ने। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन का संस्थापक माना जाता है। तो सभी श्रोताओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी, हमें सुना। और इसी तरह जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने आसपास के लोगों के लिए संवेदनशील बनिए। मैं हूँ रोशनी शर्मा और अब आपसे अनुमति चाहूँगी। जल्द ही फिर मुलाकात होगी कुछ नए विषयों, जैसे आज की हमारी बातचीत मानवता की थी, पर्यावरण संरक्षण की थी, वैश्विक सहयोग की थी, विज्ञान और तकनीक की थी। ऐसे ही जीवन के अनेक पहलुओं की और बातचीत के साथ, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ हम आपसे ज़रूर फिर मिलेंगे। रोज़ाना हमारे प्रोग्राम को, युववाणी को अपनी सहभागिता, अपना प्यार, अपना समय देते रहिए।

तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सड़क पर संयम रखिए और जीवन में इंसानियत बनाए रखिए। आज की इस बातचीत से आपको उम्मीद है बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नमस्कार।

अभी आपने सुना युवा श्रोताओं का दैनिक कार्यक्रम युववाणी 1530 किलोहर्ट्ज़ और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। संध्या के 6 बज चुके हैं, अब आप सुनेंगे किसान भाइयों का दैनिक कार्यक्रम ग्रामीण लोक।

कितना नीरस बेरंग होता। मित्रों, हमने अपने सुख दुख, आशा निराशा, शांति साहस को भी रंगों से ही तो दर्शाया है। यहां तक कि खतरे या संकट को दिखाने के लिए भी लाल रंग को चुना। लेकिन मित्रों, सफेद रंग के ऊपर लाल रंग से बना क्रॉस का चिन्ह, जिसे जिनेवा क्रॉस भी कहा जाता है, ये प्रतीक है सुरक्षा और मानवीय सहायता का, खासकर युद्ध या आपदा के समय। मित्रों, रेड क्रॉस का प्रतीक मात्र एक चिन्ह नहीं, बल्कि सबसे कठिन समय या युद्ध आपदा में भी सुरक्षा, निष्पक्षता और मानवता का वादा है। रेड क्रॉस चिन्ह उद्देश्य चिकित्सा कर्मियों को उनके वाहनों की पहचान कराना है, ताकि युद्ध के दौरान भी इन रेड क्रॉस वाहनों और कर्मियों को सुरक्षा मिल सके, जिससे कि वो पीड़ित व्यक्तियों तक निर्भय होकर सहायता पहुंचा सके। मित्रों, विश्व रेड क्रॉस दिवस आज ही के दिन 8 मई को मनाया जाता है। यह दिन समर्पित है मानव सेवा, दया और सहायता को। विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने का उद्देश्य है लोगों को मानवता की सेवा के लिए प्रेरित करना और रेड क्रॉस संस्था के कार्यों के प्रति जागरूक करना। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हेनरी ड्यूडन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जो रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक थे और उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार भी मिला था। साथियों, ये संस्था बिना किसी भेदभाव के मानव सेवा का कार्य करती है। रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य सेवाएं, प्राथमिक उपचार, प्रशिक्षण तथा आपदा राहत कार्य इसके प्रमुख कार्य हैं। साथियों, विश्व रेड क्रॉस दिवस हमें मानवता, सहयोग और सेवा का संदेश देता है। तो साथियों, हमें भी जरूरत लोगों की सहायता करने और समाज में प्रेम एवं भाईचारे की भावना बढ़ाने की कोशिश करते हुए जीवन को सार्थक बना प्रभु स्मरण करने की है।

ग्रामेलो कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी भाइयों बहनों को आपकी रेडियो साथी ऋतुजा का राम राम नमस्कार। हमारे जीवन में रंगों का एक

0: साथियों, जब भी कड़ी धूप में मेहनत के बाद हल्की सी छां नसीब हो जाती है और ठंडा जल गले उतरता है तो लगता है जीवन का असल रस यही है, और तब हमें जल में ही जीवन नजर आता है। मित्रों, जल केवल हमारी जरूरत नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों का अधिकार भी है। लेकिन आज बढ़ती जनसंख्या, प्रदूषण और पानी की बर्बादी के कारण जल संकट गंभीर समस्या बनता जा रहा है। नदियां, तालाब और भूजल धीरे धीरे सूख रहे हैं, और मित्रों, यदि हमने अभी से जल को संजोया नहीं तो आने वाले समय में पीने के पानी की भारी कमी का सामना हम सभी को करना पड़ेगा। इसलिए मित्रों, आज से और अभी से हमें पानी के उपयोग की जरूरत को सीमित करने की आदत डालनी होगी और वर्षा जल संचयन तकनीक अपनानी होगी, और खेती में भी पानी की बचत के उपाय जैसे कि टपक सिंचाई या छिड़काव सिंचाई की तकनीकों को अपनाना होगा। क्योंकि जल है तो जीवन है, और तभी हमारा समृद्ध कल है। और साथियों, जल सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, हमारे पशुओं के लिए भी उतना ही जरूरी है। और अभी गर्मियों का मौसम है और इन दिनों पशुओं को भरपूर जल के साथ पौष्टिक चारा मिल सके, इसके लिए भी उनके भूसे को पौष्टिकता से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि पशुओं की अच्छी सेहत ही हमारी समृद्धि का आधार है। तो साथियों, भूसे को पौष्टिक कैसे बनाया जा सकता है, आज इसी विषय में हमें विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। तो चलिए सुनते हैं ये वार्ता, भूसे की पौष्टिकता कैसे बढ़ाए।
1: वर्तमान परिदृश्य में विश्व के अन्य देशों की अपेक्षा हमारे देश में पशु संख्या सबसे अधिक है तथा हमारी जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक हो चुकी है, जिससे भविष्य

0: में निरंतर बढ़ती जनसंख्या को खाद्यान्न आपूर्ति में प्राथमिकता देने से निश्चित ही पशु चारे की समस्या उत्पन्न होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है कि संकर या अच्छी नस्ल के पशुओं को पर्याप्त मात्रा में पोषक पदार्थ न मिलने के कारण उनका दुग्ध उत्पादन कम रहता है। अतः आवश्यकता है कि कृषि भूमि में खाद्य पदार्थों के उत्पादन के साथ साथ पशु चारे की खेती को भी महत्व दिया जाए, जिससे पशुओं को वर्ष भर हरे चारे की उपलब्धता कराई जा सके। चूंकि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए ऐसा होना संभव प्रतीत नहीं होता, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पशुपालन के माध्यम से यूरिया उपचारित भूसा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पशुपालन विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना के सौजन्य से स्वयं सहायता समूह सदस्यों एवं पशुपालकों के समक्ष भूसा को यूरिया से उपचारित कर उसकी पौष्टिकता बढ़ाने संबंधी प्रशिक्षण पशु चिकित्सक के माध्यम से कराया जाता है। क्योंकि खाद्यान्नों के उत्पादन में जो बायो प्रोडक्ट्स बचते हैं उन्हें पशुओं को खिलाया जाता है और इन बायो प्रोडक्ट्स की पाचकता एवं पोषकता काफ़ी कम होती है तथा पशु इन्हें चाव से खाते भी नहीं हैं, जिससे पशु में आवश्यक तत्वों विशेषकर प्रोटीन की कमी रहती है। प्रोटीन की कमी को पूर्ण करने हेतु पशुपालक अपने पशुओं को रातब देते हैं, जो काफ़ी महंगा पड़ता है। अतः आवश्यकता है कि हरे चारे की अन्न उपलब्धता की दशा में गेहूं के भूसे तथा धान के पुआल की पौष्टिकता बढ़ाई जाए, जिससे पूरे वर्ष हरे चारे की कमी को पूरा किया जा सके। पशुपालक यह ध्यान रखें कि गेहूं का भूसा तथा धान का पुआल पशु के लिए स्वाद रहित व प्रोटीन रहित होता है, परंतु यदि इसे यूरिया द्वारा वैज्ञानिक विधि से उपचारित कर दिया जाए तो स्वादिष्ट, पचनीय व प्रोटीन युक्त बनाया जा सकता है। भूसे तथा पुआल को वैज्ञानिक विधि से पौष्टिक व सुपाच्य बनाने की विधि इस प्रकार है। यूरिया उपचारित भूसे को तैयार करने हेतु इस सामग्री की आवश्यकता होती है। भूसा अथवा पुआल 100 किलोग्राम, यूरिया 1.5 किलोग्राम, नमक आधा किलोग्राम, खनिज लवण मिश्रण आधा किलोग्राम, विटामिन मिश्रण 20 ग्राम, जल 10 लीटर, पॉलीथीन सीट 100 किलोग्राम, हजारा व झाड़ू एक एक। सर्वप्रथम जमीन पर पॉलीथीन सीट बिछाकर भूसे अथवा पुआल को उस पर भली भांति फैलाकर 2-3 घंटे तक सूखने दें। बीच बीच में हाथ या डंडे की सहायता से पलटा देते रहें ताकि भूसा पूर्ण रूप से सूख जाए। तत्पश्चात 10 लीटर पानी में यूरिया, नमक, खनिज मिश्रण एवं बीटा विलेन डालकर घोल तैयार करें और उसके आधे भाग को हजारे की सहायता से पॉलीथीन सीट पर पड़े सूखे भूसे अथवा पुआल पर इस प्रकार छिड़कें कि सारा भूसा इस घोल को सोख ले। 1 घंटे के उपरांत शेष आधे घोल को पुनः छिड़कें एवं बीच बीच में डंडे की सहायता से भूसे अथवा पुआल को ऊपर नीचे करते रहें ताकि घोल उसमें पूरी तरह मिल जाए। भूसे द्वारा घोल को सोख लेने के पश्चात उसे सादा भूसे में मिलाकर खिलाया जा सकता है। पशुपालक यह ध्यान रखें कि जितने उपचारित भूसे की उन्हें आवश्यकता हो वे बताई गई सामग्री उतने ही अनुपात में लेकर तैयारी करें, परंतु यदि पशुपालक उपचारित भूसे का भंडारण अधिक समय तक करना चाहते हैं तो वे सर्वप्रथम पूर्व से उपचारित किए गए भूसे अथवा पुआल को पैरों से भली भांति दबा दें ताकि उनके बीच मौजूद हवा निकल जाए। तत्पश्चात इसके ऊपर दूसरी, तीसरी, चौथी तह लगाएं तथा उसे 6% यूरिया लवण घोल में उपचारित करते रहें। इसके उपरांत पूरे भूसे को पॉलीथीन सीट से अच्छी प्रकार ढक दें तथा आवश्यकता हो तो ऊपर से गोबर या मिट्टी का लेप कर दें। क्योंकि गीला भूसा आमतौर पर सड़ने लगता है, परंतु उसमें यूरिया के छिड़काव से उत्पन्न अमोनिया गैस की उपस्थिति के कारण उसकी गुणवत्ता खराब नहीं होती है, बल्कि वह और अधिक मुलायम एवं स्वादिष्ट हो जाता है। 1 सप्ताह के पश्चात उपचारित किए गए चारे के ऊपर से पॉलीथीन हटा दें तथा भूसे को फैला दें ताकि गैस निकल जाए। इस उपचारित चारे को 6 माह तक भंडारित कर पशुओं को थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिया जा सकता है। पशुपालकों को उपचारित भूसे के संबंध में ये सावधानियां रखने की आवश्यकता होती है। उपचारित भूसे को सदैव साधारण भूसे के साथ खिलाएं। उपचारित भूसे को सदैव 6 माह की आयु से अधिक आयु वाले पशु को ही खिलाएं। ऐसे स्थान का चयन करें जहां धूप आती हो व पानी भरा न रहता हो। घोल को इस प्रकार छिड़कें कि कोई भी हिस्सा सूखा न रह जाए। उपचारित किए जा रहे भूसे अथवा पुआल को अच्छी प्रकार से ढकना पड़ता है ताकि उसमें उत्पन्न होने वाली अमोनिया गैस बाहर ना निकले। प्रारंभ में पशुओं को उपचारित भूसा थोड़ा थोड़ा दें, बाद में धीरे धीरे इसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। भंडारण से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि नमी की मात्रा 50% से अधिक ना हो। पशुओं को उपचारित भूसा देने से पूर्व उसे खुली हवा में रखें ताकि एकत्रित गैस उड़ जाए। इस विधि के अतिरिक्त पशुपालक एक अन्य विधि से भूसे को पौष्टिक बना सकते हैं, जिसमें भूसे को यूरिया, सीरा, तरल खाद्य द्वारा उपचारित कर उसकी पौष्टिकता कई गुना बढ़ाकर प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सकता है। इस विधि में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो इस प्रकार हैं: सीरा 93 किलोग्राम, यूरिया 2.5 किलोग्राम, खनिज लवण 1.5 किलोग्राम, नमक 0.5 किलो, विटामिन मिश्रण 25 ग्राम, पानी 25 लीटर। यूरिया सीरा तरल खाद्य का निर्माण पशुओं की संख्या पर निर्भर है, जिसे चारे की उपलब्धता एवं पशु संख्या के आधार पर बताए अनुसार अनुपात में घटाया व बढ़ाया जा सकता है। यह अवश्य ध्यान रखें कि हरे चारे की अल्पता में इस खाद्य में विटामिन मिश्रण अत्यंत आवश्यक है। इस खाद्य को सीमेंट या टिन की नाद, ड्रम आदि स्थानों पर बनाया जा सकता है। यूरिया सीरा तरल खाद्य के निर्माण हेतु सर्वप्रथम सीरे की मात्रा को तोलकर बड़े बर्तन या नाद में डाल दिया जाता है। यूरिया को पानी के साथ मिलाकर घोल तैयार करते हैं तथा इस घोल को धीरे धीरे सीरे में मिलाते हैं तथा उसे डंडे या बांस से लगातार चलाते रहते हैं। पूरी तरह घोल को सीरे में मिलाने के पश्चात उसमें खनिज लवण, नमक तथा विटामिन्स मिलाए जाते हैं तथा आधे घंटे तक डंडे की सहायता से चलाते रहते हैं। पूरी तरह मिश्रित हो जाने पर इस तरल खाद्य में सूक्ष्म पदार्थ की मात्रा 65% से अधिक होती है और इसे 4-5 सप्ताह तक प्रयोग किया जा सकता है, परंतु वर्षा ऋतु में इसका उपयोग 7 दिन के अंदर कर लेना अधिक ठीक रहता है। पशुपालकों को इसके उपयोग में ये सावधानियां रखनी चाहिए। यूरिया सीरा तरल खाद्य को भूसे में अच्छी प्रकार मिलाकर देना चाहिए। यूरिया व सीरा का अनुपात सही रखना चाहिए। प्रारंभ के दिनों में पशु को थोड़ी मात्रा में ही उपचारित भूसा दें, तत्पश्चात इसकी मात्रा प्रति पशु 4 किलो तक बढ़ाई जा सकती है। तरल खाद्य देने से पूर्व उसे अच्छी तरह मिलाया जाना चाहिए। तरल खाद्य को बरसात के दिनों में 7 दिन के अंदर अंदर प्रयोग कर लें। तरल खाद्य के साथ साथ पशुओं को 0.5 से 1.5 किलो दाना व 4 किलो हरा चारा भी दिया जा सकता है। इस प्रकार यूरिया से उपचारित कर तथा यूरिया सीरा से उपचारित कर भूसे की पौष्टिकता भी बढ़ाई जा सकती है तथा पशु आहार पर आने वाले खर्चे को पशुपालक कम भी कर सकते हैं व अपने पशुओं को पौष्टिक भूसा खिलाकर पौष्टिक तत्वों की कमी को पूरा कर सकते हैं।
1: साथियों, अभी आपने सुनी वार्ता भूसे की पौष्टिकता कैसे बढ़ाएं, और आज हमारे वार्ताकार थे डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह। और अब बात नई किस्मों के बारे में, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मूंग दाल के बीज की। मित्रों, मूंग दाल के नई किस्म के बीज के बारे में हम आपको बता दें कि 2026 में सबसे उन्नत नई किस्म MH 1142 और PDM 139 सम्राट, जो 60 दिन में तैयार हो जाती है, अब आ चुकी है। मूंग जन कल्याणी, जो लगभग 55 दिन में तैयार हो जाती है, वो भी अब हमारे किसान भाइयों के लिए उपलब्ध है। साथियों, ये किस्में पीला मोज़ेक वायरस के प्रति प्रतिरोधी हैं और कम समय में बम्पर पैदावार के लिए जानी जाती हैं। तो भैया, अपनाइए नए किस्मों के बीज और संवारिए अपनी तकदीर और गाइए झूम झूम कर हमारे साथ मिलकर लोकगीत।

साथियों, अब हम आपको मौसम में आज और कल के तापमान की जानकारी भी दे देते हैं। आज शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहा एवं न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। कल यानी शनिवार को अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की। और मित्रों, अब हम आपको मंडी भाव में कुछ खेती बाड़ी से जुड़ी सूचनाएं भी दे देते हैं। अब गेहूं क्रय केंद्रों पर आम दिनों की भांति रविवार को भी गेहूं खरीदा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP पर गेहूं खरीद के 47 केंद्र बनाए गए हैं। क्रय केंद्रों पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को खाद्य विभाग के पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना होगा। यहां 15 जून तक गेहूं खरीदा जाएगा। और साथियों, फार्म रजिस्ट्री के लिए भी अब कैंप लगाए जा रहे हैं। फार्म रजिस्ट्री के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे किसान भाई अपनी फार्म रजिस्ट्री करा सकते हैं। अन्यथा किसी स्थिति में सरकार की किसी भी योजना का लाभ हमारे साथियों को नहीं मिल पाएगा। खाद, बीज, किसान सम्मान निधि से लेकर अन्य योजनाओं के लिए यदि आप उनका लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको फार्म रजिस्ट्री कराना अनिवार्य है। और मित्रों, इसी के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए आपकी रेडियो साथी ऋतुजा को। नमस्कार।

अभी हमारे किसान भाई सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 6:30 होने को हैं। अब समय है कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

नमस्कार श्रमिक साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम मजदूर मंडल और मैं हूं आपकी रेडियो सखी मनीषा अरोरा, आपके साथ, आपकी बातों के साथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है रोज की भाग दौड़ में आपने अपने लिए कुछ सुकून के पल जरूर ही निकाल लिए होंगे। तो आ गई ना आपके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, और नहीं आई तो कोई बात नहीं, हमारी आज की ये मुलाकात हमारी बातें उसे फिर से वापस ले आएंगी। अच्छा साथियों, ये बताइए कि आज

सुबह घर से काम पर निकले थे तो किसी ने तो आपको मुस्कुराकर कहा होगा कि अपना ख्याल रखना, या जब आप जल्दी जल्दी घर से अपने काम के लिए निकल रहे होंगे तब शायद माँ ने एक रोटी हाथ में ही पकड़ा दी होगी और ये कहा होगा कि इसे खा जरूर लेना याद से, है ना? मित्रों, यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। और इसी जिंदगी में कभी कभी ऐसे पल भी आ जाते हैं जब किसी को हमारी या हमें किसी की जरूरत पड़ जाती है। सिर्फ एक मदद, एक सहारा, या फिर कहें एक छोटा सा कदम। आजकल अक्सर सड़कों पर एक्सीडेंट होते हैं जिनमें कभी कोई ना कोई घायल तो हो ही जाता है या फिर किसी को बहुत ज़्यादा चोट भी लग जाती है। और जब ज़्यादा चोट लगती है तो जाहिर सी बात है कि तब खून भी बहुत बह जाता है, तो ऐसे में व्यक्ति को खून की ज़रूरत पड़ती है। तो उस वक्त जो इंसान बिना सोचे आगे बढ़ता है वही तो असली हीरो कहलाता है। तो ऐसी ही इंसानियत को सलाम करने के लिए दुनिया भर में एक खास दिन मनाया जाता है, विश्व रेड क्रॉस दिवस, जो कि हर साल 8 मई को मनाते हैं। साथियों, ये दिन हमें याद दिलाता है कि मदद करने के लिए बड़ा होना कोई ज़रूरी नहीं होता, बल्कि बड़ा दिल होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंसानियत होना ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आजकल के समय में कभी कभी हमें देखने को नहीं मिलती। लेकिन जो हेनरी डोनेंट थे उनके विचार थे इतने उत्तम और इतने बड़े थे, और वो इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के संस्थापक भी थे। तो इस दिन उनका जन्मदिन भी होता है और इस दिन का उद्देश्य ही है लोगों में उदारता की भावना को बढ़ाना, सहानुभूति की भावना को बढ़ाना और निस्वार्थता की भावना को विकसित करना। इस अवसर पर हर व्यक्ति को शांति के लिए कुछ अच्छा करने को प्रोत्साहित किया जाता है। अब चाहे कोई युद्ध का क्षेत्र हो या फिर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित कोई भी इलाका क्यों ना हो, वहाँ पर जो स्वयं सेवक होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जाति और धर्म को देखे मानवता की सेवा करते हैं। ये गैर सरकारी संगठन होता है जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाता है। अगर रक्तदान की जरूरत होती है किसी को तो वो भी करते हैं, जरूरतमंदों की सेवा भी करते हैं। यही तो उद्देश्य है रेड क्रॉस का। इसकी स्थापना साथियों 1920 में की गई थी। साथ ही रेड क्रॉस के जो कार्यकर्ता होते हैं उन्हें आज के दिन सम्मानित भी किया जाता है, क्योंकि वो जो समाज सेवा करते हैं सबकी, निशुल्क मेडिकल कैंप लगाते हैं, रक्तदान शिविर का आयोजन करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए सम्मान तो बनता ही है। साथियों, ये आंदोलन आज लाखों लोगों को संकट की घड़ी में सहायता दे रहा है। हम सबको भी ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करेंगे, यही तो हमारा सच्चा धर्म है। तो क्यों ना आज हम भी एक छोटा सा वादा करें अपने आप से कि जहाँ भी मौका मिलेगा, जब भी मौका मिलेगा किसी की मदद के लिए तो हाथ ज़रूर बढ़ाएंगे। क्योंकि साथियों, हमारी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है। तो इसी प्यारी सी सोच के साथ अपना और अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही आनंद उठाइए इस गीत का भी। लेकिन उससे पहले पूछ लेते हैं आपसे आज का प्रश्न भी। जी हाँ, तो हमारा आज का प्रश्न है कि देखिए, हमने तो आपको रेड क्रॉस के बारे में ढेर सारी जानकारी दे दी, अब आपके लिए एक छोटा सा प्रश्न छोड़ना तो बनता ही है। बस आपको ये सोचकर बताना है कि रेड क्रॉस की स्थापना कहाँ हुई थी। हिंट चाहिए आपको? तो चलिए

थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। भारत में नहीं, बल्कि बाहर ही किसी देश में हुई थी। भाई अब इससे ज्यादा नहीं बता पाएंगे, और इसका उत्तर हम आपको कार्यक्रम के अंत तक देंगे, तो हमारे कार्यक्रम को पूरा जरूर सुनिएगा। तब तक सुनते हैं ये मधुर गीत।

अभी थोड़ी देर पहले हमने आपसे रेड क्रॉस दिवस पर ढेर सारी बातें की और उससे यही जाना कि मानव जीवन सबसे अनमोल है ना? भाई सड़क पर छोटी सी लापरवाही कई बार बड़े हादसे का कारण भी बन जाती है। तो ऐसे समय में कई लोग घायल लोगों की मदद करने से पीछे हट जाते हैं, डर जाते हैं, या यूं कहें कि उन्हें लगता है कि कौन ही इस झंझटों में फंसे, जबकि रेड क्रॉस जैसे

0: से जो संगठन होते हैं और जो स्वयं सेवक होते हैं, वो तुरंत मदद के लिए आगे आते हैं। ऐसे में वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह, जो कि 8 मई से 12 मई तक है, वो हमें याद दिलाता है कि घर से जो भी इंसान निकल रहा है, वो वापस सुरक्षित अपने घर लौटे। खासकर हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं, वो क्या होता है कि जब सुबह सुबह जल्दी होती है तो उन्हें जल्दी जल्दी काम पर निकलना होता है, और देर शाम तक थके हुए वो घर वापस लौटते हैं। तो ऐसे में जरा सी लापरवाही बड़ा हादसा बन सकती है। कई बार क्या होता है कि लोग घर जल्दी पहुंचने के चक्कर में गाड़ी तेज चलाने लगते हैं, गलत दिशा में वाहन भी मोड़ लेते हैं, और या फिर क्या होता है कि सड़क पार करते समय ध्यान ही नहीं देते। इसके अलावा हेलमेट नहीं पहनते, मोबाइल पर बात करते करते वाहन चलाते हैं, रेड लाइट जो होती है उसे भी क्रॉस कर जाते हैं। जैसे ये छोटी छोटी गलतियाँ जब वो करते हैं तो ये दुर्घटनाओं का कारण बन जाती है, और आपकी एक छोटी सी गलती पूरे परिवार की खुशियाँ छीन सकती है। तो साथियों, सड़क सुरक्षा का ये सप्ताह हमें सिखाता है कि कुछ मिनट बचाने से ज़्यादा ज़रूरी है अपनी जान को बचाना। तो फिर आइए विनोद कुमार अग्रवाल से भी जान लेते हैं यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा के बारे में।
1: भारत सरकार द्वारा सड़क पर सुरक्षित रूप से वाहन चलाने के लिए कुछ यातायात के नियम बनाए हैं, जिनका पालन करके यातायात में सावधानी रखी जा सकती है। आए दिन सड़कों पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिनमें रोज सैकड़ों व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होते हैं, सैकड़ों लोग घायल होते हैं और सैकड़ों लोग मरते हैं। ऐसा कोई भी दिन बाकी नहीं रहता है जब सड़क दुर्घटना के बारे में समाचार पत्र या न्यूज़ चैनल पर कोई खबर न प्रसारित हो। दुर्घटना के अधिकतर मामले ड्राइवरों की असावधानी व लापरवाही से होते हैं। आजकल छोटे बच्चे भी ड्राइविंग करते हैं, जबकि उन्हें यातायात की न तो कोई समझ होती है और न वह यातायात के नियमों का पालन ही करते हैं। अगर व्यक्ति सावधानी पूर्वक सड़क पर वाहन चलाए तथा यातायात के नियमों का पालन करे तो स्वयं व दूसरों को सुरक्षित रख सकते हैं। यातायात के नियमों का पालन करने के लिए कुछ नियम ऐसे हैं जिनका ध्यान रखना वाहन चालक के लिए अत्यंत आवश्यक है। सर्वप्रथम वाहन चालक को अपने वाहन को पार्किंग में इस प्रकार से खड़ा करना चाहिए जिससे दूसरे वाहन चालकों को वाहन पार्किंग में खड़ा करने में कोई असुविधा न हो। इसके अलावा जब भी वाहन चालक सड़क पर चलें, तब किसी भी वाहन चालक से प्रतिस्पर्धा न करें और बिना किसी उचित कारण के किसी व्यक्ति से वाहन आगे निकालने की रेस ही चलानी चाहिए। साथ ही वाहन चलाते समय हॉर्न का उपयोग आवश्यकतानुसार करना चाहिए। अधिक हॉर्न बजाने से वातावरण में ध्वनि प्रदूषण फैलता है। यातायात के नियंत्रण हेतु हमारी सरकारों द्वारा हर चौराहों पर यातायात पुलिस कर्मियों की व्यवस्था की है तथा हर चौराहों पर यातायात नियंत्रक, सूचक निवारण व नियंत्रण हेतु लाल, पीली, हरी लाइटें लगाई जाती हैं। हरी लाइट रास्ता पार करने के लिए निशान है तथा लाल निशान चौराहे पर रुकने के लिए निशान है। पीला निशान तैयार रहने के लिए हमें निर्देश देता है। इन सभी लाइटों से हर चौराहे पर भीड़ नियंत्रित होती है तथा जाम से छुटकारा मिलता है और यात्री सुगमता से चौराहों को पार करते हैं। यातायात नियंत्रण तथा वाहनों द्वारा की जाने वाली दुर्घटनाओं को रोकने हेतु भारत सरकार द्वारा मोटर यान अधिनियम 1988 बनाया है, जिसमें समय समय पर कई संशोधन किए गए हैं। इसी अधिनियम में यातायात नियंत्रण को भी परिभाषित किया गया है तथा यातायात के उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों व वाहन चालकों को उचित दंड दिए जाने की व्यवस्था की गई है। कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर किसी मोटर वाहन को अनियंत्रित गति से नहीं चलाएगा, परंतु ऐसी गति सेना या पुलिस द्वारा युद्धाभ्यास के दौरान खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने के मामलों में लागू नहीं होगी। यातायात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार या उसका प्राधिकृत कोई प्रतिनिधि मोटरयान अधिनियम की धारा 112 के अंतर्गत यातायात विनियमन के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक चिन्ह को सार्वजनिक स्थान पर लगाए जाने का अधिकार है तथा इस प्रकार लगवाए गए सार्वजनिक चिन्हों को चालन विनियमन प्रयोजन के लिए कुछ सड़कों को मुख्य सड़कों के रूप में भी विकसित किया जा

0: सकता है। राज्य सरकार द्वारा सुविधा अनुसार जगह जगह पर स्थानीय प्राधिकारियों से परामर्श कर पार्किंग हेतु ऐसे स्थानों का निर्धारण किया जाएगा जहां पर सार्वजनिक वाहन अथवा अन्य सभी प्रकार के वाहन एक निश्चित समय के लिए खड़े किए जा सकेंगे। धारा 119 के अनुसार कोई भी मोटर वाहन का प्रत्येक ड्राइवर किसी आज्ञापक चिन्ह द्वारा दिए गए चिन्ह के अनुरूप केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए चालन नियमों के अनुरूप चलाएगा तथा उन सभी नियमों का पालन करेगा जो किसी पुलिस अधिकारी द्वारा दिए जाएंगे जो उस समय किसी सार्वजनिक स्थल पर यातायात विनियमन करने के लिए लगा हुआ हो। कोई वाहन चालक बाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले ऐसे किसी मोटरयान को किसी सार्वजनिक स्थान में तभी चलाएगा जब उसमें विभिन्न प्रकार की यांत्रिक या विद्युत संकेतक लगी हुई हो और वह चालू हालत में हो या न हो। वाहन का ड्राइवर ऐसे संकेत ऐसे अवसर पर अवश्य करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा भेद किए जाए। इसी प्रकार दाईं ओर के स्टीयरिंग नियंत्रण वाले मोटरयान की दशा में यान में लगी प्रकृति की यांत्रिक या विद्युत युक्ति द्वारा दिया जाएगा। धारा 122 के अनुसार किसी मोटर वाहन का भार साधक किसी यान या ट्रेलर को किसी सार्वजनिक स्थान पर अपने वाहन को इस प्रकार से खड़ा नहीं करेगा जिससे सार्वजनिक स्थान पर यात्रा करने वाले यात्रियों को कोई खतरा बाधा अथवा असुविधा उत्पन्न हो। कोई भी व्यक्ति किसी मंजिली गाड़ी में बिना वैध टिकट के बिना पैसा चुकाए यात्रा करने का अधिकारी नहीं होगा तथा कोई भी वाहन चालक अपने वाहन में किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन में किसी ऐसे स्थान पर कोई वस्तु रखने से इनकार कर सकता है जहां पर सामान रखने अथवा खड़ा करने से वाहन के नियंत्रण में परेशानी पैदा हो। कोई भी वाहन चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना वाहन को बंद किए अथवा किसी सक्षम व्यक्ति को ड्राइवर सीट पर बैठाए बिना खड़ा नहीं करेगा। कोई भी दो पहिया चालक अपनी मोटरसाइकिल पर अपने अतिरिक्त एक व्यक्ति से अधिक व्यक्ति को नहीं ले जा सकेगा तथा दो पहिया वाहन चालक किसी सार्वजनिक स्थान पर बिना हेलमेट पहने वाहन नहीं चला सकेगा। कोई भी दो पहिया या चार पहिया वाहन चालक शराब पीकर वाहन नहीं चलाएगा। अगर कोई वाहन चालक शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसकी गाड़ी को सीज कर दिया जाएगा और चालक को पुलिस अभिरक्षा में उचित कार्रवाई भेज दिया जाएगा जहां न्यायालय द्वारा उसे आर्थिक या कारावासी दंड से दंडित किया जाएगा। कोई भी वाहन चालक दो पहिया या चार पहिया या अन्य व्यावसायिक वाहनों को बिना बीमा के नहीं चलाया जा सकेगा। किसी प्राधिकृत परिवहन या यातायात अधिकारी द्वारा वाहन का बीमा मांगने पर उसे प्रस्तुत करना होगा। अगर सड़क दुर्घटना होती है तो वाहन चालक को घायल व्यक्ति को स्वयं अथवा किसी के सहयोग से चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराएगा तथा थाने पर ऐसी सूचना देगा। इन सभी परिस्थितियों के द्वारा यातायात को नियंत्रित रखा जा सकेगा।
1: साथियों, अभी आप विनोद कुमार अग्रवाल से सुन रहे थे ये वार्ता जिसका नाम है यातायात के नियम और सड़क सुरक्षा। तो साथियों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमें हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, वाहन धीरे ही चलाना है, ओवर स्पीडिंग बिल्कुल नहीं करनी, और तो और अगर आप ड्राइविंग करते हैं जैसे कि आप कोई एक्टिवा चलाते हैं या कोई बाइक चलाते हैं तो हेलमेट पहनकर ही उसे चलाना है। भाई, इसमें ट्रैफिक पुलिस की नहीं बल्कि आपकी अपनी सुरक्षा छुपी है। वाहन को सावधानी से ही चलाएं क्योंकि कोई घर पर आपका इंतजार कर रहा होता है, ऐसा हमेशा याद रखें। भाई साथियों, आपको अपना ख्याल तो रखना ही है, फिर चाहे वो सड़क सुरक्षा के मामले में हो या फिर सेहत के मामले में। जी हाँ, क्योंकि जब आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो परिवार के साथ खुश रह पाएंगे। अब देखिए ना, गर्मी का मौसम तो चल ही रहा है। हाँ, वो बात अलग है कि बीच बीच में मौसम में हल्का सा बदलाव आ ही जाता है, कभी तेज हवाएं चलने लगती हैं तो कभी बूंदाबांदी होने लगती है, पर आज तो जो बादल गरजे और झमाझम बारिश हुई तो लगा कि आज तो पूरा दिन ऐसा ही मौसम रहेगा, पर भाई सूरज देवता ने आकर फिर से गर्मी बरसा दी और तो फिर मौसम फिर से गर्म हो गया। तो भाई ऐसे में सेहत का ध्यान तो रखना बनता ही है, तो फिर क्यों ना खीरा

ककड़ी खाना सेहत के लिए जो फायदेमंद होता है इसे खाना शुरू कर दें, क्योंकि इनको खाने से शरीर में पानी की कमी नहीं हो पाती। इससे हमारा पेट हल्का रहता है और ठंडा भी बना रहता है, और गर्मी भी कम महसूस होती है, क्योंकि इनकी तासीर ठंडी मानी जाती है। ये पाचन को भी बेहतर करने में काफ़ी मदद करते हैं। अगर आप इन्हें और स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इन्हें आप थोड़ा सा काट लीजिए और इसके ऊपर काला नमक डालिए और नींबू लगाकर अगर इसे आप खाएं तो भाई वाह, स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपको ताजगी भी मिलती रहेगी। इसीलिए साथियों, कोशिश कीजिए कि दिन में एक बार सलाद के रूप में आप खीरा, ककड़ी और टमाटर जैसी चीज़ें ज़रूर खाएं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी आदतें होती हैं ना, और ये आदतें भी कैसी हैं, अच्छी आदतें हैं, क्योंकि घर

0: को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र एआई कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी, मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं राघवेंद्र त्रिपाठी और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कल से डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के शुभारंभ के बाद स्वगणना की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी क्रम में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज ऑनलाइन माध्यम से जनगणना प्रक्रिया के प्रथम चरण को सफलतापूर्वक पूर्ण किया। इस अवसर पर उन्होंने अपील करते हुए कहा कि जनगणना देश के विकास की आधारभूत प्रक्रिया है और इसमें प्रत्येक नागरिक की भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। वहीं उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने भी आज अपना जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन भरा। उन्होंने लोगों से जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या भौतिक रूप से भरकर जल्द से जल्द जनगणना प्रक्रिया पूरी करने की अपील की।
1: देखिए, जनगणना का प्रथम चरण चल रहा है। मैं प्रदेशवासियों से अपील करता हूं कि सभी लोग जनगणना प्रपत्र ऑनलाइन या फिजिकल भर करके जनगणना की प्रक्रिया को शीघ्र शीघ्र पूरा करें। इससे जनगणना पूरी होकर के और आगे जो संवैधानिक कार्य हो पूरे हो सके। आज जनगणना प्रपत्र हमने ऑनलाइन भर दिया।
0: इसी क्रम में डुमरियागंज से सांसद जगदम्बिका पाल, पंचायती राज्य मंत्री ओम प्रकाश राजभर, कैबिनेट मंत्री कपिल देव अग्रवाल और विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी आज स्वगणना की प्रक्रिया पूरी की। लखनऊ स्थित यूनिसेफ कार्यालय में आज जनगणना संचालन क्षेत्रीय निदेशालय उत्तर प्रदेश ने यूनिसेफ के सहयोग से जनगणना 2027 स्वगणना पर सेंसस मैटर्स फॉर चिल्ड्रन विषय पर जागरूकता और क्षमता विकास सत्र आयोजित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश की मुख्य प्रधान जनगणना अधिकारी शीतल वर्मा ने बताया कि स्वगणना जनगणना 2027 का एक प्रमुख नवाचार है। यह देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज द्वारा प्रवक्ता संवर्ग के 18 विषयों के कुल 624 पदों के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन कल और 10 मई को किया जाएगा। परीक्षा प्रतिदिन 2 पालियों में आयोजित होगी, जिसमें कुल 4,64,605 अभ्यर्थी शामिल होंगे। आयोग के अध्यक्ष डॉ. प्रशांत कुमार ने आज 17 जनपदों के 319 परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की गहन समीक्षा की। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों के सभी कक्षों और महत्वपूर्ण स्थलों को एआई आधारित सीसीटीवी कैमरों से लैस करते हुए जिला कंट्रोल रूम और आयोग के इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड रूम से जोड़ा गया है। प्रदेश में संचालित स्मार्ट प्री पेड मीटर व्यवस्था को समाप्त कर सभी स्मार्ट मीटरों को पोस्ट पेड मोड में संचालित करने के संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिया गया है। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि आरडीएसएस योजना के अंतर्गत स्थापित सभी स्मार्ट मीटरों को तत्काल प्रभाव से पोस्ट पेड मोड में परिवर्तित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
2: प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने बताया कि अब मई 2026 की विद्युत खपत का बिल जून 2026 में पोस्टपेड प्रणाली के अंतर्गत जारी किया जाएगा और उपभोक्ताओं को बिल एसएमएस और व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्मार्ट पोस्टपेड बिल प्रत्येक माह की 10 तारीख तक जारी किए जाएंगे। जिन क्षेत्रों में नेटवर्क अथवा संचार संबंधी समस्या के कारण स्मार्ट मीटर की ऑटोमेटिक रीडिंग प्राप्त नहीं होगी, वहां एजेंसियों के माध्यम से मैनुअल रीडिंग लेकर समय से बिल उपलब्ध कराया जाएगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के वर्ष 2024 के आंकड़ों ने राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति को दर्शाया है। रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रीय क्राइम रेट 252.3 के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का क्राइम रेट 180.2 रहा। कुल अपराधों में उत्तर प्रदेश का देश में 18वां स्थान है। एक रिपोर्ट।
3: एनसीआरबी रिपोर्ट में हत्या के मामले में देश में यूपी का स्थान 29वां है, जबकि हत्या के प्रयास के मामलों में ये 26वें स्थान पर है। वहीं फिरौती के लिए अपहरण के मामलों में राज्य पूरे देश में सबसे नीचे 36वें नंबर पर है। दुष्कर्म के मामले में यूपी देश में 24वें स्थान पर है, जो राज्य में बेहतर हुई कानून व्यवस्था को बताता है। जेलों में

0: क्षमता और अनुशासन के मामले में भी यूपी का प्रशासन अन्य राज्यों से बेहतर है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने कहा कि ये सुधार सतत और सुविचारित प्रयासों का प्रतिफल है। पिछले 9 वर्षों में आधुनिक पुलिस स्टेशन, सतर्क एंटी रोमियो स्क्वाड, हर थाने पर समर्पित महिला हेल्प डेस्क, कमजोर वर्गों को त्वरित न्याय दिलाने वाले फास्ट ट्रैक कोर्ट और संगठित अपराधों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज स्थापित किया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। बुलंदशहर में आज नेशनल हाईवे 34 पर तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार पति पत्नी और उनके 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। हादसे की सूचना पर घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने सभी मृतकों के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। मौसम विभाग ने कल पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश का अनुमान जताया है। विभाग ने कई जगहों पर तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि आगामी 2 दिनों में मौसम साफ रहेगा। वहीं 10 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मध्य और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 12 मई से हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
2: 9 मई को जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ छिटपुट वर्षा होने की संभावना बुतलाई ट्रेल से छीटाकसी हो सकता है, बाकी उसके बाद मौसम साफ है। फिर से जैसा कि नया पश्चिमी विक्षोभ 10 से 11 तारीख से एक्टिवेट हो रहा है, जिसके वजह से 12 तारीख से पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल पार्ट में फिर से धीरे धीरे एक्टिविटी बढ़ेगी, हल्की बूंदाबांदी का दौर शुरू होगा।
1: आकाशवाणी ने राष्ट्र के प्रति अपनी विशिष्ट सेवा के 90 वर्ष के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की श्रृंखला के क्रम में आज राष्ट्रीय राजधानी में मैराथन का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
3: आकाशवाणी के व्यापक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क में इसी प्रकार के मैराथन और वॉकाथॉन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिससे 90वीं वर्षगांठ के समारोह के दौरान व्यापक जनभागीदारी और जागरूकता सुनिश्चित हो सके। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी ने कहा कि मैराथन के माध्यम से फिटनेस का संदेश जनता तक पहुँचाया जा रहा है।
4: इस साल 90 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आकाशवाणी में आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे पूरे देश में जितने भी स्टेशन हैं, जो देश में फिटनेस की एक मूवमेंट माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आरंभ हुई, उसका संदेश भी लोगों तक ले जाने के लिए ये उस कड़ी में एक कदम था।
3: आकाशवाणी के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने बताया कि आयोजन सार्वजनिक प्रसारक के रूप में आकाशवाणी द्वारा देश की सेवा में किए गए योगदान को दर्शाता है।
5: ब्रॉडकास्टर होने के नाते जब इस तरह का कार्यक्रम हम करते हैं तो इसका संदेश दूर दूर तक, सुदूर प्रदेश तक पहुँचता है और ये बहुत बड़ा उदाहरण होगा।
6: देश भर में जो हमारे 232 मुख्य केंद्र हैं उन पर ये आयोजन इस महीने आयोजित होगा।
3: अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रदेश भर में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन जनपद न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर और समस्त तहसीलों में किया जाएगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार लोक अदालत में पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकरवाद, उपभोक्ता मामले, बैंक रिकवरी सहित विभिन्न प्रकार के वादों का निस्तारण किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक सहित विभिन्न सांसदों और मंत्रियों ने स्वगणना प्रक्रिया पूरी की। सामाजिक आर्थिक आकलन के लिए सबकी भागीदारी को बताया जरूरी। प्रदेश में कल और 10 मई को होने वाली प्रवक्ता संवर्ग परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। परीक्षा केंद्र AI कैमरों से लैस, 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल। बुलंदशहर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत। और कल पूर्वी उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने 10 मई के बाद फिर से बारिश का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
1: मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:31:20 हुए हैं। आइए अब बात करते हैं डॉक्टर जेपी नारायण की, कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश में।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, अपने रेडियो दोस्त अली के साथ आकाशवाणी के आगरा केंद्र पर। आज हम बात करेंगे उस शख्सियत की जिन्होंने सत्ता की राजनीति से उठकर लोक शक्ति की बात की। जी हां, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर जयप्रकाश नारायण की, जिन्हें स्नेह से हम सभी जेपी भी कहते हैं। जेपी नारायण का जीवन एक साधारण व्यक्ति से लेकर भारत के राजनीतिक, सामाजिक और नैतिक पुनर्जागरण के प्रतीक तक की कहानी है। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा नामक गांव में हुआ। गांव गंगा और सरयू नदी के संगम पर बसा था। वैसे ही उनकी सोच भी परंपरा और क्रांति के संगम की प्रतीक बन गई। बालक जयप्रकाश ने बचपन से ही जिज्ञासा और न्याय प्रियता का भाव दिखाया। वो अपने आप से ही सवाल पूछते थे कि क्यों कोई अमीर है और क्यों कोई गरीब, और क्यों कुछ लोग दूसरों पर शासन करते हैं। यही सवाल आगे चलकर उन्हें देश की आजादी और समाज परिवर्तन के मार्ग पर ले गए। 1920 के दशक में जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका गए। वहां उन्होंने 7 साल तक मेहनत की, खेतों में काम किया, बर्तन धोए और साथ ही पढ़ाई भी की। उन्होंने समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और राजनीति की गहराई से पढ़ाई की। अमेरिका में रहकर उन्होंने समाजवाद, लोकतंत्र और समानता के सिद्धांतों को नजदीक से समझा। वो वहां से लौटे तो सिर्फ एक पढ़े लिखे युवक नहीं थे, बल्कि एक विचारक, एक क्रांतिकारी बन चुके थे।

साथ ही 1930 में जब जेपी भारत लौटे तो देश स्वतंत्रता संग्राम के उफान पर था। गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और हर युवा में देश के लिए कुछ करने की आग थी। जयप्रकाश नारायण ने कांग्रेस में प्रवेश किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि केवल सत्ता प्राप्ति से बदलाव संभव नहीं। उन्होंने समाजवादी विचारधारा अपनाई और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनका विश्वास था कि आजादी केवल राजनीतिक नहीं बल्कि आर्थिक और सामाजिक भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा था, जब तक अंतिम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आजादी अधूरी है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जयप्रकाश नारायण को कई बार जेल जाना पड़ा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उस समय जब नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा था, जेपी भूमिगत होकर आंदोलन को दिशा दे रहे थे। वो कहते थे, सत्ता से डरना नहीं चाहिए, अन्याय से डटकर लड़ना चाहिए।

दोस्तों ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कई महीनों तक जेल में बंद रखा, लेकिन वो टूटे नहीं। वो जेल की सलाखों के पीछे भी क्रांति के सपने बुनते रहे। स्वतंत्रता के बाद जब देश आजाद हो गया तो कई साथी राजनीति में सत्ता पाने लगे, पर जयप्रकाश नारायण ने अलग रास्ता चुना। उन्होंने सत्ता से दूरी बनाई और लोक सेवा को अपना मार्ग बनाया। उन्होंने सरकार से बाहर की राजनीति यानी लोकनीति की बात की। जेपी ने कहा था, राजनीति में नैतिकता का होना सबसे जरूरी है, वरना लोकतंत्र भी अधूरा रह जाएगा। उन्होंने सर्वोदय आंदोलन से जुड़कर समाज सुधार की दिशा में काम शुरू किया। वो विनोबा भावे के साथ भूमिदान आंदोलन में भी शामिल हुए, जिसमें किसानों को जमीन दिलाने का

प्रयास किया गया। 1970 का दशक भारत के लोकतंत्र के लिए कठिन समय था। सरकार में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, युवाओं में बेरोजगारी फैल रही थी और जनता निराश थी। इसी समय जयप्रकाश नारायण फिर सामने आए, इस बार एक बुजुर्ग क्रांतिकारी के रूप में। उन्होंने देश के युवाओं से आह्वान किया, संपूर्ण क्रांति लाओ। ये नारा केवल शासन परिवर्तन का नहीं था, ये एक नैतिक, सामाजिक और राजनीतिक क्रांति का आह्वान भी था। जेपी ने कहा था, यह आंदोलन केवल सरकार बदलने की बात नहीं, ये मनुष्य बदलने की बात है। 1974 में बिहार आंदोलन की शुरुआत हुई। छात्र, शिक्षक, मजदूर, किसान सब साथ आ गए। पटना के गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण की आवाज गूंजी, ये आंदोलन जनता का है और जनता ही असली मालिक है। उनके नेतृत्व में देश भर में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ एक नई चेतना जागी। लेकिन जब 1975 में आपातकाल लगाया गया तो जेपी को जेल में डाल दिया गया। वो बीमार थे लेकिन उनके विचारों ने पूरे देश को जगा दिया। उनका शरीर कमजोर हुआ पर आत्मा अडिग रही। आपातकाल के बाद जब लोकतंत्र की बहाली हुई तो जयप्रकाश नारायण का सपना कुछ हद तक साकार हुआ। जेपी का कहना था, मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे ऐसा भारत चाहिए जहां हर नागरिक को न्याय, समानता और सम्मान मिले।

दोस्तों, 8 अक्टूबर 1980 को इस महान विभूति का निधन हुआ, पर वो कोई व्यक्ति नहीं, एक विचार बन चुके थे, एक ऐसा विचार जो हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा कि लोक शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। जयप्रकाश नारायण ने हमें सिखाया कि सच्ची आजादी केवल झंडे में नहीं बल्कि विचारों में होती है। उन्होंने हमें याद दिलाया कि लोकतंत्र जनता के लिए है, ना कि कुछ लोगों के स्वार्थ के लिए। आज जब हम भ्रष्टाचार, असमानता और अन्याय की बात करते हैं तो हमें जेपी की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, उठो, जागो और अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण संघर्ष करो। जयप्रकाश नारायण का जीवन हमें यह सिखाता है कि एक सच्चा देशभक्त वही है जो सत्ता से नहीं सत्य से जुड़ता है। जयप्रकाश नारायण एक नाम, एक युग, एक विचार, देशभक्ति का ऐसा उदाहरण जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है।

अभी आपने सुना कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश, जिसमें हमने बात की जननेता जयप्रकाश नारायण की। एक 1530 किलोहर्ट्ज न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8 बजे हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम महफिले कव्वाली।

ये कव्वाली हमने ली थी फिल्म मुगले आजम से, जिसे लिखा था शकील बदायूनी ने, संगीत दिया था नौशाद ने और आवाज थी लता मंगेशकर और शमशाद बेगम की। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम महफिल कव्वाली। फिल्म दिल ही तो है कि इस कव्वाली को सुरों से सजाया है रोशन ने, रचना साहिर लुधियानवी की है और आवाज है आशा भोसले की।

ये कब वाली हमने ली थी फिल्म वक्त से, जिसे लिपिबद्ध किया था साहिर लुधियानवी ने। संगीतकार थे रवि और आवाज दी थी मनाडे ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। अगली प्रस्तुति फिल्म बरसात की रात से है, जिसके रचनाकार साहिर लुधियानवी हैं। संगीत

बाजू मेरे आजमाए हुए हैं और पह

फिल्म वीरदारा की इस कव्वाली के संगीतकार हैं मदन मोहन, गीतकार जावेद अख्तर और आवाज़ है अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन की।

अभी आपने सुना कार्यक्रम महफिल कव्वाली। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी आगरा। रात्रि के 8:30 होने को हैं। आइए अब आनंद लेते हैं चित्रपट संगीत का, जिसमें हम आपको संगीत के साथ ही देंगे अपने देश की कुछ रोचक जानकारी। दोस्तों, देशभक्ति और देश सेवा की भावना हर भारतीय के मन में कूट कूट कर भरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में एक छोटा सा गांव है माधोपट्टी। उस गांव के लोगों ने इस भावना को अपना सब कुछ माना है, क्योंकि यकीन मानिए इस छोटे से गांव में 50 से अधिक आईएएस आईपीएस और सिविल सेवा में अधिकारी हैं। क्यों है ना ये गजब तथ्य।

दोस्तों, वर्तमान में हर कोई पैसों के पीछे दीवाना है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब भारत आजाद हुआ और हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नियुक्ति हुई, तब उन्होंने अपनी तनख्वाह का सिर्फ आधा भाग ही लिया। उन्होंने कहा कि उनको उतने ही पैसों की आवश्यकता है। उनके 12 वर्ष के लंबे कार्यकाल के अंत में उन्होंने अपनी आय का केवल 25% ही लिया। उस समय राष्ट्रपति का वेतन मात्र 10,000 रुपए ही होता था।

दोस्तों, आज हम बड़े बड़े जहाज देखते हैं। इनका आकार इतना बड़ा भी होता है कि पूरा एक गांव समा जाए। लेकिन दुनिया में पहली बार नौकायन की कला का आविष्कार भारत में लगभग 6,000 वर्ष पहले महान सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था।

0: आप आनंद ले रहे थे चित्रपट संगीत का। 1530 किलोहर्ट्ज और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी लाने पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को चुना गया और श्री अधिकारी को निर्विरोध विधायक दल का नेता चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक।

0: है।
1: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, ये हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
0: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्शों पर राज्य का विकास करेगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संकेत मिल गया था कि भवानीपुर में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनाव में शिकस्त देने वाले शुभेंदु अधिकारी बंगाल की अगले मुख्यमंत्री की दौड़ में सबसे बड़े उम्मीदवार है। आखिरकार वही आजकल सच साबित हुए। परिषदीय दल के नेता चुने जाने के बाद शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ लेकर लोक भवन गए। उनके साथ दिलीप घोष, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सहित दल के कई केंद्रीय और राज्य नेता मौजूद थे। वहां राज्यपाल आरएन रवि के पास शुभेंदु ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया। सांविधानिक परंपरा के पालन करते हुए बहुमत का दावा पेश किया गया और इसके साथ ही कल ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए राज्यपाल को औपचारिक निमंत्रण भी दिया गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच दिन रात एक करके वहां तैयारी के काम चल रहा है। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, आईयूएमएल, वीसीके और वामपंथी दलों का समर्थन मिल गया है। वे कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 51 वर्षीय जोसेफ विजय ने आज तीसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से भेंट कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। एक रिपोर्ट।
3: दो दिनों तक चली बैठकों के बाद तमिल गवेत्री कड़गम टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, विदुथलाई चिरुथिगल काची, वीसीके और आईयूएमएल से समर्थन पत्र प्राप्त हो गए हैं। पार्टी ने सरकार बनाने के लिए आवश्यक 118 विधायकों का समर्थन हासिल कर लिया है, जिससे उसे स्पष्ट बहुमत मिल गया है। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय अब राज्य के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। उनका शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही चेन्नई में आयोजित होने की संभावना है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में निर्णय राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार लगातार तीसरी बार मंगलवार को शपथ लेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटे के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध कराया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया। पीठ ने कहा कि मादक पदार्थों के खतरे से निपटने के लिए केंद्र सरकार का हस्तक्षेप आवश्यक हो गया है। मुख्य न्यायाधीश ने राज्य और केंद्र की एजेंसियों से मादक पदार्थों के खतरे को जड़ से खत्म करने को कहा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालयों का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए शीर्ष न्यायालय ने निर्देश दिया कि कोई अन्य मामले विशेष न्यायालय को नहीं सौंपे जाएंगे और सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश का सशक्तिकरण और सुरक्षा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज, पर्यावरण और नागरिकों की सुरक्षा से भी जुड़ी है।

0: नई दिल्ली में तिरंगा पर्वतीय बचाव दल के 10 वर्ष होने पर एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने दल के कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया।
1: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है। आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है। आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ तथा वायुसेना ने ओडिशा तट पर सामरिक उन्नत रेंज संवर्धन तारा हथियार का पहला सफल परीक्षण किया है। यह अत्याधुनिक कम लागत वाली प्रणालियों का उपयोग करने वाला पहला ग्लाइड हथियार है। एक रिपोर्ट।
2: यह भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली है जो किसी भी सामान्य हथियार को घातक और सही दिशा में सटीक मार करने वाले हथियार में बदलने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर इस एडवांस रेंज वेपन सिस्टम तारा का सफल परीक्षण किया गया। हैदराबाद स्थित डीआरडीओ की रिसर्च सेंटर इमारत ने डीआरडीओ के अन्य प्रयोगशालाओं के साथ मिलकर इसे डिजाइन और विकसित किया है। तारा प्रणाली में अत्याधुनिक लेकिन कम लागत वाली तकनीकों का इस्तेमाल किया गया है। भारत की यह उपलब्धि स्वदेशी रक्षा निर्माण क्षमता और अत्याधुनिक सैन्य तकनीक विकसित करने की दिशा में बढ़ती ताकत को दर्शाती है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि को भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में भूमि संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण की समीक्षा करते हुए श्री चौहान ने कहा कि आधुनिकीकरण के प्रयासों से भूमि संबंधी सेवाओं को पारदर्शी, कुशल और परेशानी मुक्त बनाया जाएगा। इससे नागरिकों और राजस्व अधिकारियों की सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया है कि पिछले वर्ष अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे की अंतिम जांच रिपोर्ट एक महीने में जारी होने की संभावना है। गुजरात में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से जांच कर रहा है।
3: एक साल पूरा होने वाला है और वो इन्वेस्टिगेशन अभी बहुत ही सक्षम से चालू है। जब भी ये इन्वेस्टिगेशन होता है और खास करके इंटरनेशनल वाला फ्लाइट है, इसको कोई भी क्वेश्चन कर सकता है। जो रिपोर्ट आता है इट विल बी अप फॉर स्क्रूटनी, कोई भी देश कर सकता है, कोई भी इंस्टीट्यूशन देश का कर सकता है। तो हमें बहुत ही सीरियसनेस के साथ, फेयरनेस के साथ, ट्रांसपेरेंट नेचर के साथ हमें इन्वेस्टिगेशन करना है।
0: सरकार ने कहा है कि देश भर में घरेलू एलपीजी की सुचारू आपूर्ति जारी है और किसी भी वितरक पर आपूर्ति में कमी की कोई रिपोर्ट नहीं है। नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की कमी का सामना न करना पड़े और कीमतें स्थिर बनी रहें।
4: पिछले दो दिन में भी तो हमने लगभग 97 लाख घरों को एलपीजी सिलेंडर पहुंचाए और इसके अगेंस्ट जो बुकिंग थी लगभग 87,66,000 थी। जो हमारी कमर्शियल सप्लाई है अभी भी वो 70% पर है, लेकिन पिछले दो दिन में 15,400 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। पिछले दो दिन में 1,11,000 से अधिक 5 किलो के सिलेंडर्स की सेल हुई।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कल संयुक्त अरब अमीरात का आधिकारिक दौरा किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। भारत और सिंगापुर ने रणनीतिक साझेदार के रूप में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए द्विपक्षीय सहयोग के महत्व पर बल दिया। आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए गठित संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक कल नई दिल्ली में संपन्न हुई। संयुक्त कार्य समूह ने सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करते हुए उसे कतई बर्दाश्त न करने की नीति दोहराई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और ट्रिनिडाद टोबैगो के संबंध इतिहास, मानवीय संपर्क और साझा आकांक्षाओं का अनूठा संगम है। ट्रिनिडाद टोबैगो के अखबार में एक लेख में विदेश मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है और पिछले 5 वर्षों में यह लगभग दोगुना होकर अब 35 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को आयोजित इस पर्व में शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
5: वर्षा इस आयोजन के प्रमुख आकर्षण रहेंगे। आध्यात्मिक अनुष्ठानों के पश्चात प्रधानमंत्री प्रभास पाटन के सद्भावना मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बार बार

0: हुए विनाशकारी हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर आज भी स्वाभिमान और साहस के प्रतीक के रूप में अडिग खड़ा है। गौरतलब है कि 75 वर्ष पहले 11 मई को ही भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इस पुनर्निर्मित मंदिर का उद्घाटन किया था। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: गृह मंत्री अमित शाह रविवार को बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान

0: नई दिल्ली में करेंगे। बैठक में बाढ़ के पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ आपदाओं, विशेष रूप से बाढ़ और लू की चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर भी चर्चा होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। आयोग ने महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराधों में शामिल दोषियों के लिए वर्तमान पैरोल व्यवस्था पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकार ने कहा कि आयोग शीघ्र ही केंद्र सरकार को सिफारिशें सौंपेगा। इनमें दुष्कर्म, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अन्य गंभीर अपराधों के मामले में दोषी व्यक्तियों के लिए पैरोल पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की जाएगी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
1: देश के प्रमुख शेयर सूचकांकों में 1% से अधिक की तेजी देखी गई। सेंसेक्स 77,328 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 24,176 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया $1 की तुलना में 24 पैसे कमजोर होकर ₹94.48 के स्तर पर बंद हुआ।
0: चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में रिकर्व तीरंदाज सिमरनजीत कौर और कंपाउंड तीरंदाज साहिल जाधव व्यक्तिगत स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। सिमरन ने क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की फोंग यू जू को और साहिल ने शूट ऑफ में ऑस्ट्रिया के निको विनर को हराया। भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। उधर दिल्ली में IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली कैपिटल्स ने 18 ओवर में 5 विकेट पर 126 रन बना लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, VCK, IUML और वामपंथी दलों का समर्थन मिला, कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा। भारत और सिंगापुर आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सूचना साझा करने में तेजी पर सहमत। और चीन में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में सिमरनजीत कौर रिकर्व स्पर्धा के सेमीफाइनल में। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Shubhendu Adhikari to be the first BJP chief minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at the World Cup Stage 2 in Shanghai. And now the news in detail. Senior BJP leader Shubhendu Adhikari will be the new Chief Minister of West Bengal. BJP Legislature Party in the state elected him the leader in a meeting held in Kolkata today, paving the way for him to become the first BJP Chief Minister of the state. Addressing the media, Union Home Minister Amit Shah said Mr. Adhikari's name was proposed at the meeting and since no other nomination was received, his name was finalized.
3: The election process was completed just a few days ago. Around 8 proposals and supporting nominations were received and all of them were in favor of the same name. Sufficient time was also given for any other nomination, but no second name was proposed. Therefore, as the central observer, I declare Shubhendu Adhikari as the elected leader of the West Bengal Legislative Party.
4: Vidhan Mandal Dal ke Neta ke Roop mein Nirvachit Ghoshit Karta Hoon.
2: Mr. Shah expressed gratitude to people for giving a strong verdict to the BJP despite numerous instances of violence and brutality. The Home Minister said freedom of expression has become virtually impossible in Bengal. He asserted that the BJP government in Bengal will stop infiltration and cow smuggling.
5: और त्रिपुरा में हमारी सरकार
3: वी हैव आवर गवर्नमेंट इन त्रिपुरा असम एंड नाउ आवर गवर्नमेंट हैज आल्सो बीन इन्फॉर्म्ड

0: maiden-flight trial. It described it as a significant development in advancing India's indigenous defense capabilities. Tara is India's first indigenous glide weapon system that converts unguided warheads into precision-guided weapons. India's Simranjeet Kaur advanced to the semi-final of the women's recurve individual event at the Archery World Cup Stage 2 in Shanghai today. Simranjeet defeated her Chinese Taipei counterpart Fong Yu Zhu 6-0 in straight sets in the quarterfinal to move within one win of her maiden World Cup medal. Simranjeet will now face world number one Kang She-young of South Korea in the semi-finals. Indian women's recurve team has already assured the country's first medal in the tournament with a stunning win over record 10-time Olympic champion South Korea in the semi-final yesterday. In football, India scripted history by qualifying for the quarterfinals of the AFC Under-17 Women's Asia Cup for the first time with a commanding 4-0 victory against Lebanon in the final Group B fixture at Suzhou in China today. For India, Preetika Burman in the 7th and 85th, Alva Devi Senjam in 36th and Joya in 72nd minute scored goals. Reaching the semi-final of this tournament would guarantee India's spot in the 2026 FIFA Under-17 Women's World Cup. And in IPL cricket, Delhi Capitals have set a target of 143 runs for Kolkata Knight Riders at Arun Jaitley Stadium in Delhi. Put into bat, Delhi Capitals scored 142 runs, losing 8 wickets in the stipulated 20 overs. Earlier, Kolkata Knight Riders won the toss and opted to bowl. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Suvendu Adhikari to be the first BJP Chief Minister of West Bengal, swearing in tomorrow morning at Kolkata's Brigade Parade Ground. TVK Chief C. Joseph Vijay gets support from Congress, VCK, IUML and left parties to take oath as Tamil Nadu Chief Minister tomorrow. Supreme Court expresses concern over rising drug menace in Punjab, calls for fundamental shift in state's policy and nab major traffickers. India and Singapore agree to enhance information sharing in countering terrorism. And in archery, Simranjeet Kaur advances to semi-final of the women's recurve event at World Cup Stage 2 in Shanghai. For details of this story and more, log on to our website, newsonair.gov.in and News on AIR app. And that's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ मैं शबाना बेगम। सुवेंदु अधिकारी मगरीब बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बायबाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। सीनियर बीजेपी लीडर सुवेंदु अधिकारी मगरी बंगाल के नए वजीर आला होंगे। रियासत में बीजेपी कानून साज पार्टी में आज कोलकाता में मुनाकिदा एक मीटिंग में उन्हें लीडर मुंतखब किया गया, जिसके साथ ही रियासत के पहले बीजेपी के वजीर आला बनने के लिए उनकी राह हमवार हो गई है। मीडिया से खिताब करते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मीटिंग में जनाब अधिकारी के नाम की तजवीज रखी गई और चूंकि कोई दूसरा नाम सामने नहीं आया, इसलिए उनके नाम को हतमी तौर पर मंजूर कर लिया गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूं।
1: कल सुबह सरकार की हलफबरदारी की तकरीब ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्किद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के साथ साथ मरकजी वज़रा और बीजेपी के ज़ेर-ए-इक़्तदार रियासतों से बहुत से वज़ीर-ए-आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। चूंकि ये तकरीब

0: रविंद्र जयंती के मौके पर मुनाकिद की जा रही है, इसलिए सकाफती परफॉर्मेंसेस भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: आज शुभेंदु अधिकारी को भारतीय जनता पार्टी का कानून साज पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। वो मगरबी बंगाल के अगले वजीर आला होंगे। अधिकारी ने ममता बनर्जी को भवनीपुर में शिकस्त दी है। आज मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह की सदारत में कोलकाता में हुई एक मीटिंग में, जिसमें बीजेपी के सभी मुंतखब अराकीन असेंबली ने शिरकत की, अधिकारी को लेजिस्लेटिव पार्टी का लीडर मुंतखब किया गया है। मीटिंग से खिताब करते हुए वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मगरबी बंगाल की आवाम ने तृणमूल कांग्रेस के जरिए पैदा करदा डर और खौफ के माहौल के खिलाफ अपना मैंडेट दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि हुकूमत तश्कील देने के बाद कमेटियां तश्कील दी जाएंगी जो आरजी कर और संदेश खली मामलात की छानबीन करेंगी। उन्होंने मजीद कहा कि दराजाती बदनवानी और मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ भी छानबीन की जाएगी। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं महताब आलम।
0: तमिलनाडु में तमिजगा वेतरी कसगम टीवी के सी जोसेफ विजय को कल सुबह 11 बजे तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया जाएगा। इससे कबल आज टीवी के चीफ ने गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर से मुलाकात की और इत्तेहादी पार्टियों की हिमायत के दस्तावेजात पेश करके सरकार तश्कील देने का दावा पेश किया। 4 मई को असेंबली इंतखाबात के नतीजे आने के बाद सी उनकी गवर्नर के साथ तीसरी मीटिंग थी। हमारे नुमाइंदे ने खबर दी है कि सीपीआई सीपीआईएम वीसीके और आईयूएमएल ने टीवीके को अपनी हिमायत दी है। इसके साथ ही इत्तेहाद अब असेंबली में मतलूबा तादाद की हिमायत रखता है जो अक्सरियत से ज्यादा है। टीवीके के 107 अरकान कानून साज असेंबली हैं, अरकान कानून साज असेंबली हैं कांग्रेस के 5 जबकि वीसीके सीपीआई और सीपीआईएम नेज आईयूएमएल के 2-2 अरकान कानून साज असेंबली हैं। टीवीके के सरबरा ने दावा किया कि अब उन्हें 120 अरकान कानून साज असेंबली की हिमायत हासिल है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: आज टीवीके पार्टी के लिए एक बहुत अहम दिन था। हालांकि वो अक्सरियत के साथ सरकार तश्कील देने के लिए मतलूबा तादाद हासिल करने में कामयाब रही। टीवीके की हिमायत करने वाले अफराद सड़कों के दोनों अतराफ बड़ी तादाद में ढोल ताशे बजाकर अपने मनपसंद लीडर को देखने के लिए मौजूद थे। फिल्म सरकार ब्लॉकबस्टर के हीरो हलफ लेने के बाद रियासत के वजीर आला बन जाएंगे। नामजद वजीर आला सी जोसेफ विजय लाल तिलक लगाए हुए थे, नीले रंग की जीन्स पहने हुए थे और उन्होंने बाएं हाथ पर लाल धागा बांधा हुआ था। उनका यह रूप इससे कबल के वजीर आला के मुकाबले में कतई मुख्तलिफ है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फुरकान खान।
0: सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मनुष्यात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। रियासत के जरिए मनुष्यात की रोकथाम कैसे की जाए, इस सिलसिले में अदालत ने बुनियादी तब्दीली लाने पर जोर दिया और कहा कि इंसानी अमवाद की सूरत हाल तशवीशनाक है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची ने एक हालिया वाकये का हवाला दिया जिसमें एक मां ने अपने सभी 5 बच्चों को मनुष्यात की लत का शिकार होने के सबब खो दिया। बेंच ने कहा कि मनुष्यात की लानत इस हद पर पहुंच गई है कि जहां मरकजी हुकूमत की मदाखलत जरूरी हो गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रियासत और मरकजी एजेंसियों से मनुष्यात की लानत के मुकम्मल खात्मे के वाहिद मकसद के साथ काम करने के लिए कहा। बेंच ने पंजाब पुलिस की यह कहते हुए नुक्ताचीनी की कि वो शोहरत के लिए छोटे जराइम के मुर्तकिब अफराद को पकड़ने पर तवज्जो मरकूज कर रही है जबकि मनुष्यात की नाजायज तिजारत करने वाले बड़े मुजरिम आजाद घूम रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज कहा कि मुल्क की बाख्तियारी और सलामती सरहदों की हिफाजत तक ही महदूद नहीं है बल्कि ये मौशरे माहौलियात और शहरियों की सलामती से भी वाबस्ता है। नई दिल्ली में भारतीय फौज के साथ पहाड़ी इलाकों में बचाव कार्रवाई से मुतालिक मुहिम तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के 10 साल मुकम्मल होने की एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने जोर देकर कहा कि एक बाख्तियार भारत वो है जहां सरहदें महफूज हों, समाजी बिरादरियां पुरएतमाद हों और आफात के वक्त हरेक की जिंदगी की हिफाजत यकीनी हो। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि हिमालय जैसे हसास और दूरदराज खित्तों में तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू महज बचाव कार्रवाई तक महदूद नहीं है बल्कि मुल्क की मुसल्ला अफवाज मकामी बिरादरियों के भरोसे और कौमी पायदारी के लिए एक मजबूत सुतून की हैसियत रखता है।
3: तिरंगा माउंटेन रेस्क्यू के लोग वो हैं जिनकी उपस्थिति हमारी सेनाओं को संबल प्रदान करती है। आपने सैनिकों के मनोबल को बढ़ाया है, आपने हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले समुदायों को यह एहसास कराया है कि वे अकेले नहीं हैं। टीएमआर जैसे संस्थानों का कार्य केवल रेस्क्यू तक सीमित नहीं है, आप इनडायरेक्टली बॉर्डर स्टेबिलिटी, कम्युनिटी कॉन्फिडेंस और नेशनल रेजिलियंस को भी मजबूत कर रहे हैं।
0: حکومت نے کہا ہے کہ ملک بھر میں گھریلو ایل پی جی کی سپلائی مستحکم ہے اور کسی بھی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے ایل پی جی کا ذخیرہ ختم ہونے کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔

नई दिल्ली में एक बैन वजारती मीटिंग में खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस की वजारत में सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि हुकूमत की यह कोशिश है कि घरेलू सारिफिन को गैस की कोई किल्लत न पेश आए और मगरबी एशिया में बदलते हुए हालात के पेश नजर कीमतें मुस्तहकम रहें। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों में 87 लाख गैस बुकिंग हुई, जिनमें से 57 लाख गैस सिलेंडर सारिफिन तक पहुंचा दिए गए। ये आकाशवाणी है। भारत और सिंगापुर ने अहम शराकतदारों के तौर पर दहशतगर्दी का मुकाबला करने में बाहमी तआवुन की अहमियत पर जोर दिया है। भारत और सिंगापुर के दरमियान दहशतगर्दी और जराइम से मुकाबला करने से मुतालिक मुश्तरका वर्किंग ग्रुप की 5वीं मीटिंग गुज़िश्ता रोज नई दिल्ली में मुनक़िद हुई। मुश्तरका वर्किंग ग्रुप ने सरहद पार की दहशतगर्दी समेत हर तरह और हर शक्ल में दहशतगर्दी की मुकम्मल तौर पर और सख्ती के साथ मजम्मत की, नीज दहशतगर्दी के तई सिफर बर्दाश्त के उसूल का एआदा किया। JWG ने दहशतगर्दों और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल 1267 पाबंदियों की कमेटी के जरिए करार दिए गए दहशतगर्दी के ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करने में तआवुन पर तबादला ख्याल किया। उसने सरहद पार के खतरों का बरवक्त और मौसर तौर पर जवाब देने के लिए कार्रवाई में इजाफा करने की गरज से मालूमात शेयरिंग को मजीद मुस्तहकम करने की जरूरत से भी इत्तेफाक किया। सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सोमनाथ के प्रभास पतन में इस महीने की 11 तारीख को सोमनाथ अमृत पर्व में शिरकत करेंगे। मीडिया से बात करते हुए गुजरात के वजीर जीतूभाई वाघानी ने कहा कि वजीर आजम त्रिवेणी हेलीपैड से वीर हमीरजी गोहिल के मुजस्मे तक 1 किलोमीटर तवील मेगा रोड शो की क्यादत करेंगे। वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर में कुंभ अभिषेक, ध्वज पूजा और महापूजा भी करेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह इतवार के रोज नई दिल्ली में मुमकिना सैलाब और गर्मी की लहर की सूरत हाल से निमटने के लिए मुल्क की तैयारी से मुतालिक एक आला सतही जायजा मीटिंग की सदारत करेंगे। ये आला सतही जायजा फाल हुक्मरानी, शहरियों पर मरकूज कुदरती आफात का बंदोबस्त और कुदरती आफात से मुकाबला करने वाले भारत की तामीर के तई हुकूमत के मुसम्मम अहद की अक्कासी करता है। मीटिंग के दौरान जनाब शाह मरकजी हुकूमत की एजेंसियों की तैयारी, पेश की वार्निंग निजाम, वसाइल की फरोख और बैन एजेंसी तालमेल का जायजा लेंगे, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि कोई जान जाया ना हो और इमलाक को कम से कम नुकसान पहुंचे। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राममोहन नायडू ने इत्तला दी है कि एयर इंडिया की परवाज AL-171 के अलमनाक हादसे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट आखिरी मराहिल में है और तवक्को है कि उसे 1 माह के अंदर जारी कर दिया जाएगा। आज गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में एयरक्राफ्ट सीजनिंग और फाइनेंसिंग समिट के मौके पर सहाफियों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि तैयारा हादसे की तहकीकाती एजेंसी मुकम्मल और शफाफ तहकीकात कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत जारी की है कि कौमी तहकीकाती एजेंसी के जरिए छानबीन किए जा रहे मामलों से मुतालिक 10 से 15 जेरे इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए कम से कम एक खसूसी अदालत कायम की जानी चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची पर मुश्तमिल एक बेंच ने कहा कि ये खसूसी अदालतें 1 माह के अंदर कायम की जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अजखुद नोटिस लेते हुए एक मुकदमे की समाअत के दौरान हिदायत जारी की कि इन खसूसी अदालतों को कोई और केस नहीं सौंपा जाएगा और मुकदमे की कार्रवाई यौमिया बुनियाद पर की जाएगी। मरकजी वजारत सेहत ने हंटा वायरस के मामलों के कम आलमी खतरे के जायजे के पेश नजर एहतियाती निगरानी के इकदाम फाल कर दिए हैं। जराए के मुताबिक वजारत सेहत क्रूज शिप MV होंडियस पर हंटा वायरस इन्फेक्शन के रिपोर्ट शुदा मामलों से मुतालिक बदलती हुई सूरत हाल पर गहरी नजर रखे हुए है। ये काम अमराज की रोकथाम से मुतालिक कौमी मरकजी NCDC इंटीग्रेटेड डिजीजेस सर्विलांस प्रोग्राम, सेहत की आलमी तंजीम WHO और सेहत के दीगर बैन अलाक़वामी सेहत हुकाम के तआवुन से किया जा रहा है। देही तरक्की के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में जमीनी वसाइल के महकमे की एक जायजा मीटिंग की सदारत की। डिजिटल इंडिया जमीनों के रिकॉर्ड की जदीदकारी के प्रोग्राम 3.0 की सूरत हाल का जायजा लेते हुए जनाब चौहान ने कहा कि जदीदकारी की काविशों को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि जमीन से मुतालिक खिदमात को शफाफ, मौसर और रुकावटों से पाक बनाकर शहरियों के साथ साथ महसूलाती हुकाम के लिए सहूलत का बाइस हों। उन्होंने वाजे किया कि मुजवजा अराजी के पैमाइश के इकदाम कता अराजी की फौरी और दुरुस्त कदर की तशखीस में सहूलत फराहम करेंगे, जिस

0: से बैंकों को कर्जों की मंजूरी के अवामिल को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को महाराष्ट्र के झोंपड़पट्टी वाले इलाकों की बेहतरी, सफाई और बाजाबादकारी के एक्ट 1971 से मुतालिक कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए 4 हफ्ते के अंदर एक आला सतह की माहिरीन की कमेटी तश्कील देने की हिदायत जारी की है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक कानून की जमीनी मौसरियत का जायजा लेने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर अमल आवरी करते हुए हाई कोर्ट की जानिब से इस सिलसिले में कार्रवाई के दौरान यह फैसला किया गया। जस्टिस जीएस कुलकर्णी और अद्वैत सेचना पर मुश्तमिल बेंच ने मुंबई में झोपड़पट्टी की बहाली और शहरी मनसूबाबंदी की इंतहाई नाकिस पेशरफ्त पर तनकीद की और कहा कि यह कानून 5 दहाइयों से ज्यादा नाफिजुल अमल है। खवातीन के कौमी कमीशन NCW ने संगीन जंसी जराइम के मामलों में तेज रफ्तार अदालती कार्रवाई, सख्त निगरानी और पैरोल पर पाबंदी की जरूरत पर जोर दिया है। कमीशन ने अपने एक बयान में खवातीन और बच्चों के खिलाफ संगीन जराइम में मुलव्वस मुलजमीन के लिए मौजूदा पैरोल फ्रेमवर्क पर गहरी तशवीश का इजहार किया। भारत की सिमरनजीत कौर आज शंघाई में खेले गए तीरंदाजी आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व इंफरादी मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। सिमरनजीत कौर ने क्वार्टर फाइनल में अपनी चीनी ताइपाई हरीफ फेंगयू जू को सीधे सेटों में 0-6, 6-0 से शिकस्त देकर अपने पहले वर्ल्ड कप तमगे से सिर्फ एक जीत की दूरी पर पहुंच गई हैं। अब सेमीफाइनल में सिमरनजीत कौर का मुकाबला आलमी नंबर 1 जनूबी कोरिया की किम जियोंग से होगा। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। सुवेंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी के वजीर आला होंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगी। टीवीके के सरबरा सी जोसेफ विजय को कांग्रेस, वीसीके, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत हासिल हो गई है। वो कल तमिलनाडु के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में मुनशियात की बढ़ती हुई लानत पर तशवीश का इजहार किया है। उसने रियासत की पॉलिसी में बुनियादी तब्दीली और गैर कानूनी मुनशियात की तिजारत करने वाले बड़े ताजिरों को गिरफ्तार करने पर जोर दिया। भारत और सिंगापुर ने दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मालूमात शेयरिंग को बढ़ाने से इत्तेफाक किया है। और तीरंदाजी में सिमरनजीत कौर शंघाई में आलमी कप स्टेज 2 में खवातीन के रिकर्व मुकाबले के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Current Affairs. Good evening, listeners. Welcome to our program, Current Affairs. I'm Tina Jha. Today, we'll be talking about Somnath, Bharat's invincible spirit. To talk about Somnath and Bharat's unconquerable spirit and how in a world marked by divisions, Somnath gives us a civilizational message of shared unity and prosperity, I'm joined by two distinguished guests, Padma Shri, Vishnu Pandyaji, he's a historian and author, and Ms. Aditi Tandon, senior journalist. For centuries, the Somnath temple has not just as a place of faith, but as a symbol of resilience. Attacked, rebuilt, and revived time and again, its story is deeply woven into India's civilizational journey. Marking 75 years since the restored temple was reopened to devotees, Prime Minister Narendra Modi has written an article in which he says that every part of Bharat is sacred, bound together by a sense of oneness that transcends geography, and that in a world increasingly marked by divisions, this spirit of unity is more relevant than ever. The Somnath will continue to stand tall in all its glory because the sense of unity and shared civilizational consciousness lives on in the heart of every Indian, said the Prime Minister. In fact, he also remembered the countless people who sacrificed their lives to protect Somnath and those who rebuilt it generation after generation, ensuring that this beacon of faith and cultural continuity continues to stand tall. Earlier this year, the Prime Minister visited the Somnath for the Somnath Swabhiman Parv, marking 1,000 years since the first attack on this temple. And on the 11th of May this year, he will return to the Somnath to commemorate 75 years since the restored temple was inaugurated by India's first president, Dr. Rajendra Prasad. तो पहला सवाल हिस्टोरियन पद्मश्री विष्णु पांड्या जी से। पांड्या जी, सोमनाथ को अक्सर लोग सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि भारत की पहचान भी मानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां कई बार जाते हैं और वहां का जिक्र करते हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? हमारे लिसनर्स को, हमारे श्रोताओं को अगर आप बता सके कि सोमनाथ में ऐसा क्या है जो उस जगह से लोगों का अपने आप एक भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है।
2: देखिए, नरेंद्र मोदी

0: जी इतिहास बोध के आदमी है, बरसों से है, आज से नहीं, और परंपरा में जिस प्रकार का एक सातत्य रहना चाहिए उसके अनुसार वो चलते हैं। उनके अनुसार जो सोमनाथ की जो बात है वो केवल मंदिर की नहीं है, उन्होंने लिखा भी है, हमारी संस्कृति विनाश से निर्माण, इस पर आधारित है। बहुत से विनाश आए, आक्रमण आए, बाकी सब कुछ हुआ, लेकिन पुनः एक बार नहीं, दो बार, तीन बार, 50 बार हमने पुनः निर्माण किया। कुछ ऐसे उदाहरण भी है, जैसे कि हमारे यहाँ प्राच्य विद्या, पुरातत्व विद्या का लोथल स्थान है
1: जी,
0: 5000 साल पहले का है। 5000 साल में उस पर 4 बार सुनामी, समुद्र का विनाश आया, चारों बार लोगों ने इकट्ठा होकर पुनः खड़ा किया। सोमनाथ पर अनेकों आक्रमण आए और फिर भी लोगों ने बार बार उनका पुनर्, केवल राजाओं ने नहीं, लोगों ने भी। मैं उनका एक उदाहरण देना चाहता हूँ, ईस्वी सन 1400, तब एक बार आक्रांताओं ने मंदिर को नष्ट किया, लोग सब इकट्ठा हुए और लोगों ने अपनी शक्ति से और अपनी भक्ति से उनका पुनर्निर्माण किया। ये सोमनाथ की बात है
1: जी।
0: तो विनाश से निर्माण, कितने पुनरोद्धार हुए, बहुत से हुए। एक दो चार उदाहरण हम दें तो गुर्जर प्रतिहारों ने निर्माण किया, राजा भोज ने निर्माण किया, राजा कुमारपाल ने किया, भीमदेव ने किया, पाशुपत आचार्य त्रिपुरांतक ने किया, महिपाल देव ने किया। एक बार तो जैन और पाशुपत दोनों शैव दोनों मिलकर किया, तो इसका मतलब है कि ये जो महारानी अहिल्याबाई ने भी किया। इस परंपरा की कड़ी में सरदार वल्लभ भाई आए। 1947 के नवंबर में जब जूनागढ़ को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की घोषणा हुई थी नवाब के द्वारा, उसके खिलाफ आरजी हुकूमत हुई थी और आरजी हुकूमत ने जूनागढ़ को मुक्ति दिलाई, तब उसी दिन सरदार वल्लभ भाई जूनागढ़ आए। जूनागढ़ में उन्होंने बड़ी सभा की और बाद में वो वहां से, दिवाली का दिन था, वो सोमनाथ गए। उनके साथ महाराजा जामनगर के दिग्विजय सिंह जी थे, एनवी गाडगिल थे जो मिनिस्टर थे, कैनराल मुंशी थे, ये सभी के सभी लोगों ने देखा और वल्लभ भाई ने देखा कि ये जीर्ण शीर्ण मंदिर खड़ा है, किस प्रकार इसकी दशा है, इसका पुनरोद्धार होना चाहिए। तो समुद्र से अंजलि भर पानी लेकर हथेली में उन्होंने संकल्प किया। इससे पहले 1892 में स्वामी विवेकानंद आए थे
1: जी,
0: और उन्होंने ऐसी ही स्थिति में जो सोमनाथ था वहां समाधिस्थ हुए, सामने हिंद महासागर था, और तब उन्होंने सामने, वो कहते हैं वो सबसे पहला उनको दर्शन भारत माता का वो वहां हुआ था।
1: Okay, so we'll continue this conversation trying to understand about the historical significance and how it resonates also with a lot of people in so many ways. But let me bring in the Prime Minister's upcoming visit, the article that he's written just ahead of the visit, and it's quite reflective and personal in tone. So, Ms. Aditi Tandon, the question to you is that this is one of the many visits by the Prime Minister to the Somnath Temple, and in fact, this is going to be the second one on the 11th of May this very year. According to you, what do you think the Somnath Temple represents for the Prime Minister, both personally, coming, he's somebody who comes from Gujarat, but also politically?
2: See, Somnath Temple to Prime Minister Modi, as also to all the citizens of the country, basically is a representation of our country's incomparable spirit and civilizational continuity that has gone on for more than 5,000 years now. It also, you know, sort of, Tina, represents transitioning from the memory of destruction, which we know as Vidhvans, and to national renewal, which we know as Srijan. In fact, Vidhvans and Srijan are the two phrases that Prime Minister has used in his article today as he prepares to return to Somnath to mark the 75th year of the opening of the restored temple. You will recall that it was on May 11, 1951 that then President Rajendra Prasad had gone and opened this historic and majestic restored temple. And there had been issues with respect to, you know, the approval to the then president. Prime Minister Jawaharlal Nehru was not in favor of the head of the state going and attending the inauguration of a temple. Mm-hmm. But as we know, and as also pointed out in the article that Prime Minister Modi has authored today, Somnath is not just architecture or a building or just, you know, a representation of Indian art and symbols of, you know, India's majestic temple architecture. It is much more than that. It is a representation and reflection of our very strong indomitable spirit. We all know that the first recorded attack on Somnath Temple was in 1026 by the Mahmud of Ghazni. And you just mentioned the Somnath

0: वो पसंद भी नहीं था, ऐसा हमने इतिहास में पढ़ा है। लेकिन अगर हम देश के आत्मविश्वास के संदर्भ में इस मंदिर के पुनर्निर्माण को देखें, तो क्या वो सिर्फ मंदिर बनाना था या वो एक पहल थी देश के आत्मविश्वास को फिर से खड़ा करना? वो एक बड़ा मैसेज था कि जो टूटा है वो फिर से जुड़ेगा और वो फिर से खड़ा होगा। जिस संदेश की आज हम बात कर रहे हैं उसकी नींव कहीं ना कहीं उस दिन रखी गई थी?
1: नहीं, उसी दिन नहीं थी, मैं बिल्कुल स्पष्ट हूँ, ये परंपरा में हुआ है। जब से भगवान सोम ने मंदिर बनाया तब से जितने लोग आए, मोहम्मद गिजनी आए, अलाउद्दीन खिलजी आए, अलफ खान आए, मुजफ्फर गुर्जर सुल्तान आए, औरंगजेब आए, मोहम्मद बेगड़ा आया और मोहम्मद गजन भी आए, इतने आक्रमण के बाद भी क्यों खड़ा किया? ये कोई केवल मंदिर नहीं था, मंदिर तो बहुत से होते हैं और गुजरात में बहुत से मंदिरों पर को भी नष्ट किया था, लेकिन सोमनाथ ये भारतीय सांस्कृतिक इतिहास का प्रतीक है। विनाश से निर्माण मैंने कहा, वो उस आधार पर वो खड़ा है और उसी आधार पर वहां से जो कुछ बना, कुछ संकल्प हुए। इसीलिए नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने एक शब्द दिया था, संकल्प कथा, संकल्प यात्रा, और कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति एक संकल्प ले, गुजरात विशेष हो जाएगा। और उन्हीं दिनों में मैंने कहा सरदार वल्लभ भाई, ये एक नींव का सबसे बड़ा ऐतिहासिक आरंभ था, ये बात सही है। और सरदार वल्लभ भाई ने जब संकल्प किया कि सोमनाथ तो होना चाहिए, फिर बात दिल्ली तक पहुंच, और सभी उन दिनों के जो लेखक हैं उन्होंने कहा है कि जवाहरलाल नेहरू को ये ठीक नहीं लगा, उनका कहना था कि ये बिन सांप्रदायिक हमारा देश है, इसमें कोई दैवी मंदिर को इस प्रकार पुनर्निर्माण करना सरकार के द्वारा ये ठीक नहीं है
0: जी।
1: फिर वे लोग गांधी जी के पास गए, ये घटना है, और गांधी जी ने बीच का रास्ता निकाला, उन्होंने कहा कि ठीक है सरकार मदद न दे लेकिन लोगों के द्वारा फंडिंग करके इनको खड़ा किया जाएगा। ये बात हुई, बाद में तो गांधी जी भी नहीं रहे, सरदार भी नहीं रहे, और जब प्रतिष्ठित हो गया, मंदिर हो गया, तो राष्ट्रपति थे राजेंद्र बाबू को आमंत्रित किया गया, और ये स्पष्ट है उन दिनों के जो सब बयान है उसमें जवाहरलाल जी ने ना कहा, वो अपने ढंग से वो सोचते थे कि भाई ये सेक्युलर स्टेट है, लेकिन राष्ट्रपति जी ने कहा कि सेक्युलर होने के बावजूद मैं सभी जगह जाता हूं, यदि मस्जिद का पुनरोद्धार होगा तो मैं वहां भी जाऊंगा, ये देश की संस्कृति है ऐसा, और आए। और सोमनाथ का जीर्णोद्धार का बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, उनके बाद बार बार ये हुआ, तो ये और फिर 47 के बाद ये यहाँ जो गुजरात राज्य 1960 में बना, तब से यहाँ की जो प्रजा थी, यहाँ के जो नेता थे, उन्होंने सोमनाथ ट्रस्ट बनाया। सोमनाथ ट्रस्ट पहले भी था, उसमें दिग्विजय सिंह जी ने बड़ा काम किया, जामनगर के महाराजा ने
0: जी।
1: और ये हमारे बहुत से ऐसे राजवी थे कि जो परम सांस्कृतिक प्रतिनिधि भी थे, संस्कृति के साथ जुड़े हुए थे, तो ये हुआ। और फिर सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा ये काम हुआ, इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल थे अध्यक्ष, अब नरेंद्र मोदी है, और नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में इस जो स्थान है, इस स्थान को एक ऐतिहासिक बनाने की यात्रा शुरू हुई है।
0: प्रधानमंत्री 11 मई को दोबारा जा रहे हैं वहां पर। आपने जिस तरह से हमें पूरा समझाया कि किस तरह ये प्रतीक है एकता का, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने अपने लेख में भी किया है, लेकिन अगर आज के भारत को सोमनाथ की कहानी से अगर एक सीख लेनी हो पांड्या जी, तो वो क्या होगी? और इसको मैं जोड़ूंगी आज के जियोपॉलिटिकल संदर्भ से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने ये जिक्र किया है कि आज जब दुनिया में हर जगह जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यूनिटी बिल्कुल नहीं है और जिस तरह से डिविजन्स हैं कई लेवल्स पर, उस संदर्भ में उन्होंने सोमनाथ का जिक्र किया है, तो अगर एक सीख हम आज के अपने देश के और दुनिया के संदर्भ में लें तो सोमनाथ से वो क्या होगा?
1: मेरी दृष्टि से ये केवल जियोपॉलिटिकल है नहीं है, ये जियोकल्चरल भी, और सांस्कृतिक अस्मिता हिंदुस्तान की। हम बाकी विश्व की इसमें चिंता न करें, वो वहाँ शांति होगी या नहीं होगा, वहाँ युद्ध होगा नहीं होगा, वो तो अपने ढंग से वो सोचेंगे तब होगा, लेकिन भारतवर्ष में इन दिनों में युवा शक्ति को एक राष्ट्रीय जागरयाम वयम, राष्ट्र में हम सभी जगह जागते रहे, हम जहाँ भी हो जैसे भी हो, लेकिन जागृति बहुत बड़ी आवश्यक अनिवार्य है। और इसी इतिहास बहुत से लेकर नरेंद्र मोदी ने गुजरात में ऐसे दो स्थान का निर्माण हुआ है, एक सोमनाथ का है और दूसरा केवड़िया कॉलोनी नर्मदा के किनारे।

0: से उन लोगों तक हम पहुंचे नहीं, पहुंचना चाहिए। ये धीरे धीरे व्यापक रूप से पूरे देश में हो सकता है। तो मेरे दृष्टि से पुनः एक बार हमारी परंपरा 5000 साल से भी पहले शायद ये परंपरा में जो विनाश से निर्माण की एक भावना है, संस्कृति इसी आधार पर टिकी हुई है। साहब सोमनाथ में भी जब उत्खनन हुआ है 4 सभ्यताएं सिविलाइजेशन की अवशेष मिले हैं, तो कितने हमारी सभ्यताएं दीर्घकालीन होती होगी, इसका भी हमें ख्याल करना चाहिए। और इसके लिए योग्य माहौल बनाकर ये हम कर सकते हैं और आकाशवाणी इसमें सबसे ज्यादा निर्णायक बन सकती है।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमें बताने के लिए कि सोमनाथ क्यों इतिहास में ही नहीं बल्कि आज के संदर्भ में भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है और खासकर

मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 10 बजने को है। आइए अब आनंद लेते हैं फरमाइशी खतों पर आधारित फिल्मी गीतों के कार्यक्रम रजनी गंधा का।

ये गीत हमने लिया था फिल्म तेरे नाम से, जैसे लिखा था समीर ने। संगीत दिया था हिमेश रेशमिया ने और आवाज थी अलका याग्निक और उदित नारायण की। इस गीत की फरमाइश की थी रामपुर से रमेश चौहान और बबीता चौहान ने। अगली फरमाइश फिल्म हम दिल दे चुके सनम से है, जिसके रचनाकार महबूब है। संगीत इस्माइल दरबार ने दिया है और आवाज दी है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। और इस गीत को सुनना चाहा है इटावा से रवि और मोहन सिंह ने।

फिल्म कदर के इस गीत को सुरों से सजाया था उत्तम सिंह ने। रचना आनंद बख्शी की थी और आवाज थी उदित नारायण और अलका याग्निक की। इस गीत की फरमाइश हमें भेजी थी फिरोजाबाद से अखिल गुप्ता, सुनील गुप्ता, राजेश गुप्ता और गुप्ता परिवार ने। आगरा आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रजनीगंधा। फिल्म बॉम्बे के अगले गीत को सुनना चाह है गांव ददुआ आगरा से समीर अब्बासी, रेशम अब्बासी और आमिर अब्बासी ने। इस गीत को लिपिबद्ध किया है महबूब ने, संगीत बद्ध किया है यार रहमान ने और आवाज दी है चित्रा ने।

फिल्म कलयुग के इस गीत के संगीतकार थे अनु मलिक। गीत सैयद कादरी का था और आवाज थी राहत फतेह अली खान की। और इस गीत को सुनना चाहा था डोंडला से शाकिर, नाजिम, रिजवान और रेहान ने। उदित नारायण, मनप्रीत अख्तर और अलका याग्निक की आवाज से सजे इस आखिरी गीत को हमने फिल्म कुछ कुछ होता है से लिया है। संगीतकार है जतिन ललित और गीतवार है समीर। और इस गीत को सुनना चाहा है धौलपुर राजस्थान से दिनेश राजपूत, महेश राजपूत, शमशेर सिंह और नौशाद अली ने।

दोस्तों, आपको हमारा फरमाइशी प्रोग्राम रजनीगंधा कैसा लगता है ये आप हमें अपने पत्रों के माध्यम से जरूर बताएं। और हाँ, अपने अंदर के संगीत को जिंदा रखिए और हमें अपनी पसंद के गीत सुनने की फरमाइश भेजते रहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं अपना पता। हमारा पता है कार्यक्रम रजनीगंधा, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी आगरा, और पिन कोड संख्या है 2820001।

मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आगरा केंद्र। हमारे स्टूडियो के घड़ी में समय हुआ है 10:30। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत में कलाकार रमेश तागड़े से वायलिन वादन। आप प्रस्तुत करेंगे राग बिहाग।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में ख्याल गायन, जिसमें कलाकार रमेश तागड़े ने प्रस्तुत किया वायलिन भगन। न्यूज एन आर एप पर आकाशवाणी आगरा ही 11 बजने को ही आइए अब सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के पहले मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल सुबह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शपथ लेंगे। कोलकाता में आज उन्हें भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। श्री अधिकारी राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बनेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में पार्टी विधायक दल की बैठक में श्री अधिकारी को निर्विरोध चुना गया।
2: लगभग 8 प्रस्ताव और समर्थन प्राप्त हुए हैं और सभी प्रस्ताव और समर्थन एक ही नाम के मिले हैं। उसके बाद दूसरे नाम के लिए भी सबको समय दिया गया, पर्याप्त समय दिया गया, मगर कोई दूसरा नाम नहीं आया है। इसलिए केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में मैं श्री शुभेंदु अधिकारी जी को पश्चिम बंगाल विधानमंडल दल के नेता के रूप में निर्वाचित घोषित करता हूँ।
1: श्री शाह ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत ऐतिहासिक है।
2: 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। हम सब के लिए बहुत आनंद का। 1950 से जिस विचार की यात्रा को लेकर हम निकले और जिसके नेतृत्व में निकले श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व, उनकी ही जन्मभूमि में आज 2026 में श्यामा प्रसाद जी की ही पार्टी की सरकार बन रही है।
1: शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि उनकी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदर्श पर राज्य का विकास करेगी। उधर तमिलनाडु में एनडीए गठबंधन के सहयोगी एएमएम के प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेरकर से मुलाकात की और एआईएडीएम के महासचिव एडापाडी के पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए अपना आधिकारिक समर्थन पत्र सौंपा। दिनाकरन ने राज्यपाल को सौंपे पत्र में स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी मन्नारगुड़ी से नवनिर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज के समर्थन के साथ पलानीस्वामी के दावे का समर्थन करती है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि समाचार चैनलों ने यह खबर फैला दी थी कि उनकी पार्टी टीवीके का समर्थन कर रही है। उन्होंने राज्यपाल से मामले की गहन जांच करने की शिकायत की है। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने उन्हें आगे की कार्रवाई का आश्वासन दिया है। केरलम में नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि होंगे। पार्टी विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और उपचुनावों के लिए सूचकांक कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट ईसीआई नेट ऐप पर जारी की है। सूचकांक कार्ड में उम्मीदवारों, मतदाताओं, डाले गए वोटों, गिने गए वोटों, पार्टीवार और उम्मीदवारवार वोटों सहित विभिन्न डेटा दिए गए हैं। इसे चुनाव नतीजों की घोषणा के 72 घंटों के रिकॉर्ड समय में उपलब्ध करा दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरों पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। न्यायालय की पीठ ने हाल ही में मादक पदार्थों की लत के कारण एक महिला के 5 बेटों को खोने की घटना का संज्ञान लिया था। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए द्वारा जांच किए जा रहे 10 से 15 लंबित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम एक विशेष अदालत गठित की जाए। न्यायालय ने कहा कि विशेष न्यायालय का गठन 1 महीने के भीतर किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महिला आयोग ने जघन्य दुष्कर्म के मामलों में त्वरित सुनवाई, कड़ी निगरानी और पैरोल पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।